चालबाज मूवी का गाना है। इस गाने में श्रीदेवी और सनी देओल जो है वो बारिश पर ये गाना फिल्माया गया है। अब ये दोनों बारिश में भीगे सो भीगे, अब आप ना भीगे, इसलिए फिर से रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ कि भाई छोटी छतरी जो है वो बैग में रख कर ही आप बाहर जाए, ताकि बीच में अगर बारिश हो जाती है तो आपको जो है भी दिक्कत ना हो। और साथ में ये भी होता है कि जब बारिश का मौसम होता है ना, तो थोड़ा करंट वगैरह लगने का रिस्क रहता है आसपास, और साथ में फिसलने का भी एक रिस्क रहता है। सॉरी, मतलब मैं सुबह सुबह ये बातें कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि आप ट्यूसडे हैं और आप घर से बाहर निकलेंगे काम के लिए, तो ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, और भी बारिश में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बारिश में भीगने का मन करे तो ज़रूर भीगें, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। और खुशी की बात पता क्या है कि धीरे धीरे ना ढेर सारे त्योहारों की लाइन लगने वाली है। परसों यानी 16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होगी, यानी कुछ दिन के बाद जो है वो त्यौहार आएंगे, और सावन भी जो है 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे तो सोचकर ही खुशी से गुदगुदी हो रही है। तो हर उत्सव में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड को अपने मोबाइल और रेडियो सेट पर ऑन करके गानों पर झूमे, नाचे और गाए और जिंदगी का मजा उठाए। अभी के लिए त्रिदेव मोई का ये धांसू सा गाना आपके लिए राइट है, सिर्फ और सुहानी शो में। मैं पंकज आपके साथ।

पहले मैंने सोचा था कि आपके लिए गाना और प्ले कर देता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी बात कर लेता हूँ ताकि टाइम कम ना पड़ जाए। और मैं आपको ये बताने वाला था कि भाई भोर सुहानी शो का टाइम जो है वो बस अब थोड़ी देर में पूरा होने वाला है और अगले घंटे आपके साथ होंगी मुक्ता अर्पण शो में आपके साथ। तो बाकी भाई मैं आपके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस शो में आप मेरे साथ रहे, और बाकी दोबारा जल्दी आपसे मिलूंगा। और हाँ, बारिश का मौसम जो है उसका खूब लुत्फ उठाइएगा, वाकई मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप पार्क वगैरह में घूमने जाएं तो उसका पूरा मजा लीजिए, बहुत सारी सेल्फीज लीजिए, उसके तो बहुत ही अच्छी फोटोज आती है। खैर, तो इसी तरह आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और मुझे यानी पंकज को दीजिए भोर सुहानी शो से अनुमति। दोबारा आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है और आइए अब हम आपको बता दें आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से यानी सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण, जिसमें मुक्ता आपके साथ रहेंगे। श्री रामचरितमानस गान आप ये बालकांड सुन सकते हैं भाग 121 सुबह 6:44 पर। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात मुक्ता के साथ। सुबह 8:45 पर मुक्ता एक बार फिर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम म्यूजिक दिल्लगी, जिसमें आप नए विषयों पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन, हेल्थ, फूड, रोड सेफ्टी आदि विषयों पर आप जानकारी लेंगे और साथ ही गीतों का आनंद लेंगे। सुबह 9:10 पर नाज शेख आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम म्यूजिक दिल्लगी।

सुबह 10:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स। ये रिक्वेस्ट बेस्ड शो है जिसमें नाज शेख आपके साथ रहेंगी और आपके पसंदीदा गीत आपको सुनवाएंगी। सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तस्वीर, जिसमें आज आप सुनेंगे हम्पी कर्नाटक के बारे में। नाज शेख इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे आज दोपहर 12:10 पर। इसमें नए नए विषयों पर आप जानकारी सुनेंगे, साथ ही गीतों का आप आनंद लेंगे। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी रजनी मेहंदी रत्ता और सोनाली रक्षित। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज मेहमान होंगे संगीतकार मदन मोहन, पर आप जानकारी ले पाएंगे, साथ ही उनके गीतों का आप आनंद लेंगे। रजनी मेहंदी रत्ता इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत करेंगी। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में रजनी मेहंदी रत्ता आपके साथ रहेंगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका नाम है किसान की बात। दोपहर 3:10 पर आप सुनेंगे अपराजिता सन्नातक के साथ कार्यक्रम मनभावन, ये रिक्वेस्ट बेस्ड शो है। शाम 4:10 पर अपराजिता सनातक आपके लिए लेकर आएंगी फिल्म सॉन्ग्स, और साथ ही साथ इसमें आप दिल्ली शहर की जानकारी का भी आप जो है आप सुन सकेंगे। शाम 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते अपराजिता के साथ, इसमें आप 90s और 80s के गीतों का आनंद ले सकते हैं। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विश्लेषण, ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम होगा और इसमें रूपा धवन आपके साथ होंगी। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ ढले रूपा धवन के साथ। 8:10 पर मधुरिमा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। ये थे आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जब विश्वास मजबूत हो तो हर बाधा रास्ता बन जाती है। श्री हनुमान ने हमारे बीच आकर ऐसा जीवन जीकर दिखाया। आइए हम भी

करें अपने विश्वास को मजबूत, हम भी करें अर्पण। जी हाँ, भक्ति संगीत और संत वाणी का ये संगम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:12 और ठीक 1 सेकंड हुए हैं। मंगल की इस प्रभात, मंगल की मुक्ता है आपके साथ। सुप्रभात।

भगवान शिव के विचार हमें जीवन का मूल सत्य बताते हैं। प्रभु कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने कर्मों के परिणाम चुनने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन उन कर्मों के फल से बचने की स्वतंत्रता तुम्हारे पास नहीं है।

बहुत वक्त पहले की बात है। कहते हैं दो नाविक गहरे समंदर में उसका खजाना इकट्ठा करने गए। उनकी रोजी रोटी समुद्र से मिले उसी सामान को बेचकर चलती थी। अब एक नाविक ने खूब सामान जुटा लिया और दूसरे ने कुछ कम सामान रखा। अब वो दोनों वापसी पर थे, तभी अचानक ज्यादा सामान वाले नाविक की नजर अपनी नाव पर गई, जिसमें छेद हो चुका था और नाव में पानी भर रहा था। किनारे तक उसकी नाव नहीं पहुंच पाई और डूब गई, जबकि कम सामान वाले की नाव साबुत होने के कारण किनारे लग गई। कहने का भाव केवल इतना कि हमारा जीवन एक नाव की तरह है, जिसमें धन, संपत्ति, संबंध, कई माया रूपी सामान हम लाद लेते हैं, लेकिन अगर जीवन रूपी इस नाव में अहंकार, क्रोध, लोभ या मोह रूपी छेद हो जाता है, तब भले ही माया के किसी भी रूप को हमने इकट्ठा किया हो, नाव किनारे नहीं लग पाती है। अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित करके ही हम सफल बना सकते हैं और परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोए, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। 6:31 और ठीक 38 सेकंड मंगल की मुक्ता के साथ अर्पण के ये भाव आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 107.1 MHz पर।

संत हमेशा कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और फल की लालसा से भी दूर करते हैं। रहीम लिखते हैं, निजकर क्रिया रहीम, कह सीधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में, दाव न अपने हाथ।

प्रभु को अर्पण होने वाला कभी न दुख से घबराए, प्रभु सहारे जीवन पथ पर नित आगे बढ़ता जाए। प्रभु को अर्पण होने वाला कभी न विचलित होता है, तू ही तू का सिमरन करके निर्भय होकर सोता है। प्रभु को अर्पण होने वाला बेफिक्र हो जाता है, चिंता वाली बात को अपने मन में कभी न लाता है। प्रभु को अर्पण होने वाला रहता नहीं उदास है, जो भी होगा अच्छा होगा उसको ये विश्वास है। प्रभु को अर्पण होने वाला आनंद से भरपूर रहे, कहे हरदेव सदा नाम की मस्ती में ही चूर रहे। छह बजकर 44 मिनट और ठीक 28 सेकंड हो चले हैं। अर्पण कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत दीजिए और आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का। आइए मिलकर श्रवण करते हैं।

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता है। ये नाव 2 जुलाई को समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाई जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जब हम खुद से करते हैं प्यार तो वही नींव बनती है दूसरों से प्यार करने की। जी हाँ जनाब, सबसे पहले अपने आप से कीजिए मुलाकात, कुछ बात और ढेर सारा प्यार अपने आप के साथ। 7:11 और ठीक 14 सेकंड, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गोल्ड सुप्रभात मंगल की मुक्ता के साथ।

जनाब, अगर भीतर सुकून हो तो प्यार का हर दिन है, लेकिन हाँ, मौसम बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है इस महसूसियत को थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा करने में। और ये जो मौसम है, ये पूरी तरह से बता रहा है कि प्यार के दिन तो आए हुए हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है इस वक्त बाहर का, आप जरूर निकल करके देखिए, क्योंकि बहुत कम दिखाई देते हैं 2 डिजिट में दिल्ली में, जब वायु की गुणवत्ता के स्तर को देखा जाता है। तो आज जब हम चेक कर रहे थे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा था मात्र 82 एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो फिर इस मौसम का लुत्फ उठाइए, हवा चल रही है, बारिश अभी हमें तो यहाँ नहीं दिख रही, हमारे आसपास के इलाके में, दिल्ली में मुझे लग रहा है कहीं बारिश हो रही होगी। अगर आपके इलाके में बारिश नहीं है तो पार्क में जाइए, वॉक कीजिए, और अगर है तो खिड़की पर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ इस मौसम का आनंद लीजिए। साल भर में बहुत कम दिखते हैं ये दिन। आज के अगर तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। सूर्योदय सुबह 5:32 पे हुआ था, और सूर्यास्त की अगर हम बात करें तो वो शाम 7:21 पर होगा। मौसम मौसम लवली मौसम, एंजॉय कीजिए इस मौसम को।

0: भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जनाब, हमारे बड़ों ने बिल्कुल भी ये बात गलत नहीं कही कि जोश के साथ होश को भी हमेशा जिंदा रखना चाहिए। अच्छा, ये बात आपको इसलिए कह रहे हैं कि मौसम खूबसूरत है, उसका आनंद लेना है, मन कर रहा है अदरक वाली चाय भी पीनी है, पकौड़े भी खाने हैं, लेकिन इस मौसम में अपनी सेहत का ख्याल भी बहुत ज़रूरी है हमें रखना। जी हाँ, ख़ास तौर पर हमारी पर्सनल हाइजीन। अब जानते हैं, बारिश होती है अगर हवा चल जाए तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन बारिश के बाद अगर हवा ना चले तो ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में प्यास लगना भी जायज़ है, बहुत सारा पानी पीने का मन करता है। सोर्स ऑफ वाटर बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा साफ रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। आप फिल्टर वाटर ही लें, क्योंकि ये पानी ही है जो अगर ख़राब स्थिति में लिया जाता है तो ये फूड पॉइजनिंग का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। जो दिल करता है तला भुना खाने का ऐसे मौसम में, अगर हल्का फुल्का होम मेड ले रहे हैं, तबीयत ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे में स्ट्रीट फूड खा लिया तो फिर 4-5 दिन के लिए दवाइयां खाने के लिए तैयार रहेगा। इस बारिश का आनंद लेना है तो अच्छी सेहत के साथ हमें लेना है, ताकि ये मॉनसून और ये पूरब से आने वाली हवा हमें इंजॉय करने का कारण ही बने, हमारे आनंद का कारण बने, कहीं भी परेशानी या बीमारी का

0: रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा और फिर सूरज ने कोशिश की मुझसे आंख मिलाने की। श्रोताओं, इस शेर का अर्थ बहुत ही काव्यात्मक और खूबसूरत है। इस शेर में उदासी या अकेलेपन के बीच एक नई उम्मीद और सुबह का बहुत ही जीवंत चित्रण किया गया है। इसका भाव कहता है कि अंधेरे कमरे में रोशनदान से सूरज की किरण का टुकड़ा आकर कवि के पास गिरा और मानो सूरज स्वयं अपनी रोशनी के जरिए उदास मन से मुस्कुराकर बातचीत करने और हालचाल पूछने की कोशिश कर रहा था। यह प्रकृति की सकारात्मकता को दर्शाता है, जो इंसान की मायूसी को दूर करके उसे एक नई ऊर्जा और जीवन से जुड़ने का संदेश देती है। तो आइए आज सवेरे के इस अंक की शुरुआत हम भी अपने अंतर्मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के संकल्प के साथ करें। मैं हूं सर फिरोजी और मेरे साथ हैं नीना अर्कल।
1: हेलो सर फिरोजी। And yes, the light from the sun, we get energy and we have inside our hearts also the light that we can spread for the betterment of humanity. A very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 14th of July 2026. Let's begin with the headlines.
0: जी नीना, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक शांति सुरक्षा और समतामूलक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत का शांति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के लगभग 50 शांति मिशन में करीब 3 लाख शांति सैनिक भेज चुका है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा संवाद, कूटनीति और विकासशील के हितों को महत्व देता रहा है। उन्होंने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की।
1: Information and Broadcasting Ministry has invited proposals for industry-led challenges under the World Audiovisual and Entertainment Summit Waves 2027, Create in India Challenge Season 2. The Create in India Challenge is a flagship initiative under the Waves aimed at identifying, nurturing, upskilling and showcasing creators across the media and entertainment sector. It also aims to create opportunities for collaboration across the media and entertainment domains, including artificial intelligence, digital media, and other technology-driven creative sectors. Entities from across the media and entertainment sector have been invited to submit their proposals through the wavesbazaar.com online portal by 31st of this month. To support the successful implementation of selected challenges, the ministry will provide a one-time grant of up to 1 crore rupees per challenge.
0: भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकुनूर अंतरिक्ष केंद्र से 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोस कोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे।
1: इंडियाज लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 is commencing at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh will inaugurate the event. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision, farm to fibre to factory to fashion to foreign, Bharat Tex 2026 aims at evolving into a premier platform for business, investment, sourcing, innovation, policy dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. A report.
0: The four-day event will showcase India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment, and international trade. It will bring together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, startups, and technology providers. Thousands of exhibitors, over 7,000 buyers, and delegates from more than 20 countries, including the United States, United Kingdom, Japan, Portugal, Spain, New Zealand, South Korea, among others, will participate in the event, highlighting strong government engagement. 8 states are partnering with the event this year, with 9 states and union territories participating as exhibitors. BharatTex 2026 aims to deepen international partnerships, unlock trade and investment opportunities, and strengthen India's position as a trusted partner across global textile value chains. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: All India Institute of Ayurveda, AIIA, New Delhi, will organize a 3-day international seminar, Soshrutam 2026, beginning Wednesday. A day-long pre-conference workshop will be held today. Celebrated annually on 15 July, Soshruta Jayanti commemorates Acharya Soshrutra, revered as the father of surgery. President Draupadi Murmu will take part in the inaugural ceremony. The seminar will foster a multidisciplinary exchange between Ayurveda and contemporary surgical sciences while strengthening research, education, innovation, and clinical excellence in the field of Ayurvedic surgery.
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तर से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान ना हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी।
1: Walking sticks and batons are more than just functional objects. They reflect craftsmanship, durability, and artistic expression. Showcasing this unique heritage, the Prime Minister Museum and Library, PMML, will organize a curated exhibition titled Walking with Legacy, From Necessity to Identity in New Delhi today. We have a report.
2: The exhibition is a curated showcase from the PMML Toshakhana featuring walking sticks and batons as markers of identity and governance. Depending on the purpose, walking sticks and batons may be plain or richly ornamented. Their handles and shafts are enhanced with materials including ivory, bone, brass, silver,

0: copper, gold, gemstones, and enamel. The finished pieces assembled and coated with wax, oil, shellac, or varnish for protection and durability. Crafted from materials such as ebony, mahogany, rosewood, teak, sisham, bamboo, malacca, cane, and other hardwoods, these objects showcase traditional woodworking techniques, including seasoning, shaping, turning, and polishing. Abhishek Mukhopadhyay for Aaj Savere, Akashvani News.
1: In Odisha, the sacred Nabajabana Darshan of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be held today at the Sri Jagannath Temple in Puri, marking the first public appearance of the sibling deities after the fortnight-long Anasara period. The deities, believed to have recuperated from their ceremonial illness following Snan Purnima, will be unveiled in their rejuvenated youthful form before lakhs of devotees expected to gather from across the country. The temple administration, district authorities and police have put in place elaborate security, crowd management and traffic arrangements to ensure a smooth and orderly darshan.
2: और अब रुख करते हैं खेलों का। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 170 और भारत ने 285 रन बनाए थे। क्रांति गौड़ को 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिला क्रिकेट टीम को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है।
1: Indian junior women's under 21 hockey team will take on Belgium at the Lillehammer National Sports Centre in England today in the final match of the United Kingdom Exposure Tour. The Indian side will be aiming to end the tour on a winning note after bouncing back with an impressive 2-0 victory over England. Before that, India held the USA to a 1-1 draw before narrowly losing 3-2 in the shootout.
2: नीना, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं को महानगरों की जानकारी देने का, तो आज कहाँ से शुरू कर रहे हैं?
1: लेट्स बिगिन विद चेन्नई सर फिरोजी।
2: जी,
1: A 53-year-old woman in Chennai suffered from a rare brain disorder caused due to chickenpox infection. Dr. Mehta's hospital performed emergency procedures and treated her over 40 days before she was discharged in stable condition. It was found that the chickenpox virus had spread to her central nervous system, causing a rare inflammation in the brain. Doctors also detected clots in a major vein that drains blood from the brain, leaving her a risk of fatal complications. With her deteriorating condition, doctors performed an emergency external ventricular drain procedure to remove excess cerebrospinal fluid.
2: और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में साइबर जागरूकता बढ़ाना, साइबर अपराध की रोकथाम, शोध, इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना है। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में कल एआई संचालित डस्ट पोर्टल 2.0, डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा विकसित ये अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म एआई की सहायता से निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की वास्तविक समय में निगरानी करेगा। इसके माध्यम से डेटा आधारित निगरानी और एनफोर्समेंट को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा।
1: News from Bengaluru now. The Department of Personnel and Administrative Reforms, e-Governance, under Government of Karnataka, had organized a state-level workshop on strengthening cybersecurity framework for state data for the government officials in Bengaluru yesterday. Over 80 senior officials representing over 30 departments, corporations, boards, and state agencies participated in the workshop to deliberate on strategies that reinforce cybersecurity cybersecurity within the state's digital governance ecosystem. It was resolved at the workshop to work in a coordinated manner to protect citizens' data, enhance cyber resilience, and secure the government's digital infrastructure so that Karnataka is prepared for future to protect its e-governance framework. The best cybersecurity practices for the State Data Center and Karnataka's unified cybersecurity strategy were discussed.
2: और अब बात करेंगे महानगर मुंबई की. यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिमी रेलवे प्रायोगिक तौर पर ट्रेन संख्या 129-35 और 129-36 बांद्रा टर्मिनस सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस को पालघर स्टेशन पर एक अतिरिक्त ठहराव प्रदान करेगा. पश्चिमी रेलवे ने कल एक बयान में कहा कि नई व्यवस्था 14 और 15 जुलाई से प्रभावी होगी. ट्रेन के समय और ठहराव के बारे में वेबसाइट www.inquiry.indianrail.gov.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है. सेना भर्ती कार्यालय ARO मुंबई इस माह की 20 तारीख से मौलाना अबुल कलाम आजाद स्पोर्ट्स स्टेडियम मुमरा ठाड़े में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन करेगा. ये रैली नंदूरबार, धुले, नासिक, ठाड़े, पालघर, मुंबई, मुंबई उपनगर और रायगढ़ के उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है. ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं. उम्मीदवारों को नियमित रूप से भारतीय सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
1: Moving over to Hyderabad now, during a recent extramural lectures EML event at the Indian Institute of Technology, Hyderabad, prominent Indian astronaut and AXIOM-4 mission member, Group Captain Shubhanshu Shukla, interacted with students, faculty and researchers to share India's grand vision for space exploration. Highlighting the nation's ambitious goals, Group Captain Shukla detailed plans to establish the Bharatiya Antariksha Station, Indian Space Station, and send an Indian astronaut to the moon by 2040. He emphasized that realizing these milestones depends heavily on the next generation of engineers, scientists, and innovators. He urged students to cultivate a multidisciplinary approach, a strong research mindset, and unwavering perseverance, noting that the rapidly evolving space sector requires specialized skills and robust research ecosystems.
2: और अब रुख करेंगे अपने आखिरी महानगर की ओर. कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 से 14 जुलाई तक दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पश्चिम बंगाल में हैं. आज श्री चौहान का वृक्षारोपण समारोह और नए सचिवालय भवन में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कृषि, ग्रामीण विकास और परियोजनाओं पर चर्चा का कार्यक्रम है. इसके बाद वे ICAR केंद्रीय जूट और संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे, जहां वे किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे. इसके बाद वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे. श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी. शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से. राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान के 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान के 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कोलकाता में भी गरज के साथ बौछार पड़ सकती है. न्यूनतम तापमान के 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. और नीना, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
1: Yes, Sir Firozi. Here's weather news from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is likely to witness a partly cloudy sky. The temperatures are expected to range between minimum 28 degrees and maximum 38 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 32 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky, becoming generally cloudy towards afternoon or evening or night. Temperatures are expected to range from 26 degrees to 35 degrees Celsius.
2: और नीना, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं को बताने का कि आज यानी 14 जुलाई का जो दिन है वो क्यों इतिहास में दर्ज हो गया।
1: 14 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज बेस्टिल डे, द नेशनल डे ऑफ फ्रांस, बट डू यू नो व्हाई?

0: This day is so significant. On 14 July 1789, the people of Paris stormed the Bastille, a fortress prison that had become a symbol of French king's absolute rule. Although only a few prisoners were held there, the fall of Bastille represented the people's demand for freedom, justice and equal rights.
1: और यही घटना फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, जिसने दुनिया को लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। आज भी 14 जुलाई को फ्रांस में ये दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मिलिट्री परेड, आतिशबाजी और कई तरह के सार्वजनिक समारोह इस दिन आयोजित किए जाते हैं।
0: In 1798, the Sedition Act was passed in the United States as part of the Alien and Sedition Acts. In 1853, the first major World's Fair in the United States, the Exhibition of the Industry of All Nations, opened in New York City.
1: और आज ही के दिन 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने वर्धा प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी, जिसे अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपचारिक रूप से शुरू किया गया।
0: In 1965, NASA's Mariner 4 spacecraft transmitted the first close-up images of Mars after its historic flyby.
1: और 2013 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने IRNSS-1A का सफल प्रक्षेपण किया। ये भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का पहला उपग्रह था, जिसे बाद में नाविक के नाम से जाना गया।
0: In 2015, New Horizons became the first spacecraft to fly past Pluto, sending back humanity's first detailed images of the dwarf planet.
1: और 2023 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर LVM-3M4 रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर संचालन का प्रदर्शन करना था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना दिया। और नीना, आज ही के दिन कुछ ऐसी हस्तियां भी थी जो हमसे अलविदा जिन्होंने लिया और जो इस दुनिया में आई, तो उनका भी अब जिक्र कर लेते हैं।
0: यस सर फिरोजी, Madan Mohan Kohli, better known as Madan Mohan, was an Indian music director of the 1950s and 1960s and 1970s. He is considered one of the most melodious and skilled music directors of the Hindi film industry. He is particularly remembered for the immortal ghazals he composed for Hindi films. Some of his best works are with singers Lata Mangeshkar, Mohammad Rafi, Talat Mehmood, three singers he worked with frequently for most of his career. He joined the army as a second lieutenant in the year 1943. He served there for 2 years until end of World War II, when he left the army and returned to Mumbai to pursue his musical interests. In 1946, he joined the All India Radio Lucknow as program assistant, where he came in contact with various artists such as Ustad Fayaz Khan, Ustad Ali Akbar Khan, Begum Akhtar and Talat Mehmood. During these days, he would also compose music for programs to be broadcast on All India Radio. In 1947, he was transferred to All India Radio Delhi, where he worked for a short period. And this is interesting news, Sir Ferozi. He was very fond of singing, and in 1947, he got his first chance to record two ghazals.
1: जहाँ चले इसके बाद मैं तो

मदन मोहन ने अपने ढाई दशक लंबे सिने कैरियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा मेहंदी अली खान, रचित गीतों में आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, लग जा गले

वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म हकीकत में मोहम्मद रफी की आवाज में मदन मोहन के संगीत से सजा गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आज भी श्रोताओं में देशभक्ति के जज्बे को बुलंद कर देता है और आंखों को नम कर देने वाला ऐसा संगीत सिर्फ मदन मोहन ही दे सकते थे।

आज हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री लीला चिटनिस की भी पुण्यतिथि है। लीला चिटनिस ने 52 वर्ष तक अभिनय किया और अशोक कुमार की नायिका रही। उसके बाद उन्होंने अनेक फिल्मों में दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की मां की भूमिकाओं में वो नजर आई। लीला चिटनिस ने अभिनय करने के अलावा एक फिल्म आज की बात का निर्माण और निर्देशन भी किया। इनकी प्रमुख फिल्मों में आवारा, बंधन, कंगन, काला बाजार और इंसाफ आदि शामिल है। आइए सुनते हैं इन पर फिल्माया एक गीत।

0: विद्यालय के पूर्व छात्र शिवपुरी राष्ट्रीय रंगमंच विद्यालय की रिपर्टरी कंपनी के पहले प्रमुख और इसके अभिनेताओं में से एक बने। बाद में इन्होंने नई दिल्ली में अपने समय के महत्वपूर्ण रंगमंच समूह दिशांतर की स्थापना की। ओम शिवपुरी ने 1971 में मणिकौल की फिल्म आषाढ़ का एक दिन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसके बाद 1972 में गुलजार की फिल्म कोशिश आई। इन्होंने अपने 20 साल के करियर में 175 से अधिक फिल्मों में काम किया। हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी फिल्म का एक डायलॉग।
1: कैसा मनुष्य साया पड़ा है तुम्हारा, मेरे बेटे का नाम कट गया है कॉलेज से।
2: हाँ हाँ सब सुन चुका हूँ। आज उसने हंगामा किया, कल को खत्म करेगा, परसों बम के केस में पकड़ा जाएगा। तुम मुझे टेररिस्ट बनाना चाहती?
1: मुझे इल्जाम मत दो, अपनी बदनीयति का हिसाब करो। वो मेरी ममता की छांव में आराम की नींद सो रहा था, क्यों जगाया उसे, क्यों बताया उसे कि उसका बाप जिंदा है?
2: क्यों नहीं बताता उसे? वो कोई लावारिस नहीं, हमारा खून है।
1: तुम्हारा खून है? उस वक्त तुम्हारे खून ने जोश क्यों नहीं मारा था जब परसों पहले मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई थी? उस वक्त ना तुमने उसके सर पर हाथ रखा और ना मुझे कबूल किया। आज जब मेरे बेटे का कद मेरी आरज़ुओं के बराबर आया है तो उसे फांसने के लिए जाल बिछाना चाहते हो?
2: मैं उसकी तकदीर बनाना चाहता हूँ।
3: सर जेफरी विल्किंसन was a Nobel laureate English chemist who pioneered inorganic chemistry and homogeneous transition metal catalysis. Wilkinson is well known for his popularization of the US of the use of Wilkinson's catalyst in catalytic hydrogenation and for the discovery of the structure of ferrocene.
0: और श्रोताओं अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सर फिरोजी और नीना अर्कल को दीजिए इजाजत, कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड। नमस्कार।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में

0: मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा शंकरपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की

0: मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और 200 रूपये के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी।

0: win the cup at London's SW19. Resilience has been the remarkable quality in Zinner's journey to a fifth Grand Slam in the final. And finally, Amar Chitrakatha, set to launch Hindustan Aeronautics Limited, HAL, comic book, reports Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the third consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India scraped history at Lord's in London with 270-run win over England in a one-off women's test. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाब्ता आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में भारत की उम्मीदवारी का आगाज करते हुए वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने कहा कि दुनिया बढ़ते हुए तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम का सामना कर रही है, जिसकी वजह से अक्वामे मुत्तहिदा का रोल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। उन्होंने भारत के शांति विजन का भी ऐलान किया, जिसका मतलब है उसूलों, एतमाद और दयानतदारी के जरिए जामे तरक्की को यकीनी बनाना। उन्होंने कहा कि यह विजन आलमी अमन, सलामती और मुसावी मुनसिफाना तरक्की के लिए भारत की रहनुमाई करेगा। भारत की खिदमात को उजागर करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत अक्वामे मुत्तहिदा के कयाम से अब तक तकरीबन 3 लाख अहलकारों को अक्वामे मुत्तहिदा के तकरीबन 50 कयाम अमन मिशन्स में भेज चुका है, जबकि इस वक्त 4,300 से ज्यादा भारतीय अहलकार 10 मुख्तलिफ कयाम अमन मिशन्स में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मुजाकिरात और सिफारतकारी का हामी रहा है और उसने आलमी खित्ते जनूब के खदशात और मफादात को आलमी सतह पर मौसर आवाज फराहम करने की कोशिश की है। अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से हिमायत की अपील करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सलामती कौंसिल में भारत की मौजूदगी इस अहम इदारे में फैसला साजी को मजीद तकवीत फराहम करेगी। भारत अगर मुंतखब हो जाता है तो वह 2028 से 2 साल तक सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहेगा। इससे कबल भारत 8 मरतबा सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है, जिनमें सबसे हालिया मुद्दत 2021-22 थी। वियतनाम के फूकोक जजीरे के नजदीक कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी कल रात मुंबई पहुंच गया। मेलुकिन के जसद खाकी को होचिन मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाया गया। इस अमल को वियतनाम में मौजूद भारत के सिफारती मिशन ने वियतनाम के हुक्काम के साथ मिलकर मुकम्मल किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की रियासती हुकूमतों से कहा गया है कि वो महलुकीन के अहले खाना के साथ राब्ते में रहें और जसद खाकी को उनके आबाई शहरों तक पहुंचाने के इंतजामात में ताउन फराहम करें। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने इमदादी कार्रवाई, लाशों की शिनाख्त और उन्हें वतन वापस भेजने के अमल में तआवुन के लिए वियतनाम के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 32 भारतीय सयाहों और 4 मकामी अमले के अरकान को ले जाने वाली एक तेज रफ्तार कश्ती जुमे के रोज फूकोक जजीरे के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 15 भारतीय सयाह हलाक हो गए। इस हादसे में बच जाने वाले 16 अफराद भारत वापस आ चुके हैं, जबकि एक जख्मी सयाह अब भी वियतनाम के एक अस्पताल में जेर इलाज है। मगरबी बंगाल के साहिल से दूर रवा माह के अवाइल में लापता होने वाली मछली पकड़ने वाली एक कश्ती के बारे में मालूम हुआ है कि वो खलीज बंगाल में उलट गई थी, जिसमें 9 माहीगीरों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 6 दीगर अब भी लापता हैं। ये कश्ती 2 जुलाई को 15 माहीगीरों के साथ शंकरपुर बंदरगाह से रवाना हुई थी। इस कश्ती से आखिरी बार राबता 5 जुलाई को हुआ था, जिसके बाद इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इतवार के रोज कोस्ट गार्ड, भारतीय बहरिया और रियासती एजेंसियों की मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान खलीज बंगाल में इस उल्टी हुई कश्ती का पता चला। कश्ती के कैबिन से 9 बोसीदा लाशें बरामद की गईं, जबकि 6 अफराद अब भी लापता हैं। इन लाशों को जनूबी 24 परगना जिले के सीतारामपुर लाया गया है और शिनाख्त के लिए कटापुकुर मुर्दा खाने में रखा गया है। लाशों की शिनाख्त के मकसद से डीएनए मिलाप के लिए अहले खाना के खून के नमूने भी लिए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुनबों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की है। वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से हलाक होने वाले हर शख्स के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: मछली पकड़ने वाली यह कश्ती FB माँ काली मशरकी मिदनीपुर के दीघा शंकरपुर माहीगीरी बंदरगाह से 2 जुलाई को 15 माहीगीरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई को इस कश्ती से राबता मुनकता हो गया था। भारतीय कोस्ट गार्ड, बहरिया और रियासती एजेंसियों की जानिब से कई दिनों तक मुश्तरका तलाशी मुहिम चलाई गई। बिलाखिर शनिचर की दोपहर को जनूबी 24 परगना के काप द्वीप साहिल के करीब इसका पता लगा लिया गया। इमदादी टीमों ने कश्ती के कैबिन से 9 फरसुदा लाशें बरामद कर ली हैं, जबकि 6 माहीगीर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आसपास के पानी में तलाशी की कार्रवाई ताहाल जारी है। मगरबी बंगाल के माहीगीरी के वजीर राजेश महतो ने सोगवार खानदानों को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। DNA की तस्दीक और कानूनी जब्ते मुकम्मल होने के बाद लाशें उनके मुतल्लिका लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। कोलकाता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: भारत की सबसे बड़ी आलमी टेक्सटाइल नुमाइश भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रही है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5F विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन से मुतासिर भारत टैक्स 2026 का मकसद इस कारोबार, सरमायाकारी, खाम माल की फराहमी, इख्तिरात, पॉलिसी साजी की बातचीत और टेक्सटाइल वैल्यू चेन में इश्तराक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए एक आलमी मेयार का प्लेटफॉर्म बनाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: ये 4 रोजा प्रोग्राम टेक्सटाइल, फैशन, पायदारी, टेक्नोलॉजी, इख्तिरात, सरमायाकारी और बैनुल अक्वामी तिजारत में आलमी सतह पर भारत की बढ़ती हुई क़यादत को उजागर करेगा। इस नुमाइश में सनतकार, बरामद कुनंदगान, आलमी खरीदार, सरमायाकार, पॉलिसी साज, बैनुल अक्वामी वफूद, दस्तकार, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी फराहम करने वाले इदारे एक जगह इकट्ठा होंगे। इस तकरीब में हजारों नुमाइश कुनंदगान, 7,000 से ज्यादा खरीदार और मंदोबीन और 20 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे, जिनमें अमरीका, बरतानिया, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक शामिल हैं। हुकूमत के तआवुन को नुमाया करते हुए इस साल 8 रियासतें इस तकरीब की शराकत दार हैं, जबकि 9 रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके नुमाइश कुनिंदगान के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
2: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमले जारी रहेंगे ताकि ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके और आबनाए हुरमुज में बेगुनाह शहरियों और तिजारती जहाजों पर हमले करने की उनकी सलाहियत को खत्म किया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वो पिकैक्स पहाड़ियों में वाकई नतांज के करीब जेर जमीन न्यूक्लियाई ठिकाने को तबाह कर देंगे, जहां मगरबी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान गैर ऐलानिया तौर पर यूरेनियम अफजूदगी का मरकज कायम कर रहा है। तफसील हमारी नामा निगार से।
5: अमरीकी सदर ने यह भी ऐलान किया कि अमरीका आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करेगा और इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाजों पर 20% चार्ज आयद करेगा ताकि समंदरी सिक्योरिटी के खराजात पूरे किए जा सके। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि यह नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाजों और उन जहाजों पर लागू होगी जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुरमुज खुली है और खुली रहेगी चाहे ईरान इससे मुत्तफिक हो या ना हो। उन्होंने कहा कि दिगर ममालिक के तजारती जहाजों को आजादाना आमदोरफ्त की इजाजत बरकरार रहेगी। अमरीकी फौज ने यह भी ऐलान किया कि वह आज रात से ईरानी बंदरगाहों की दोबारा नाकाबंदी शुरू करेगी। दूसरी जानब ईरान ने अमरीका के इकदाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि आबनाए हुरमुज पर उसका मुकम्मल इख्तियार बरकरार है। ईरान ने वाजे किया किसी भी सूरत में अमरीका को आबनाए हुरमुज के बंदोबस्त में मुदाखलत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: मुत्तहिदा अरब इमारात के दो टैंकरों पर आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान ईरानी क्रूज मिसाइलों के हमले के बाद भारतीय अमले का एक रुकन हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। यूएई की वजारत दिफा ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में यह इत्तला दी है। वजारत ने कहा कि इन टैंकरों मुंबासा और अलबाहिया को ओमान की आबी हदूद में आबनाए हुरमुज की जनूबी गुजरगाह में निशाना बनाया गया। हलाक होने वाला अमले का रुकन मुंबासा टैंकर में सवार था। जख्मी होने वाले 8 अफराद में से 4 शदीद तौर पर जख्मी हैं। जख्मियों में 6 भारतीय शहरी जबकि यूक्रेन के 2 शहरी हैं। यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने दावा किया है कि उन्होंने कल सऊदी अरब के अबा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। हूसियों के मुताबिक यह हमला यमन के सना बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर होने वाले फजाई हमलों के जवाब में किया गया, जिनके बारे में उनका दावा है कि वो हमले सऊदी अरब ने किए थे। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम ये कार्रवाई कशीदगी में एक नुमाया इजाफा समझी जा रही है क्योंकि कई बरस कबल सऊदी अरब क्यादत वाले इत्तेहाद की जानिब से हूसियों के जेर कंट्रोल इलाकों पर हमलों के बाद इस नौयत की सूरत हाल दोबारा सामने आई है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज बिहार और ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। खवातीन क्रिकेट में कल लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। मर्दों की भारतीय क्रिकेट टीम आज 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगी। यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारत की 21 साल तक की उम्र की जूनियर खवातीन हॉकी टीम ने अपने बरतानिया दौरे के आखिरी मैच में आज इंग्लैंड में लीलशाल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में बेल्जियम का मुकाबला करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ 0-2 की शानदार जीत के साथ वापसी के बाद भारतीय टीम इस दौरे का इख्तिताम जीत के साथ करने की कोशिश करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
3: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की छह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की छह सुर्खी है, भारत और जापान ने आजाद, खुले और कवानीन पर मबनी भारत बहरुल काहिल खित्ते के लिए अपनी अहदबस्तगी का अदा किया। अखबार इंकलाब की छह सुर्खी है, गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 अहम तजुर्बात का मियाबी के साथ मुकम्मल। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरगर्मी तेज, पार्लियामानी कमेटी लखनऊ पहुंची। दौरे का मकसद सियासी जमातों, सरकारी अफसरान और दीगर फरीकों से तजावीज हासिल करना है। यह खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार प्रताप लिखता है कि वजीर आजम मोदी ने फिजिक्स ओलंपियाड जीतने वाले भारतीय तलबा को मुबारकबाद दी। अखबारात ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के इस

0: बयान को नुमाया किया है कि खवातीन की खुदमुख्तारी विकसित भारत का संग बुनियाद बन चुकी है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाब्ता तौर पर आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार और ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मर्तबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

सुकून से भरी जिंदगी सफल जिंदगी से कहीं बेहतर है जनाब, क्योंकि संतुष्टि का स्तर हमारा दिल, दिमाग और आत्मा निर्धारित करती है, जबकि सफलता का स्तर दुनिया के लोग तय करते हैं। तो क्यों दें जनाब किसी के हाथ में अपने जीवन की कमान? मौसम का लुत्फ उठाइए, सुकून से रहिए और करिए म्यूजिकल दिल लगी मंगल की मुक्ता के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जी हाँ, चलते रहिए जनाब सुकून के साथ। ये मौसम इतना खूबसूरत है कि ड्राइविंग का आप लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस वक्त रोड पर है जाम तो कोई बात नहीं, हम है ना आपके लिए खूबसूरत गीत लेकर आते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं जुड़ी रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, मजा तो आ रहा है हमें और आप दोनों को यकीनन। लेकिन अगर आपके साथ आपका प्यार है तो हमें पता है आपका ये मजा दोगुना होगा इस वक्त। जनाब, ये जीवन है और इस जीवन में नए रिश्ते बनते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई रिश्ते टूट भी जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद एकदम से कोई बात हुई होगी, कोई धोखा हुआ होगा, कोई तूफान सा आया और रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन दोस्त, मुझे लगता है कि प्रेम का अंत किसी बड़ी लड़ाई से नहीं होता है। प्यार खत्म होता है रोज रोज की छोटी छोटी इग्नोरेंस से, एक टाली गई डिस्कशन से, एक अनसुने मैसेज से, एक ऐसे वादे से प्यार कम हो जाता है जिसे निभाने की जरूरत अक्सर हम समझते ही नहीं है। प्यार कम होता है एक ऐसी सुबह से जिसमें अपने दूर चले गए बिना कुछ कहे, एक ऐसी शाम से जब पूछा ही नहीं गया कि दिन कैसा बीता। दोस्त, पौधा इसलिए नहीं सूखता कि उसे काट दिया गया, बल्कि इसलिए सूखा है कि एक लंबे समय तक उस पौधे को पानी ही नहीं मिला। पता है, प्यार किया नहीं जाता है, ये महसूस किया जाता है। और इसीलिए अपने रिश्ते को, अपने प्यार को एहसास करवाइए कि आप हैं और आप अपने लिए ही नहीं उनके लिए भी बहुत खास हैं, और वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और फिर देखिएगा कि ये जीवन और आपका साथ आपकी हर दुख को अदा कर देगा और आपकी हर खुशी को दोगुना कर देगा।

जी हाँ, आपका चेहरा भी हमेशा यूं ही खिला रहे, हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। मंगल की मुक्ता म्यूजिकल दिल्लगी से लेगी इजाजत। हिंदी और अंग्रेजी में होंगे अब समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल्लगी की यात्रा नाज बढ़ाएंगी आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। डॉ जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में नौ मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगे। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई थी। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायुरक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एकतरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई है। ओमान के पास होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में रानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य और उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term, launching India's candidature at the UN headquarters in New York. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, "The world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever."
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
0: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said, India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception. If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. State governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been asked to coordinate with the bereaved families of the onward transportation of the bodies to their hometowns. Indian Embassy in Vietnam also expressed gratitude to the Vietnamese authorities for their support during the rescue, identification and repatriation process following the tragedy. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 others still missing. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the tragedy. They conveyed condolences to the families of the deceased and wished a speedy recovery to those injured. The Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. The National Testing Agency, NTA, has activated the NEET UG 2026 re-exam OMR sheets and recorded responses for the candidates on the official website neet.nta.nic.in. NTA said that candidates can log in using their application number and compare their marked answers with what the scanner reads. If something doesn't match, candidates may select the question and tick their claimed option and submit a challenge on payment of non-refundable processing fee of 200 rupees. The

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वाली मॉर्निंग। म्यूजिकल दिल्लगी लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। तो फिर चलिए करते हैं शो का आगाज और सुनते हैं आज की प्लेलिस्ट से ये पहला गाना।

तो नाचते गाते इस कमाल के ट्रैक को एंजॉय करने के बाद आइए कर लेते हैं अब कुछ काम की बातें। आज है 14 जुलाई, दिन मंगलवार और साल है 2026। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है आज, और इसके साथ ही काउ अप्रिसिएशन डे भी है आज, जो दुनिया भर के कई देशों में गायों के महत्व को सराहने के लिए जुलाई के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है, जो कि अक्सर 14 जुलाई को ही पड़ता है। इसके अलावा आज ही मनाया जाता है नेशनल मैक एंड चीज डे भी, जो खास तौर पर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में इस मशहूर फूड डिश को डेडिकेट करते हुए सेलिब्रेट किया जाता है। तो फिर चलिए हम भी सेलिब्रेट करते हैं आज का ये दिन और ये खुशहाल जिंदगी भी, जो हंसने गाने के लिए ही तो है।

हंसते गाते और मुस्कुराते। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मौसम की भी। तो जनाब, मॉनसून तो आ गया है, लेकिन उसके साथ उमस और गर्मी का प्रकोप भी जारी है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तर भारत में कई जगह आंधी और अचानक बौछार पड़ सकती है, जबकि पहाड़ी और तटीय इलाकों में मानसून अपना पूरा असर दिखाएगा, ऐसी संभावना जताई गई है। और इस मौसम में कैसे रखें अपना ख्याल, ये जानना भी बेहद जरूरी है। बस रखना है कुछ बातों का ध्यान, जैसे अपने घर या आसपास पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो मच्छरों के पनपने के लिए बेस्ट जगह हो सकती है। शाम के समय बाहर निकलें तो खुद को अच्छी तरह ढक कर रखें और खास तौर पर बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। घर का ताजा खाना ही खाएं और पानी को भी अच्छी तरह फिल्टर या फिर उबाल कर ही इस्तेमाल में लाएं।

बेस्टिल डे या फिर फ्रेंच नेशनल डे के रूप में भी आज के दिन यानी 14 जुलाई को जाना जाता है, क्योंकि साल 1789 में आज ही के दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में बास्ली जेल के पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति की हुई थी शुरुआत। इसके अलावा महासागरों के इकोसिस्टम में शार्क मछलियों की अहमियत क्या है, ये भी हमें आज का दिन बताता है, क्योंकि शार्क मछलियों के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का मकसद छुपाए है आज की तारीख, और इसीलिए आज के दिन को जाना जाता है शार्क अवेयरनेस डे यानी शार्क जागरूकता दिवस के रूप में भी। अब चलें जंगल की ओर, तो चिंपैंजीज कितने जरूरी हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए ये भी समझाता है आज का दिन, क्योंकि आज है वर्ल्ड चिंपैंजी डे भी। सुनते हैं ये अगला ट्रैक, जिसके बाद जानेंगे आज के दिन से जुड़ी और भी कुछ खास और जरूरी बातें।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जारी है म्यूजिकल दिल लगी, जहां खूबसूरत गानों की झड़ी के साथ मिल रही है आपको आज के दिन से जुड़ी हर जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी। तो साल था वो 1942, जब आज ही के दिन यानी 14 जुलाई को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। इससे पहले साल 1850 में आज ही के दिन मशीन द्वारा जमाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन भी आज ही के दिन यानी 14 जुलाई को हुआ था। साल 1951 में घुड़दौड़ के रूप में किसी स्पोर्ट्स इवेंट का पहली बार रंगीन प्रसारण आज ही के दिन हुआ था। इसके बाद साल 1965 में आज ही का था वो खास दिन, जब मंगल ग्रह के पास से गुजरने वाले नासा के अंतरिक्ष यान ने ली थी किसी दूसरे ग्रह की पहली क्लोजअप तस्वीरें।

साल 2015 में भी आज की तारीख यानी 14 जुलाई बहुत खास रही, जब नासा के अंतरिक्ष यान न्यू होराइजन ने प्लूटो, जिसे यम ग्रह भी कहा जाता है, उसके पास से गुजरते हुए उसकी सतह की पहली सबसे साफ तस्वीरें ली थी। प्लूटो से लगभग 12,500 किलोमीटर की दूरी से ये यान गुजरा था आज ही के दिन, और प्लूटो की बर्फीली पहाड़ियों, उसके वातावरण की परतों के साथ साथ दिल के आकार की सतह, जिसे टॉम्बो रेजियो कहा जाता है, उसकी एकदम साफ तस्वीरें ली थी।

ये पहला मौका था जब किसी मानव मिशन ने किसी बौने ग्रह की इतनी करीबी झलक दुनिया को दिखाई और इसी के साथ खुल गया सौर मंडल के बाहरी हिस्सों को समझने की दिशा में एक नया दरवाजा और हमारे वैज्ञानिकों को मिली एक नई दिशा।

म्यूजिकल दिल लगी चल रहा है प्रोग्राम जिसे सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मेरे यानी नाज के साथ, जहां बात हो रही थी आज की तारीख यानी 14 जुलाई की, जो खास है कुछ बेहद खास लोगों के जन्म दिवस के रूप में भी। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गणेश आगरकर के साथ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने गए चंद्रभानु गुप्त और देश बंधु गुप्त जी का है आज जन्म दिवस। तो वहीं 30 से 80 के दशक तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाने वाली मशहूर एक्ट्रेस लीला चिटनिस जी की पुण्यतिथि भी आज यानी 14 जुलाई को है। भारतीय सिनेमा की पहली ग्रेजुएट अभिनेत्री के तौर पर जानी जाने वाली लीला चिटनिस जी ने हिंदी सिनेमा में शुरुआत साल 1935 में आई फिल्म श्री सत्यनारायण से की थी। हालांकि उन्हें उनकी असली पहचान 1937 में आई फिल्म जेंटलमैन डाकू से मिली, जिसमें उन्होंने मेल अटायर में एक बदमाश की भूमिका निभाई थी।

और बॉलीवुड में द किंग ऑफ गजल्स के नाम से मशहूर संगीतकार मदन मोहन जी का भी आज स्मृति दिवस है, जिनका किरदार लता जी के करियर में काफी अहम माना जाता है। बतौर गायक साल 1948 में आई फिल्म शहीद में उन्होंने रफी साहब के साथ शुरुआत की, फिर संगीतकार के तौर पर उन्हें उनका पहला बड़ा ब्रेक साल 1950 में फिल्म आंखें से मिला। तो आइए उन्हीं के सुरों से सजे इस अगले गीत को सुनते हैं और उन्हें याद करते हैं।

घर की रौनक, आंगन की वो प्यारी सी मुस्कान है। घर की रौनक, आंगन की वो प्यारी सी मुस्कान है। बेटी सिर्फ बेटी नहीं, पिता का वो अभिमान है। उसकी आंखों में सजे हर ख्वाब को पूरा करना है। उसके कल को महकाने के लिए आज ही से कुछ करना है। लेकिन आखिर क्या करें ऐसा जिससे बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके? अगर आपके मन में भी है ये सवाल, तो जवाब है सीधा एंड सिंपल। चुनना है भारत सरकार की मशहूर और सुरक्षित लघु बचत योजना का विकल्प और कर लेना है रजिस्ट्रेशन सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, जो कि हिस्सा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन का, और जिसका मकसद है बेटियों की शिक्षा और उनके विवाह से जुड़े खर्चों के लिए एक बड़ा फंड तैयार करना।

ध्यान में जो बातें रखनी हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बिटिया की उम्र 10 साल पार करे उससे पहले ही उसके नाम पर इस योजना के तहत खाता खुल जाना चाहिए। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए आप एक वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं और खाता खोलने की तारीख से अगले 15 सालों तक आपको इसमें पैसे जमा करने होते हैं। अभी वर्तमान में इस योजना के तहत 8.2% वार्षिक ब्याज आपको मिल रहा है, जिसमें सालाना कंपाउंडिंग की सुविधा आपको मिलती है। हाँ, अगर बीच में आपको बिटिया की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप जमा कुल राशि का 50% हिस्सा निकाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि बिटिया की उम्र 18 के पार होनी चाहिए या फिर उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली हो।

देखिए दिल और उसके जज्बात कुछ ऐसे ही होते हैं कि चाहे लाख कोशिशें कर ली जाएं, जोर इस दिल पर चलता नहीं। तभी तो कहा गया है कि वो जा चुके हैं छोड़कर कब के ये शहर, मगर ये दिल उनकी आमद की आस छोड़ता नहीं। दिमाग कहता है कि अब वो लौटकर नहीं आएंगे, मगर ये नादान दिल है कि मानता ही नहीं।

ये दिल माने या ना माने, और वो जिनका है इंतजार, वो भले ही लौटे या ना लौटे, मैं यानी ना जरूर लौटूंगी और मिलूंगी आपसे अब ठीक 10:30 पर। प्रोग्राम होगा आपका फेवरेट दिल का मेलबॉक्स, और अभी इस गाने के उस पार सुनिएगा देश और दुनिया से जुड़ी हर जरूरी खबर हिंदी और अंग्रेजी में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: Peacekeeping has been a crucial element of
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: Across 10 of the 11 active missions.
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, खेत से फाइबर, कारखाने से फैक्ट्री, फैशन से विदेश तक से प्रेरित भारत टेक्स 2026 का उद्देश्य वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश स्रोत, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित होना है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। ओमान के पास होर्मुज़ जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज़ से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज़ जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज़ जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अब तक 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं और 6 लापता हैं। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य को उसके प्रकाश के बिना नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना नहीं हो सकता। संस्कृत का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार सूर्य उसके प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व और शक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। खेलों में इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council UNSC for the 2028-29 term, launching India's candidature at the UN headquarters in New York. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
1: It is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful, and equitable world.
3: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. The mortal remains of 15 Indian tourists who lost their lives in a boat tragedy near Phu Quoc Island in Vietnam arrived in Mumbai last night. The victims were flown from Ho Chi Minh City on a Vietnam Airlines flight after Indian diplomatic missions coordinated the repatriation process with Vietnamese authorities. A fishing trawler that had gone missing off the West Bengal coast earlier this month has been found capsized in the Bay of Bengal, with 9 fishermen confirmed dead and 6 others still missing. President, Vice President and Prime Minister have expressed grief over the tragedy. They conveyed condolences to the families of the deceased and wished a speedy recovery to those injured. The Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, is commencing at Bharat Mandapam in New Delhi today. The event aims at evolving into a premier platform for business, investment, sourcing, innovation, policy, dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. In Odisha, the sacred Navojovana Darshan of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be held today at the Sri Jagannath Temple in Puri, marking the first public appearance of the sibling deities after the fortnight-long Anusara period. United States launched strikes on Iran for a third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. U.S. Central Command, CENTCOM, said the strikes will continue imposing a heavy cost of Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and commercial shipping in the Strait of Hormuz. U.S. President Donald Trump threatened to destroy Pickaxe Mountain, a deeply buried nuclear site near Natanz, where Western intelligence suspects Iran is building an undeclared enrichment facility, a report.
4: U.S. President has announced that the United States will reinstate a blockade on Iranian shipping in the Strait of Hormuz and impose a 20% charge on cargo transiting the strategic waterway to cover the cost of maritime security. In a post on Truth Social, President Trump said the blockade would apply only to Iranian ships and vessels trading with Iran. He added the Hormuz Strait is open and will remain open with or without Iran. He assured that commercial traffic from other countries would continue to have free passage. The U.S. military said it will resume the blockade of Iranian ports from tonight.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए आधिकारिक रूप से अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। इस घोषणा के बाद कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल। और भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। इनमें से 3 शव मुंबई से आंध्र प्रदेश पहुंचाए गए हैं। केरल और तमिलनाडु की सरकारें भी शवों को उनके परिजनों के आवास पर पहुंचाने में समन्वय कर रही है। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास होर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
2: अमेरिका ने आज से होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरते समय संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 2 टैंकरों पर ईरान की क्रूज मिसाइलों के हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। 6 भारतीयों सहित चालक दल के 8 सदस्य घायल हो गए। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने आज सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी।
3: मोम्बासा और अलबहिया टैंकरों को जलडमरू मध्य के दक्षिणी लेन में ओमान की समुद्री सीमा के भीतर निशाना बनाया गया। मारे गए क्रू सदस्य मोम्बासा टैंकर पर सवार थे। घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की निंदा अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया। मंत्रालय ने कहा कि वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क है। मंत्रालय का कहना है कि देश की सुरक्षा तथा स्थिरता को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का कड़ा जवाब देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ये कदम यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई हमलों के जवाब में उठाया गया है। उनका आरोप है कि ये हमले कल रियाद ने किए थे। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इन हमलों ने तनाव को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जो सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा कई साल पहले हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले के बाद से नहीं देखा गया था। सऊदी अरब के अधिकारियों ने यमन में हवाई हमलों के बारे में तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री पियोत्र द्रुवरोव और अन्ना किकीना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। भारत ने इंग्लैंड को 270 रनों से करारी शिकस्त देकर एकमात्र टेस्ट की श्रृंखला अपने नाम कर ली। 457 रनों के विशाल लक्ष्य के जवाब में अंतिम दिन इंग्लैंड 186 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की पिछले 11 टेस्ट मैचों में ये 7वीं जीत है। साथ ही इंग्लैंड में महिला टेस्ट मैचों में उनका अजेय रिकॉर्ड भी बरकरार है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मांडविया ने कहा कि इंग्लैंड पर 270 रनों की शानदार जीत इस उपलब्धि को और भी खास बनाती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरण रिजिजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ टीम को शुभकामनाएं दी। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए आधिकारिक रूप से अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर

मुंबई लाए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। इस घोषणा के बाद कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल। और खेलों में भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, वेलकम वंस अगेन इन योर फेवरेट शो दिल का मेल बॉक्स। और मैं हूँ आपके साथ FM गोल्ड पर आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और करना क्या है आपको ये वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी याद दिला दूं कि FM गोल्ड AIR delhi@gmail.com पर करना है ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज। आप भेजेंगे 9868686753 पर। लिखेंगे अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं ये आप बताएंगे, साथ ही कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छी सी शेर व शायरी या कुछ भी जो आप कहना चाहते हो। और फिलहाल एंजॉय कीजिए मेरे साथ आज का ये पहला सॉन्ग, जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है सुनील गायकवाड़, सुषमा गायकवाड़, अनन्या और राजवीर की ओर से पुणे महाराष्ट्र से। और एक खास बात भी है इनके मैसेज में, लिख रहे हैं कि आज मेरी पत्नी सुषमा गायकवाड़ का जन्मदिन है, तो भाई वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे एंड एंजॉय दिस सॉन्ग टू विद अस।

0: मोहब्बत को पाने के लिए हिम्मत चाहिए, जमाने से टकराने की एक शिद्दत चाहिए। ये राह नहीं है कोई मखमली सेज जैसी, कांटों पर भी मुस्कुराने की आदत चाहिए। लकीरों को मोड़ने का हुनर होना चाहिए, रातों में जागने का सब्र होना चाहिए। आसान नहीं होता किसी के दिल में बसना, खुद को मिटाकर किसी को पाने की चाहत चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात लिखकर भेजी है हमें बबलेश पवार जी ने, और इनके साथ शामिल हैं इस ईमेल में डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ईमेल के लिए। और इसी के साथ चलिए अगला मैसेज भी पढ़ लेते हैं जो कि आया है हमारे पास उत्तम नगर दिल्ली से। बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने भेजा है ये मैसेज और लिख रहे हैं कि आज भी वही मुस्कान है, बस नजरिया थोड़ा बदल गया है। जो दिल से अपने होते हैं वो हर तस्वीर को यादगार बना देते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। और अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं अब नईम अख्तर साहिबा जी का, और अपनी फरमाइश लिखकर भेजी है, साथ ही पूरे परिवार के साथ ये मैसेज इन्होंने भेजा है और लिखा है कि प्लीज प्ले माय रिक्वेस्ट। पूरी कोशिश करेंगे जी आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की। और अगला मैसेज चलिए शामिल कर लेते हैं। बस हवाओं में तुम्हारा जिक्र कर लेता हूँ और चांद से तुम्हारा पता पूछ लेता हूँ। चाहत ऐसी कि खत्म ना हो कभी, और मोहब्बत ऐसी कि हर पल गहरी होती जाए। एफएम गोल्ड से मिल गए हैं, अब और कोई ख्वाहिश नहीं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फरहाज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा इस मैसेज में शामिल हैं। ऊपरकोट बुलंदशहर से आया है ये मैसेज, और अब्बासी परिवार भी इस मैसेज में शामिल है। चलिए इसी के साथ अगला मैसेज जो कि आया है हमारे पास सीधा मनाली से, सतीश अनेजा जी का ये खूबसूरत मैसेज लिखते हैं कि मैंने जिसको चाहा वो मुझे मिल गया है, मोहब्बत का ऐसा नगर मिल गया है, खुशी में झूमता हूँ मैं आजकल मनाली में, मैंने जिसको चाहा वो हम सफर मिल गया है, दुआ में भी इतना असर मिल गया है, एफएम गोल्ड भी दे रहा प्यार ही प्यार, इन वादियों में सुना प्रोग्राम, मौसम हिल गया है, डर डर के मैंने मांगी थी थोड़ी सी चाहत, मुझे चाहतों का शहर मिल गया है। क्या बात है, एंजॉय दीज खुशियां एंड स्प्रेड देम ऑल। और बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा वाला थैंक यू आपको इस मैसेज के लिए। साथ ही अगला मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है राजेंद्र नारंग जी का, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग इसमें शामिल हैं, और डबवाली मंडी, डबवाली भटिंडा रोड ये इनका एड्रेस है, यहाँ से इन्होंने ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और चलिए अब बारी आ गई है अगला सॉन्ग एंजॉय करने की। बहुत ही खूबसूरत गाना है, फिल्म है मेरा नाम जोकर, मन्ना डे साहब की खूबसूरत आवाज हम सुनेंगे। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह ने इस गाने की फरमाइश भेजी है, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से।
1: ए भाई

में, बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी, नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: जाता रहे, हप हप खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: चलिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।

खुदा, तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है? गर बनाई है तो फिर इसमें जुदाई क्यों है? बड़ा ही लाजमी सवाल पूछा है शमशुल कमर राही साहब ने। शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान इनके साथ शामिल हैं। गंज डुडवारा से ये मैसेज इन्होंने लिखकर भेजा है, साथ ही अपना फरमाइशी गीत भी लिखा है। अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं सईद अब्बासी साहब का, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से लिख रहे हैं कि आपको हमारा एक भी मेल या मैसेज नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल नजर आ रहा है जी, और देखिए हमने प्रोग्राम में शामिल कर भी लिया है। निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल हैं। और इस मैसेज में एक बड़ी ही खास जानकारी भी इन्होंने साझा की है हमारे साथ कि आज अभिनेत्री बी सरोजा देवी जी का स्मृति दिवस है, और अपना फरमाइशी गीत भी लिखकर भेजा है जिसे कोशिश करेंगे हम बहुत जल्द प्ले करने की। अगला मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है होली चौक उत्तम नगर से, जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु का। लिख रहे हैं कि प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और न पीते तो भी मर जाते, बस यही दो मसले जिंदगी भर न हल हुए, न नींद पूरी हुई न ख्वाब मुकम्मल हुए, वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता, शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी है। और वाकई कई बार ऐसा होता है जो हमारे पास होता है हम उसको नहीं देखते, बल्कि जो नहीं मिला हमें उस पर हमारा ध्यान, हमारी पूरी जो कोशिश रहती है वो यही रहती है कि जो हमारे पास नहीं है वो हमें मिल जाए। और अगला मैसेज आफताब अंसारी साहब का दिख रहा है, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना और आलिया इनके साथ शामिल हैं। नमस्कार लिखकर भेजा है और किसी भी गीत में शामिल होने की ख्वाहिश ये लिखकर भेज रहे हैं। मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा जी की भी यही फरमाइश है कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। नमस्कार, बिल्कुल जी, अगले गीत में आप हमारे साथ शामिल हैं। और अगला मैसेज धर्मेंद्र छीपा जी का है, लिख रहे हैं कि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ना तो फरमाइश का गीत बचता है और ना ही हमारा मैसेज शामिल होता है, क्या हमारा नंबर आएगा? आएगा नहीं, आ गया। और बहुत ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश लिखकर भेजी है। और अगला मैसेज हम शामिल करते हैं हरजिंदर सिंह भाटिया जी का, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया में इनके साथ इस ईमेल में शामिल है। लिख रहे हैं सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ऑलवेज बी हैप्पी, पूरे परिवार के साथ चाय की चुस्की लेते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं, बड़ा लुत्फ आ रहा है, हमें भी शामिल कर लें, इनायत होगी। बिल्कुल शामिल हो चुके हैं आप, स्टेशन रोड जमशेदपुर से ये ईमेल आपने लिखकर भेजा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अब सुन लेते हैं अगला सॉन्ग जिसकी फरमाइश हमें लिखकर भेजी है दिग्दर्शन कविता गौड़ जी ने, संजय ढिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन, राधा नामदेव, दर्शन भाई, मेरठ कैंट से ये फरमाइश आई है भाई।

कितने खुशनसीब थे वो लोग जिन्होंने गालिब को देखा है, मीर को देखा है। मैं तलाश में हूं उस शख्स की जिसने कातिबे तकदीर को देखा है। नमस्कार, पिछली बार आपने मेरा मेल शामिल नहीं किया, सोचता हूं आपसे कुट्टी कर लूं, दिल के मेलबॉक्स से खुद की छुट्टी कर लूं। अरे नहीं जनाब, ऐसा गजब मत कीजिएगा। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति पौरुष ने ये मैसेज लिखकर भेजा है, धमकी दी है, माफ कीजिएगा अगली पिछली बार के लिए, लेकिन आज आपका ईमेल शामिल हो गया है। उम्मीद है आपकी नाराजगी दूर हो गई होगी। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से ये मैसेज भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं दिलावर खान साहब का। ये भी नाराज है, लिख रहे हैं कि आपका नाम तो है आरजे नाज, पर हमारा नाम ना शामिल करके आपने कर दिया है हमें नाराज। उम्मीद है अब आपकी नाराजगी भी दूर हो गई होगी। रघुवीर नगर दिल्ली से लिखा है ये मैसेज, हसीना बानो एलिजा नायाब और लड्डू के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ईमेल के लिए। अगला मैसेज कुमकुम जी का है, लिख रही है कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, कोई भी गीत में शामिल कर लीजिए, धन्यवाद। विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, कुमकुम गुड़िया मोताला महाराष्ट्र से ये मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चलिए अगला मैसेज शामिल करते हैं लखनऊ से, जो कि आया है हमारे पास। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी इसमें शामिल है और किसी भी गीत में शामिल होने की इनकी ख्वाहिश है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और अगला गीत हम सुने उससे पहले एक और मैसेज की है बारी, शामिल करते हैं रघुराज जी का मैसेज, दिल्ली कैंट से भेजा है और अपनी अपना फरमाइशी गीत भी लिखकर भेजा है। इसके अलावा भी कई सारे मैसेजेस आए हैं जो शामिल नहीं हो पाए, उनसे हाथ जोड़कर माफी, और उम्मीद है कि आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी और रेडियो के जरिए भी। मैं मिलूंगी आपसे अब ठीक 11:10 पर, प्रोग्राम होगा तस्वीर। छोड़े जा रही हूं आपको एक और फरमाइश के साथ, इसके उस पार आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अब जो आप गीत सुनेंगे मुकेश जी की आवाज में, बड़ा ही खूबसूरत गीत है, रजनी गंधा फिल्म से। सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग ने चंद्रनगर सहारनपुर से भेजी है इस गीत की फरमाइश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। वियतनाम के फूक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन सिटी से मुंबई लाए गए। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अब भी लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। झारखंड में लातेहार जिला पुलिस प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रविन्द्र गंजू को गिरफ्तार किया है। नक्सली रविन्द्र गंजू पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार गंजू 22 नवंबर 2019 को चंदवा के लुकुया मोड़ के पास पुलिस दल पर हुए माओवादी हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अमरीका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमरीका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वह किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

नमस्कार, सुस्वागतम एंड हैव अ ग्रैंड वेलकम बाय मी, आपकी होस्ट और घुमक्कड़ दोस्त नाज। ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और जहां के स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त टाइम हुआ है 11:11 और 24 सेकेंड्स। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि ये समय है सैर सपाटे का, क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का। और आज तस्वीर में हमारी गाड़ी का रुख हो रहा है साउथ इंडिया की एक बड़ी सी प्यारी जगह पर, जिसके नाम का मतलब होता है जीत का नगर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि साल 1336 से लेकर 1565 तक ये शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, जो कि उस समय का एक पवित्र और बेहद जरूरी शहर भी माना जाता था। कुदरत ने अनोखी और असाधारण खूबसूरती से जिस जगह को नवाजा है, बस वहीं की तस्वीर आज आपके सामने पेश करने वाली हूं। तो बने रहिएगा साथ और सुनते रहिएगा कर्नाटक राज्य में मौजूद हम्पी शहर की तस्वीर का हर पहलू और रंग।

पत्थरों के इस शहर में इतिहास की तस्वीर है। टूटे हुए महलों में आज भी एक नूर है। विट्ठल मंदिर का वो रथ और तुंगभद्रा का किनारा सदियों बाद भी यहाँ यानी हम्पी का हर नजारा है कितना प्यारा। जी हाँ, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसे हम्पी शहर की हम बात कर रहे हैं, जो भले ही अब खंडहरों का शहर हो, लेकिन यहाँ के अवशेष हमें यहाँ का समृद्धशाली इतिहास सुनाते हैं। भारत के कर्नाटक राज्य में मौजूद ये शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ ही हर साल हजारों की तादाद में यहाँ पर्यटक और तीर्थयात्रियों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी ज्यादा स्मारक चिन्ह आपको यहाँ पर मिलते हैं। मंदिर, महल, तहखाने, जल खंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे और राजकोष जैसी कई इमारतें आप यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ये सब देखने के लिए हम्पी पहुंचेंगे कैसे, क्या है रास्ता, ये जानेंगे इस अगले गाने को सुनने के बाद।

हम्पी की खूबसूरत तस्वीर को निहारना है जरा करीब से, तो सबसे आसान और सीधा तरीका है ये कि आप टिकट बुक करें बेंगलुरु से मैसूर के बीच चलने वाली हम्पी एक्सप्रेस का। हालांकि इसके अलावा भी दूसरी कई ट्रेनों का ऑप्शन है आपके पास। नजदीकी रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा हॉस्पेट जंक्शन, जो भारत के लगभग हर बड़े रेलवे स्टेशन से सीधी ट्रेनों के जरिए जुड़ा हुआ है। हॉस्पेट से हम्पी के लिए आपको डायरेक्ट ऑटो या फिर बस आराम से मिल जाती है।

बाय रोड आने के लिए आप बेंगलुरु से बस या टैक्सी ले सकते हैं। इसके अलावा हैदराबाद, गोवा, पुणे या फिर मुंबई से भी आपको सीधी बसेस मिल जाती हैं। समय की है कमी और बाय एयर आने का ऑप्शन अगर आप चूज करना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आपको पड़ेगा जिंदल विजयनगर एयरपोर्ट, जो तोरण गल्लू में मौजूद है। यहाँ से हम्पी सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके अलावा हुबली एयरपोर्ट या फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार।

तेनाली राम की बुद्धिमानी और राजा कृष्णदेव राय की वो न्यायप्रियता हम्पी की हर नक्काशी में झलकती है आज भी कला की दिव्यता। एफएम गोल्ड पर तस्वीर के जरिए चलिए उस सुनहरे युग में चलें, जहां पत्थरों को तराशकर इंसानों ने नए इतिहास रचे। जी हाँ, इसी हम्पी शहर की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, जिसे रामायण युग में जाना जाता था किष्किंधा के नाम से। फिर अशोक के पुरालेखों और हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र के रूप में हम जिसका जिक्र सुनते हैं। 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में ये दक्कन क्षेत्र की आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र रहा और इसके बाद 19वीं शताब्दी से इसके खंडहर पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए शोध का एक प्रमुख विषय रहे हैं। चट्टानी पहाड़ियों के बीच तुंगभद्रा नदी के किनारे पर मौजूद हम्पी शहर और भी कई मायनों में खास है, जिन पर बात करते रहेंगे आगे भी। लेकिन पहले ये गाना सुनेंगे जो उतना ही खास है जितना कि हमारा हम्पी शहर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जहां पहुंचे हुए हैं आप मेरे यानी नाज के साथ कर्नाटक के हम्पी शहर, जहां साल के ज्यादातर समय तेज धूप या फिर गर्मी ही पड़ती है। इसीलिए बेहतर ये है कि आप अक्टूबर से मार्च यानी सर्दियों के समय यहां आएं। ये हम्पी घूमने के लिए पीक सीजन माना जाता है। मौसम सुहाना होता है, जिसमें हम्पी के खुले मैदानों में घूमना और पत्थरों पर ट्रैकिंग करना बेहद आसान हो जाता है। मॉनसून यानी अभी के समय भी हम्पी घूमने के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत भारी बारिश नहीं होती। रुक रुक कर बारिश की फुहार आप एंजॉय करेंगे। तुंगभद्रा नदी का जल स्तर हालांकि थोड़ा बढ़ जाता है, हर तरफ हरियाली छाई होती है और चट्टानों के बीच से बहता पानी बहुत ही खूबसूरत लगता है।

हम्पी के आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है। बीते करोड़ों सालों में ग्रेनाइट के इन बड़े बड़े पत्थरों ने घिस घिस कर अब छोटी पहाड़ियों की शक्ल ले ली है, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच मौजूद है करीब 500 से भी ज्यादा मंदिर, जिनमें विट्ठल मंदिर की बनावट सबसे सुंदर मानी जाती है। द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है ये, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में राजा देवराय ने शुरू करवाया था, और बाद में राजा कृष्णदेव राय ने इसके निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। बड़ा ही दिलचस्प स्ट्रक्चर आप यहाँ देखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर है यहाँ मौजूद पत्थर का रथ। और इसी पत्थर के रथ की तस्वीर अभी आपकी जेब में मौजूद है। कैसे बताऊंगी इस अगले ट्रैक के बाद।

तो अगर आपने अपनी जेब अच्छे से टटोल ली है और फिर भी नहीं मिली हम्पी में मौजूद पत्थर के रथ की तस्वीर, तो जरा एक बार फिर से देखिए और इस बार गौर से देखिएगा अपने वॉलेट में मौजूद 50 रुपए के नोट को। जी हाँ, बस उसी पर छपी मिलेगी आपको इस हेरिटेज की तस्वीर। इसके अलावा कल्याण मंडप और म्यूजिकल पिलर वाला रंग मंडप भी है यहाँ, जो विट्ठल मंदिर को बेहद खास बनाते हैं। भगवान विष्णु के अवतार भगवान विट्ठल को समर्पित है हम्पी का ये मशहूर मंदिर, जिसका हर पिलर और हर कोना बेहद खूबसूरत है। इसके बाद 7वीं सदी में बना विरूपाक्ष मंदिर भी है वो जगह जहां आपको जरूर जाना चाहिए। मंदिर का ऊपरी हिस्सा हल्के पीले रंग का है और सबसे अलग दिखाई देता है। हम्पी के बाकी हिस्सों की तरह यहां भी आपको दीवारों और खंभों पर बारीक नक्काशी नजर आएगी और हम्पी में मौजूद लगभग हर जगह के लिए रास्ता दिखाने का काम ये मंदिर करता है। बतौर सेंट्रल लैंडमार्क विरूपाक्ष मंदिर को यहाँ हम्पी में जाना जाता है।

और देखिए घर से निकलकर कुछ दूर चलकर हम भी पहुंच चुके हैं कर्नाटक के मशहूर हम्पी शहर, जिसे साल 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और ये दर्जा क्यों इस जगह को हासिल हुआ, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। हम्पी में मौजूद मंदिर कॉम्प्लेक्स, शाही इमारतों, बाजार की पुरानी सड़कों और पानी के सिस्टम का एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन, वो कारण है जिसके चलते हम्पी इतना खास हो गया। पुराने रिकॉर्ड्स में यहाँ के हलचल भरे बाजारों का जिक्र है, जहाँ हीरे, मोती, बढ़िया सिल्क और मसालों जैसी कई कीमती चीजों का व्यापार होता था। हेमकूट हिल्स यहाँ की एक और खूबसूरत जगह है, जहाँ आपको विजयनगर काल के छोटे छोटे कई पुराने मंदिर मिलेंगे। खास तौर पर सनराइज और सनसेट के समय ये इलाका बेहद खूबसूरत हो जाता है, जब सूरज की सुनहरी रोशनी यहाँ के मंदिरों और चट्टानों पर पड़ती है तो जी चाहता है कि बस यहीं जितना हो सके सुकून भरे पल बिता लिए जाएं।

जी भरेगा नहीं और आप थकेंगे नहीं हम्पी की सैर करते हुए, लेकिन हाँ चलते चलते भूख आपको जरूर लगेगी। तो जनाब इसका भी शानदार इंतजाम आपको हम्पी में मिलेगा। बेसिकली प्योर वेजिटेरियन और दक्षिण भारतीय ऑथेंटिक कन्नड़ कुजीन से आप यहाँ रूबरू होंगे। हालांकि तुंगभद्रा नदी के दूसरी तरफ जिसे हिप्पी आइलैंड कहा जाता है, वहां आपको कैफे कल्चर के साथ कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल फूड आइटम्स जरूर मिल जाएंगे। लोकल आइटम्स में मिलेगी यहाँ की सबसे मशहूर थाली जिसे जुलादा रोटी ऊटा यहाँ पर कहा जाता है। इसके बाद बिसी बेले भात, मिर्ची बज्जी और साथ ही गर्मा गर्म

कड़क चाय का स्वाद ऐसा है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ब्रेकफास्ट में जरूर ट्राई कीजिएगा थट इडली, बेन्ने डोसा और पुली ओगरे। फिलहाल मुझे यानी नाज को दीजिएगा इजाजत आपसे विदा लेने की। देखिए, दिल है मेरा छोटा सा और जिसमें है ये छोटी सी आशा भी कि मेरे साथ खूबसूरत हम्पी का ये सफर आपने जरूर इंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए सफर की नई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुस जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the four-day event. The event is showcasing India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment and international trade. It has brought together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, startups and technology providers. Inspired by Prime Minister Narendra Modi's 5F vision, farm to fiber to factory to fashion to foreign, Bharat Tex 2026 has evolved into a premier global platform for business, investment, innovation, policy dialogue and strategic partnerships across the textile value chain. The third edition of Bharat Tex 2026 is witnessing participation of around 7,000 buyers and over 20,000 textile products. International exhibitors from 14 countries are participating in the event. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling trade to $100 billion by 2030. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: India participated in the second ministerial meeting of the Palestine Donor Group PDG in Brussels yesterday. Addressing the meeting, Secretary in the Ministry of External Affairs, Sri Priya Ranganathan, emphasized that India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. Ms. Ranganathan noted that India's projects are demand-driven and largely centered on healthcare, education, capacity building and vocational training. The death toll from a huge fire in a Bangkok music bar has increased to 30. Bangkok city officials today said more than 70 people remain hospitalized, with 24 of them in critical condition. Police said an investigation into the cause of the fire and whether the bar was following safety regulations is ongoing. It added that most of the people who were killed were found trapped in windowless bathrooms where they may have sought to escape the flames. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. military's Central Command said it struck areas around Abu Musab, Andar Abbas, Bushehr, Chabahar, Jask and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The Indian men's cricket team will take on hosts England in the first one-day international of a three-match series at Edgbaston in Birmingham today. The match will begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

Standard. हम लोगों ने बचपन से एक कहावत सुनी है, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरा अपनी बचपन को याद कीजिए। क्या सचमुच नाम में कुछ नहीं रखा होता? घर में दादा दादी की पुकारने का नाम, माँ की आवाज में घुला कोई प्यार भरा निकनेम, भाई बहनों की शरारतों से मिला कोई नया नाम, ये सिर्फ नाम नहीं होते, ये हमारी जिंदगी की सबसे मीठी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। नाम तो बस एक पहचान है, अपनापन तो उस पुकार में छिपा होता है जिसे सुनते ही बरसों पुराना बचपन चुपके से मुस्कुरा उठता है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका और हमारा मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन, और इसी के साथ आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। और आज आपके साथ इस सफर में हम सफर रहूंगी मैं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आज घर आंगन का सवाल आप सबसे ये है कि आपका बचपन का निकनेम क्या था, और आज भी क्या घर में कोई उसी नाम से आपको बुलाता है? अपने जवाब हमें जरूर भेजिए। हो सकता है आपका एक छोटा सा निकनेम या छोटा सा प्यार का बुलाने वाला नाम हमारे दूसरे श्रोताओं के चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। इंतजार है आपके प्यारे प्यारे नामों का।

0: द फिल्म थी द ग्रेट गैम्बलर और इसमें आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ किशोर कुमार की आवाज में ये गाना। तो हमारा आज का सवाल आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ये है कि आपका बचपन का पुकारने वाला नाम क्या था, यानी आपका निकनेम क्या था, और अभी भी कोई आपको इस नाम से बुलाता है? तो देखिए, बुलाने से मुझे याद आया कि मैं यहाँ पर आवाज दे रही हूँ हमारी सहयोगी, हमारी साथी रश्मि जी को, और स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: एक नाम और जुड़ गया है निकनेम्स के साथ, और नाम की बात की है तो रश्मि कुकरेति आपके साथ मैं जुड़ गई हूँ, और सोनाली।
0: बिल्कुल, हमारा नमस्कार एक बार फिर हमारे दोस्तों को,
1: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सोनाली तुम्हें भी नमस्कार।
0: नमस्कार रश्मि जी। तो हम बात कर रहे थे नामों की, है ना, और जब हम बात करते हैं नाम की तो एक बचपन की बातें हो रही हैं, तो मुझे मशहूर शायर निदा फाजली की दो पंक्तियां याद आ गई हैं।
1: जी।
0: बाट की अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहां गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ, है ना।
1: सुंदर ख्याल और क्या खूबसूरत बात। सचमुच सोनाली, माँ अचानक माँ तो नहीं बन पाती, सबसे पहले वो एक लड़की होती है।
0: हाँ,
1: तो अपने सपने होते हैं, अपनी सहेलियों, अपनी शरारतें और उसके मन की छोटी छोटी इच्छाएं।
0: बिल्कुल, और देखिए ना, जैसे जैसे जिंदगी बदलती है ना रश्मि जी, घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और वही चंचल लड़की सबकी फिक्र करने वाली माँ बन जाती है, और ना सबकी पसंद याद रखती है लेकिन कई बार अपनी पसंद ही भूल जाती है, सबकी जरूरतों का ध्यान रखती है लेकिन अपने लिए समय निकालना टालती रहती है।
1: हाँ, तो जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कभी अपनी माँ से ये पूछा था कि उन्हें कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है, या वो कौन सी जगह पर फिर से जाना चाहती हैं, या ऐसा कोई शौक जिसे वो आज भी जीना चाहती हैं?
0: बिल्कुल, देखिए, कभी पुराने एल्बम निकाल कर देखिए, उनमें आपको सिर्फ अपनी माँ नहीं मिलेगी, एक हंसती खिलखिलाती सपने देखने वाली लड़की भी निकलेगी, है ना
1: जी। और सोनाली मैं सच बताऊं, हर लड़की के चेहरे में उसकी माँ का चेहरा तो वैसे ही छुपा हुआ होता है, है ना। शायद उस लड़की से फिर हमें मिलवाना भी हमारे हिस्से की एक छोटी सी जिम्मेदारी बनती है।

0: फिल्म नरम गरम में आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में बहुत प्यारा सा गीत
1: जी। और सोनाली, वाकई जो गीत के बोल भी थे ना, वो बहुत दिल को छू लेने वाले गीत थे। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे में माँ का चेहरा छुपा है ना, ऐसे एक लड़की जीती है ना।
0: मतलब माँ को सच में अगर कोई मिस करता है, अगर कमी महसूस होती है, तो जिस तरह से इस गाने में बयां किया ना रश्मि जी,
1: हाँ,
0: माँ की साड़ी पहन लेना या माँ के जैसे ही तैयार होना, वो हर लड़की कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज से जोड़ सकती है।
1: तो मुझे लगता है ये गीत जो भी सुन रहे हैं हमारे सुनने वाले, उनको कहीं ना कहीं अपनी माँ की जरूर याद आ गई है ना।
0: बिल्कुल आ रही होगी।
1: और तुमने वापस आते हैं निक नेम पूछा था सबसे और बड़े प्यारे प्यारे निक नेम्स आ गए हैं। प्रदीप दुबे जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत थोड़ा सा शर्म आती है, लेकिन उनका निक नेम था लालू।
0: देखिए, और ना एक चीज और भी है यहाँ पे ना, नवीन भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि दादी जी और माता जी उन्हें राजू कहकर बुलाती थी।
1: हम सब श्रोताओं को बचपन में लिए जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: और निकनेम कुछ समय तक साथ चलता है और कभी वो फेड भी हो जाता है, लेकिन याद तो रहती है ना।
0: और रश्मि जी, आपने महसूस किया कभी अक्सर ना हमारे जो बचपन के दोस्त होते हैं
1: जी,
0: वो हमें उसी नाम से बुलाते हैं। और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे तो बहुत बार ना मेरे कजिन्स का असली नाम पता ही नहीं होता है।
1: अच्छा, भूल जाती हो।
0: वो निकनेम ही याद रहते हैं उनकी।
1: जी, डॉक्टर डी राजेश्वर राव कह रहे हैं कि मैं अपनी बिटिया को परी बुलाता हूँ, हालांकि उसका नाम है सुगंधावा। पापा की परी है वो।
0: बिल्कुल है। और देखिए, चरणदास जी लिख रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं चौधरीवास हिसार से, लिख रहे हैं राजू अग्रवाल केशव प्रियांशी कि बच्चों के प्यार करते वक्त हम तोतली भाषा में बात करते हैं और इसी भाषा में नए नाम अपने आप निकल आते हैं, सभी उसी नाम से पुकारते हैं। मेरा पूरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। अच्छा, वो एक चुटकुला भी लिख रहे हैं जी। रेलगाड़ी में पास बैठे यात्री से पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कालका प्रसाद वासी। जब उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने कहा आज का प्रसाद ताज, आज का प्रसाद दीजिए, मतलब इस तरह का कुछ।
1: अच्छा।
0: तो कुछ इस तरह का था
1: जी।
0: जी,
1: और एक और मेल मेरे पास आया है विवेक विहार से। आप कह रहे हैं कि मेरा घर का नाम था गब्बर, क्योंकि बचपन में मैं सबको डराता नहीं हंसाता था।
0: अच्छा।
1: तो बहुत प्यारा नाम है गब्बर।
0: अच्छा,
1: जबर नेम है गब्बर।
0: क्या बात है, सच में जबर नाम है। अच्छा देखिए, हमारे संग कामायनी जुड़ी है लक्ष्मी नगर से
1: जी,
0: और वो कह रही है कि आज का जो सवाल है वो बहुत अच्छा है और मेरे तो बहुत सारे निकनेम हैं। घर में सब प्यार से बिट्टू बुलाते थे, मेरी फ्रेंड्स कली बोलती थी और कुछ

0: हैं, इन्होंने अपने दुख को सिर्फ अपना दुख बनाकर नहीं रखा बल्कि उसे हजारों लोगों की उम्मीद में बदल दिया।
1: जी, आप मुझे लगता है बात कर रही हैं पश्चिम बंगाल की सुभाषिनी मिस्त्री की कहानी बताना जा रही है, और वो उनकी कहानी जो है वो कुछ ऐसा संदेश देती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ा साधन नहीं बल्कि बड़ा हौसला चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए उन्होंने यही किया था ना कि सब्जियां बेची, मेहनत मजदूरी की, घर चलाने के लिए उन्होंने तमाम काम किए रश्मि जी।
1: जी,
0: और वो सिर्फ ना एक ही उनका सपना था, गरीबों के लिए एक अस्पताल बनाना।
1: और लंबे संघर्ष के बाद सोनाली उनका ये सपना सच हुआ और पश्चिम बंगाल के जो हंसपुकुर में उनकी ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल की स्थापना हुई, जो आज भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इलाज की सुविधा वहां मिलती है। और यह अस्पताल सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बना बल्कि एक स्त्री के साहस, संघर्ष और सेवा की नींव पर खड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल, और न समाज सेवा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2018 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।
1: वाह,
0: है ना। और इसीलिए तो कहते भी हैं कि इरादे अगर इंसान से बड़े हो जाएं तो राह की मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं।
1: जी, क्योंकि सुभाषिनी मिस्त्री जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी हमें चाहे जितनी भी कठिन परीक्षा हमसे ले, लेकिन अगर हमारे भीतर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा मौजूद हो तो एक साधारण इंसान भी असाधारण बदलाव ला सकता है।
0: बिल्कुल, और जीवन तो नाम ही चलने का है।
1: जी,
0: चलते रहना ही है।

0: फिल्म सफर में आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में ये गीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800 11 7800 पर

0: रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम घर आंगन में। और आज आपके साथ हम हैं, यानी मैं हूँ सोनाली और मेरे साथ हैं
2: रश्मि कुकरेती। और सोनाली, बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ गए हैं। उमेश कुमार खयाला से कह रहे हैं मेरा नाम बचपन का था गुप्ता, और जितेंद्र चौरसिया कह रहे हैं कि मेरा नाम था पप्पू और सरदार भी मुझे कहते थे। और मास्टर अशोक कुमार भी देखो फरमाइशी गीत लिख रहे हैं। अशोक जी से मैं कहूंगी कि आप अपना नाम बताएं, बचपन का क्या नाम था। और एक और सुशील जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और सचिन पठानिया और चंदा पठानिया नादौन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, और फिर वही फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं। तो हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे, दोस्तों ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, घर आंगन है। और हमारा सवाल था कि आपका बचपन का नाम यानी निक नेम क्या था, वो जल्दी से लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर।
1: बिल्कुल। और देखिए ना, मेरे साथ भी एक यहाँ पर एक मैसेज है, वो है रेखा देवी चौधरी वास हिसार हरियाणा से लिख रही है, मेरे बेटे का नाम विवेक है और बेटी का नाम प्रियांशी है। मेरे ससुर ने बेटे का नाम गोलू और बेटी का नाम चिक्की रखा है, और हम लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं।
2: बहुत सुंदर नाम है।
1: बिल्कुल। और फिर सुदर्शन मुखी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ है सिमरन मुखी और अनिता मुखी। वो लिख रहे हैं हमारी बिटिया का निकनेम है सीमू
2: जी।
1: वैसे हमारी बिटिया का नाम है सिमरन मुखी जी, वो तो हमें पता ही है। और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए
2: जी। और सोनाली, मैंने देखा है जो बंगाल में तो निकनेम बहुत बोला जाता है और ज्यादातर, और बहुत सुंदर सुंदर नाम होते हैं, पर ज्यादातर जो है ये जो घर में प्यार के दुलार के नाम होते हैं उनसे पुकारा जाता
1: जी,
2: है।
1: और शायद तभी मैंने आपसे कहा था कि मुझे बहुत बार अपने कजिन्स का असली नाम नहीं पता होता।
2: आपका निकनेम क्या था ये बताओ।
1: मेरा निकनेम बताऊंगी, उसके पहले मैं आपका निकनेम भी जानना चाहूंगी। देखिए, अब हमारे साथ जो कामायनी है ना, वो क्या लिख रही है, हाँ उनकी मम्मी उन्हें बहुत अजीब नाम से बुलाती है, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है, वो लल्ला तो कभी लाली भी बोलती हैं और पापा जी ध्रुव बोलते हैं। वाह वाह, नानी मुझे कृष्णा हाँ। बुलाती हैं
2: जी। मैं अपना निकनेम बता दूं सोनाली तुम्हें। हाँ, हाँ। मुझे मेरे पापा प्यार से झांसी की रानी कहते थे।
1: क्या बात है, देखिए पिताजी ने आपका नाम बिल्कुल झांसी की रानी, क्या बात है। देखिए,
2: और क्योंकि मैं बचपन में से ना बचपन में सुनती सुनती नहीं थी किसी की, बस अपने मन की करती थी, तो वो बस ऐसे ही कहते थे कि झांसी की रानी है, ये किसी की नहीं सुनने वाली, अपने मन की करेगी।
1: क्या बात है, देखिए इसके पीछे भी
2: अपना नाम भी बता दो। देखो मैंने तुम्हें बताया तो कुछ तुम्हें भी बताना पड़ेगा।
1: मेरा घर का नाम, वैसे तो सब मुझे सोना ही बोलते हैं
2: जी, मुझे सोनाली रखने ऐसा ही गोल्डन नाम होगा।
1: नहीं, सोनाली रखने के पीछे भी यही था कि नानी मुझे सोना सोना बुलाती थी मेरा नाम नहीं रखने के पहले
2: जी,
1: तब मैं उनको शायद जवाब देती थी, ऐसे मेरी माँ कहती है, तो वो मुझे सोना बोलती थी, मैं बोलती थी तो उन्होंने मेरे नाम ही सोनाली रख दिया।
2: तो आज बहुत सारे सीक्रेट्स आउट हो गए सोनाली, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और रोचक जानकारी हम लेकर आए हैं अपने सुनने वालों के लिए।
1: बिल्कुल, देखिए हम ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक चीज को हर दिन लिखते हैं मतलब, और उसके बारे में बहुत कम जानते हैं, ऐसा होता है ना
2: जी,
1: है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पिन कोड क्या है, तो आप मुझे बिल्कुल एकदम बता देंगे,
2: सटीक बता देंगे जी।
1: और लेकिन अगर ये पूछूं कि उन 6 अंकों का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आप रुक जाओगे, है ना। तो पिन का मतलब क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर
2: जी।
1: और इसकी शुरुआत ना 15 अगस्त 1972 को भारतीय डाक विभाग ने की थी। उस समय देश में कई शहरों और कस्बों के नाम एक जैसे थे, तो शायद उसी को अलग अलग पहचान देने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी।
2: और इस व्यवस्था को भारतीय डाक सेवा के अधिकारी श्रीराम भिखाजी वेलणकर ने विकसित किया था। उनका उद्देश्य ये था कि देश के किसी भी कोने से भेजी गई जो चिट्ठी है वो बिना किसी भ्रम के बिल्कुल सही पते तक पहुंच जाए।
1: हाँ, और ना देखिए अब इसके पीछे जो है ना कि पहला अंक जो होता है इसका, वो भारत के किस डाक क्षेत्र से है वो बताता है,
2: और दूसरा अंक जो है वो क्षेत्र के उपक्षेत्र की पहचान कराता है।
1: और इसी के साथ ना जो तीसरा है ना वो जो छटाई का केंद्र होता है ना यानी सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो उसका नंबर होता है।
2: और आखिरी जो तीन अंक होते हैं उस विशिष्ट डाकघर की पहचान होते हैं जहां से आपकी डाक आगे आपके अपने घर तक पहुंच जाती है।
1: क्या बात है ना। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि भले ही इंटरनेट और मोबाइल के हम दौर में रह रहे हों लेकिन पिन कोड की जो अहमियत है ना वो जरा भी कम नहीं हुई है ना। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, कोई भी सरकारी दस्तावेज की बात हो, पार्सल हो, डिलीवरी हो, सभी पिन कोड के वजह से एकदम सही तरीके से आप तक पहुंच जाते हैं
2: जी, है ना? तो कभी किसी लिफाफे या पार्सल पर अपना पिन कोड लिखते समय एक बार जरूर सोचेगा कि इन 6 अंकों के पीछे भारतीय डाक विभाग की दशकों पुरानी एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है जो हर दिन करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
3: क्या कहा?

0: रामपुर का लक्ष्मण। इस फिल्म में आप सुन रही थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।
1: हाय राम और हाय राम। सुशील पठानिया जी दोबारा जुड़ गए, कह रहे मुझे मालूम नहीं था कि क्या आपका सवाल था, और अब बता रहे हैं कि मेरा जो निक नेम है वो टिंगू है, जो मेरे नाना जी ने रखा था पता नहीं क्यों, हालांकि मुझे मुझसे बड़े इसी नाम से पुकारते हैं। हालांकि मेरे बच्चे अभी जॉब में हैं।

0: लेकिन कई बार मेरी लाइफ यानी मेरी वाइफ ऐसे ही पुकार लेती है, अगर ध्यान कहीं और हो। भाई ये तो बड़ा प्यारा सा,
1: कितना प्यारा है ना ये चीज।
0: और एक और संदेश आया है हमारे पास। आप हैं राजीव विवेक विहार से, आप कह रहे हैं कि मुझे ऑफिस में सब प्रोफेसर कहते हैं क्योंकि मुझे ज्ञान देने की बहुत आदत है।
1: देखिए और कितने प्यार से उसको मान भी रहे हैं कि मुझे ज्ञान देने की आदत है। और इसी तरह से हमारे संग ना योगसिंह यादव जी जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं हमें नमस्कार लिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं उनका नाम यही है, मतलब उग्रसेन ही नाम है उनका, और लेकिन वो एक तारीफ भी कर रहे हैं कि प्रोग्राम और ये क्वेश्चन उन्हें बड़ा दिलचस्प लगा है।
0: जी तो भाई जो घर आंगन की जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो रोज रोज आपके लिए बड़े मजेदार से सवाल लेकर आती हैं, कहीं ज्ञान मिलता है, कहीं जानकारी मिलती है, और कहीं बस यूं ही बातें होती है। और जब बातों की बात होती है सोनाली, तो भाई आजकल लोगों को मोबाइल पर बातें करने की बहुत आदत है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो फिर भाई मोबाइल के बारे में अगर कुछ नया फीचर तुम बताने जा रही हो तो मैं इंतजार कर रही हूँ।
1: बिल्कुल रश्मि जी, ऐसा होता है ना कि हम मोबाइल का इस्तेमाल बातचीत से लेकर बैंकिंग और खरीदारी तक लगभग हर काम के लिए करते हैं, है ना। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग मोबाइल खरीदते समय उसके कैमरे, स्टोरेज और बैटरी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर भी होते हैं जिनकी अहमियत मुश्किल समय में समझ आती है।
0: एक ऐसा ही फीचर है इमरजेंसी SOS का। भाई आजकल जो अधिकांश स्मार्ट फोन होते हैं ना उनमें ये सुविधा पहले से ही मौजूद है, और भाई किसी दुर्घटना, अस्वस्थता या आपात स्थिति में ये फीचर आपके द्वारा पहले से चुने गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आपकी लोकेशन और मदद का संदेश भेजने में सहायता कर सकता है। तो जो अलग अलग मोबाइल कंपनियां होती हैं उसमें इसे शुरू करने की का जो तरीका है वो भी अलग होता है, लेकिन आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में ये सुविधा मौजूद है।
1: हाँ, और इसी की तरह ना इसी तरह से मेडिकल ID फीचर भी होता है। हाँ, इसमें हम अपना नाम, अपना रक्त समूह, अपनी एलर्जी और जो भी हम नियमित दवाइयां ले रहे हैं ना उसकी जानकारी और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट साथ में दर्ज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यह जानकारी बिना फोन अनलॉक किए भी देखी जा सकती है, जिससे मदद करने वालों को आवश्यक जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है।
0: तो हम तो यही कहेंगे भाई सभी सुनने वालों को कि अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल में ये दोनों सुविधाएं सेट नहीं की हैं तो आज ही कुछ मिनट निकालिए और इन्हें जरूर देखिए, हो सकता है जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन तैयारी तो हमेशा काम आती है। तो मैं तो ये कसम अब ले रही हूँ।
1: बिल्कुल, सभी को ये कसम लेनी चाहिए।

0: तो ये गाना था फिल्म तेरे मेरे सपने का, और लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज में ये गाना था
1: जी। और देखिए, जब कसम की बातें होती हैं तो हम तो ये कहेंगे आप कसम लें या ना लें, लेकिन अपनी जो छोटी छोटी आदतें हैं और छोटे छोटे फैसले हैं ना, ये जरूर लेते रहें और सही फैसले लें और सही आदतें लें, है ना।
0: अब जब आपने छोटी छोटी आदतें और फैसलों की बात की है ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत अलग सी जानकारी आई है
1: जी।
0: और ये बात जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये खेती पर भी लागू कर सकते हैं वैसे, है ना
1: जी। बिल्कुल,
0: क्योंकि खेती प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर की जाए तो उसका लाभ सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। तो हमारे भारत का एक ऐसा राज्य भी है जहां पूरी खेती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना की जाती है।
1: जी बिल्कुल, और ये राज्य है सिक्किम। वर्ष 2016 से सिक्किम को भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया, और ये उपलब्धि सोनाली एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे कई वर्षों की योजना, किसानों का सहयोग और प्रकृति के पीछे गहरी प्रतिबद्धता भी थी।
0: क्या बात है। और देखिए, ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती
1: जी,
0: ये एक ऐसी खेती है जिसमें हमने जहां आपको बताया केमिकल और कीटनाशक यहां पर इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि प्राकृतिक तरीकों से यहां पर खेती की जाती है। तो सिक्किम ने यह साबित किया कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। आज वहां की जैविक खेती ने स्थानीय किसानों को नई पहचान दी है और देश विदेश में आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित किया है।
1: सोनाली, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, शायद इसीलिए उसकी देखभाल करना भी हमारी साझा जिम्मेदारी बनती है।
0: धरती हमें विरासत में नहीं मिली, इसे हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है ना।

0: फिल्म हरियाली और रास्ता। इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और दोस्तों आपको बता दें, हमारा आज का सवाल है कि आपका बचपन का निकनेम क्या था और आज भी क्या आपको घर पे कोई उसी नाम से बुलाता है।
1: और हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो जल्दी से लिख भेजिए कि आपका प्यार से बुलाने वाला नाम क्या था। और एक प्यार से बुलाने वाला नाम मेरे पास आ गया है। आप हैं विवेक, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे जो है घर में सारे मिस्टर हसमुख कहते हैं क्योंकि मैं जहां जाता हूं बस हंसाता ही हूं। भाई बहुत प्यारा नाम है और आपके अंदर ये जो गुणवत्ता है ये बहुत प्यारा गुण है। किसी को हंसाना वाकई बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात है। और ये गुण और ये बात हर एक के अंदर होती नहीं है।
1: हाँ,
0: है
1: ना? और सुरभि कह रही है कि मुझे कहते हैं मिस लेट लतीफ क्योंकि मैं कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाती। आप मयूर विहार से हैं। भाई सुरभि ये तो नहीं होना चाहिए, समय से निकलना चाहिए। देखिए हमारे आकाशवाणी में तो ये बिल्कुल स्वभाव है, जितने समय पर कार्यक्रम शुरू होता है उससे पहले पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है और उसी का प्रबंधन करके हम समय से यहाँ पहुंचते हैं।
0: बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, बिल्कुल वक्त नहीं है। तो मुझे लगता है वो व्यस्त नहीं रहते, वो अस्त व्यस्त रहते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं मौसम, तो खैर इन दिनों अगर मौसम की बात करते हैं चलते चलते
1: थोड़ा अस्त व्यस्त हम भी हो गए हैं बिना बारिश के।
0: देखिए अस्त व्यस्तता हमारे जीवन में शुमार हो चुकी है फिलहाल, लेकिन ना आपको पता है कि भारत में, हमारे देश में यानी, बारिश का इंतजार सिर्फ किसानों को नहीं होता है ना, क्योंकि ये मौसम एक ऐसा है जो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आता है, जैसे खूब प्यार भरे गाने लेकर आता है और संगीत प्रेमियों को तो खैर मजा ही आ जाता है। तो ये सिर्फ बादलों से गिरने वाली बूंदे नहीं होती बल्कि जीवन में नई उम्मीद लेकर आने वाला मौसम होती है, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल, क्योंकि बरसात शुरू होते ही देश के अलग अलग हिस्सों में तीज, हरियाली, अमावस्या, कजरी तीज जैसे पर्व मनाए जाते हैं। भाई कहीं पेड़ों पर झूले पड़ रहे हैं तो कहीं लोकगीत गूंज रहे हैं तो कहीं मिट्टी की सौंधी खुशबू लोगों के मन को तरोताजा कर देती है।
0: और शायद यही वजह है कि पहली बारिश की बूंद गिरते ही हमारे मन में भी कुछ बदलने लगता है, है ना
1: जी?
0: और बस तो बारिश सिर्फ धरती को ही नहीं भिगोती, कई बार यह मन की धूल भी धो जाती है।
1: और सोनाली, भारतीय संगीत में और भारतीय साहित्य में बारिश का तो अपना अलग ही स्थान है। संस्कृत के जो महाकवि कालिदास के मेघदूत से लेकर लोकगीतों और हिंदी फिल्मों तक बरसात को प्रेम, विरह, मिलन और नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में देखा गया है। क्योंकि सोनाली जब बारिश का मौसम आता है, भाई हम इस समय तो दिल्ली में थोड़ा सा चाह रहे हैं बारिश हो जाती, इस गर्मी से छुटकारा मिल जाता, बल्कि हम कहेंगे पूरे देश में, हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व में संतुलित बारिश हो, सब जगह पानी पहुंचे और खुशहाली और अन्नधन का भंडार भरा रहे, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। और हम तो ये कहेंगे जब बारिश चलती है तो हवाएं ही बदल जाती है। कैसी हवाएं हो जाती है सोनाली?
0: वो हो जाती है ऐसी,

0: अभी आप सुन रहे हैं, ये फिल्म है अनोखा दान और इसमें आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में गीत। रश्मि जी, घड़ी इजाजत नहीं देती कि बातों को और आगे बढ़ाएं, लेकिन चलते चलते आपको बता दें हमारे साथ इदरीस सैफी जी जुड़े हैं और सब उन्हें सैफी नाम से बुलाते हैं।
1: हाँ, और इसी के साथ लेते हैं इजाजत रश्मि कुकरेती को
0: और सोनाली को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के तीन पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीडबोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज एक ऐसे महान संगीतकार की पुण्यतिथि है जिन्हें लता मंगेशकर ने गजल का शहजादा नाम दिया था। 50 से 90 के दशक तक की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, वो संगीत जो कानों के जरिए दिल में और दिल से रूह तक उतर जाता है। कलाकार बेमिसाल में आज बात मदन मोहन की। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रजनी के साथ। शुरुआत करते हैं मदन मोहन के संगीत में फिल्म अनपढ़ के गीत से। आवाज है लता मंगेशकर की।

मदन मोहन ने कभी विधिवत संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया। हाँ, लाहौर में रहते हुए उन्होंने कुछ समय करतार सिंह जी से शास्त्रीय संगीत की बुनियादी बातें सीखी थी। मदन मोहन का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली वहां महालेखाकार के रूप में काम करते थे, इसलिए मदन मोहन के शुरुआती साल बगदाद में ही बीते। इसके बाद उनका जीवन में क्या क्या हुआ बताएंगे आपको मौसम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसमें आवाज है भूपिंदर की और साथ में लता मंगेशकर।

जब मदन मोहन 8 बरस के थे तो उनका परिवार अपने होम टाउन चकवाल लौट आया। उनके पिता व्यापार के लिए मुंबई चले गए और मदन मोहन अपने दादा दादी के साथ रहे। इसके बाद कुछ बरस मदन मोहन ने लाहौर में बिताए, जहां उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की और इसके बाद उनके बचपन में ही उनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। मदन मोहन का रेडियो से गहरा नाता रहा है। 1943 में उन्होंने सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में 2 साल काम करने के बाद संगीत में अपना करियर बनाने के लिए वो मुंबई आ गए। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही ऑल इंडिया रेडियो से पेश होने वाले बच्चों के कार्यक्रम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। 1946 में वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कार्यक्रम सहायक के रूप में शामिल हुए। इन दिनों वो रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए संगीत भी तैयार करते थे। अब रेडियो की दुनिया से मदन मोहन फिल्म जगत में कैसे पहुंच गए, बताएंगे आपको हंसते जख्म के इस गीत के बाद, जिसमें आवाज है

1947 में दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में मदन मोहन का तबादला हो गया। उन्हें गायन का बहुत शौक था। इस दौरान उन्हें अपनी आवाज में कुछ गजलें रिकॉर्ड करने का मौका भी मिला। 1948 में मदन मोहन को शहीद फिल्म में दो गीत गाने का अवसर मिला, लेकिन ये गीत शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे क्योंकि ये गीत कभी रिलीज ही नहीं हुए। इस बीच मदन मोहन ने एसडी बर्मन और श्याम सुंदर को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर असिस्ट किया। 1950 में उन्हें आंखें फिल्म में संगीत देने का मौका मिला और पहली ही फिल्म से उन्हें बड़ी सफलता मिली। इसके बाद 50 के दशक में मधोश, धुन, मस्ताना, भाई भाई, पॉकेट मार, अदालत, देख कबीरा रोया और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी फिल्मों के गीतों ने घर घर में उन्हें पहचान दिला दी। फिलहाल हीर रांझा से अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

60 के दशक में मदन मोहन ने सबसे यादगार गीत दिए। इस दौरान अनपढ़, मनमौजी, आपकी परछाइयां, गजल, हकीकत, जहां आरा वो कौन थी, दुल्हन एक रात की, मेरा साया, नौनिहाल और चिराग जैसी लोकप्रिय फिल्में आईं। 70 के दशक में मदन मोहन ने हीर रांझा, परवाना, बावर्ची, हंसते जख्म, मौसम, लैला मजनू जैसी फिल्मों में यादगार गीत दिए। इस दशक में दस्तक फिल्म भी रिलीज हुई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसी फिल्म से आपको सुनवाते हैं अगला गीत मदन मोहन की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल और आज बात हो रही है संगीतकार मदन मोहन की। 14 जुलाई 1975 को सिर्फ 51 बरस की उम्र में मदन मोहन लीवर सिरोसिस के कारण इस दुनिया से विदा हो गए। लैला मजनू, शराफत छोड़ दी मैंने और साहब बहादुर जैसी फिल्में मदन मोहन के जाने के बाद रिलीज हुई। 2004 में आई फिल्म वीरजारा में कुल 11 गीत थे और ये गीत मदन मोहन की पुरानी और अनयूज्ड धुनों पर आधारित थे, जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया और साथ ही IIFA के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप में इस फिल्म के लिए उन्हें चुना गया। फिलहाल अगला गीत आपको सुनवाते हैं लैला मजनू फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, जो कि तत्कालीन काउंटडाउन शो में लंबे समय तक पहले नंबर पर रहा था।

मदन मोहन ने अपने समय के सभी गायकों के साथ काम किया, लेकिन मोहम्मद रफी, तलत महमूद और लता मंगेशकर के साथ उनका साथ बहुत लंबा और यादगार रहा। हालांकि उन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत को फिल्मी गीतों में पिरोने की उनमें गजब की क्षमता थी। साथ ही पश्चिमी संगीत के तत्वों के साथ भारतीय संगीत मिलाकर उन्होंने संगीत की एक ऐसी शैली का निर्माण किया कि शास्त्रीय संगीत के शौकीन और आम लोग समान रूप से उसका आनंद ले सकते हैं।

0: क्या हुआ?
1: गया फिर झमका गिरा दे हम दोनों के इस प्यार में।
2: मेरा साया के इस गीत के साथ कलाकार बेमिसाल से रजनी को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं उर्दू में खबरें।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत ने आबनाए उर्मुज में हालिया हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा रुकनियत के लिए फ़िलिस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के दो रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क़यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले ओडीआई में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने आबनाए उर्मुज में मुत्तहिदा अरब अमारात के परचम बरदार दो तेल टैंकरों पर एक ईरानी मिजाइल हमले के बाद आज ईरानी मिशन के नायब सरबराह मोहम्मद जावेद हुसैनी को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और कई अफराद जख्मी हुए हैं। जनाब हुसैनी को अफसरान से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में वजारत खारजा के सदर दफ्तर से रुख्सत होते हुए देखा गया। यह सिफारती कदम मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा की तरफ से इस दावे की तस्दीक किए जाने के बाद उठाया गया था कि टैंकरों मुम्बासा और बाहिया पर किए गए हमलों में एक भारतीय शहरी के हलाक और हमले के 8 अरकान के जख्मी होने का दावा किया गया है। इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी बाशिंदे शामिल हैं। 4 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीन की मेंबरशिप और 2 रियासती हल की हिमायत की है। कल ब्रुसेल्स में फ़िलिस्तीन अतियाकारों के ग्रुप की दूसरी वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा में सेक्रेटरी श्री प्रिया रंगनाथन ने यह बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत फ़िलिस्तीनी अवाम का तवील अरसे से शराकत दार रहा है। उन्होंने फ़िलिस्तीन के अवाम की इंसानी इमदाद और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों समेत भारत की तरक्याती इमदाद को उजागर किया। मोहतरमा रंगनाथन ने कहा कि भारत के प्रोजेक्ट मांग पर मबनी हैं और सेहत, तालीम, सलाहियत साजी और रिवायती तरबियत से मुतालिक हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहदे CETA पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस अहम मुआहदे के तहत भारतीय बरामदात पर बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे भारत और बरतानिया के दरमियान दिफाई शराकतदारी में गहराई और अवाम के लिए खुशहाली लाने के दोनों मुल्कों के मुश्तरका अज़्म का इजहार होता है। इस तारीखी मुआहदे के लिए मई 2021 में तौसी शुदा तिजारती शराकतदारी और 2030 के भारत बरतानिया खाके की मंजूरी के साथ शुरू किया गया था, जिसमें तिजारत को 2030 तक दुगना करके 100 अरब अमरीकी डॉलर की सतह तक ले जाने का निशाना तय किया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत बरतानिया तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद आलमी सतह पर एक दयानतदार, मुस्तहकम और मुसाबकती मईशत बनने के भारत के सफर की जानिब एक बड़ा कदम है। यह मुआहदा आवाम पर मरकूज है, जिसके तहत पूरे समाज को फायदा हासिल होंगे। भारतीय बरामदकारों को बहुत से बुनियादी शोबों में बरतानवी महसूलात मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने से बड़ा फायदा होगा। अभी तक डब्बाबंद खुराक पर 70% तक, समंदरी मसनूआत में 21% से ज्यादा, इंजीनियरिंग और आटोकल पुर्जों पर तकरीबन 18%, चमड़े और जूते चप्पल पर 16% तक, कपड़ों और मलबूसात पर तकरीबन 12% तक टैक्स दिया जाता है, लेकिन अब इन सभी चीजों पर से टैक्स पूरी तरह हटा दिया जाएगा। इससे बरतानिया की मार्केट में भारतीय बरामदात की मुसाबकती सलाहियत में खातिरख्वाह इजाफा होगा। किसानों, माहीगीरों, MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए मौके पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: भारत की सबसे बड़ी आलमी टेक्सटाइल नुमाइश भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने किया। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत टैक्स वजीर आजम का विजन है। उन्होंने बताया कि यह तकरीब अब एक बैन अल-अक़वामी शक्ल इख्तियार कर गई है और हर साल इसमें नुमाइश करने वालों, खरीदारों, फरोख्त करने वालों और उसको देखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल इस तकरीब में 130 मुल्कों के 60,000 खरीदार और नुमाइश करने वाले शिरकत कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत टैक्स में MSMEs और एंटरप्रेन्योर भी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ किए गए आज़ाद तजारती समझौते भी टेक्सटाइल शोबे को फायदा पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: इफ्तिदाई तकरीब में अलग अलग रियासतों के टेक्सटाइल वज़रा और टेक्सटाइल के वजीर मम्लिकत पवित्र मार्गरेटा ने भी शिरकत की। इस तकरीब में टेक्सटाइल, फैशन, पायदारी, टेक्नोलॉजी, इख्तरा, सरमायाकारी और बैन अल-अक़वामी तजारत के शोबों में भारत की बढ़ती हुई आलमी लीडरशिप को भी दिखाया जा रहा है। पार्लियामानी और अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू आज दोहा के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे का मकसद भारतीय हुकूमत और अवाम की तरफ से कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करना है। वजारत खारजा ने बताया कि शेख अमीर का जदीद कतर की तामीर में अहम तरीन रोल था, वो भारत के करीबी दोस्त थे। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने कोढ़ की बीमारी को एक ऐसी बीमारी करार दिया है जिसके बारे में फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाना जरूरी है। यह ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हुक्म पर किया गया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि इस नई हिदायतनामे के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट हिफाजत सेहत इदारों को कोढ़ की बीमारी के तशखीसशुदा केस की रिपोर्ट नामजद सेहत हुकाम को देना लाजमी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि शुमाल मशरिकी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में कल तक यही सूरत हाल रहेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई है। मौसम महकमे ने बताया कि अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, गंगा के मगरबी बंगाल वाले इलाके, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका के टेक्सास के डालास स्टेडियम में आज रात सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। फ्रांस लगातार तीसरी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाना चाहेगा। दूसरी तरफ स्पेन 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद से पहली मर्तबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। फ्रांस क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर जबकि स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। मर्दों की भारतीय क्रिकेट टीम आज 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगी। यह मैच बर्मिंगम के एज वेस्टन मैदान में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम को मजबूती फराहम करने के लिए वापसी कर रहे हैं जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी टीम में दोबारा शामिल हो रहे हैं। भारत आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 बैन अल-अक़वामी सीरीज में शिकस्त के बाद इस एक रोजा सीरीज में शानदार वापसी की कोशिश करेगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने आबनाए हुरमुज में हाली हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अक़वामी मुत्तहिदा रुकनियत के लिए फिलिस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाजे के 2 रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क़यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले ODI में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. New Delhi strongly condemns attack on two vessels carrying 30 Indian seafarers in Strait of Hormuz. Says violence disrupting free and safe navigation through international waterways. India backs Palestine's bid for United Nations membership, reaffirms two-state solution to conflict between Palestine and Israel. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom to come into force from tomorrow. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, begins in New Delhi to showcase country's growing leadership in textiles sector. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Bihar and Odisha today. France to take on Spain in first semi-final in FIFA World Cup tonight in Texas. And in cricket, India to lock horns with hosts England in first ODI at Birmingham this evening. India has expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahya and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. The Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the External Affairs Ministry, and a strong protest against these attacks was lodged with him. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. The External Affairs Ministry said in a statement that of the 12 Indian nationals on board MT Albahya, one has lost his life and another has been injured. Of the 18 Indian nationals on board MT Mombasa, 9 have sustained injuries, including 2 who are reported to be seriously injured. The ministry extended condolences to the family of the deceased Indian national and wished speedy recovery to those injured. The Indian mission and post in the UAE are closely monitoring the situation and are in touch with the UAE authorities to ensure all possible assistance to the affected Indian seafarers. New Delhi has strongly condemned these attacks and acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz. India has also reiterated deep concern on account of the resumption of attacks and escalation of hostilities in the West Asian region and called for immediate cessation of violence and a return to dialogue and diplomacy in the interest of peace, security and stability in the region. Meanwhile, India today summoned Iranian Deputy Chief of Mission Mohammad Javad Hosseini following an Iranian missile strike on two UAE-flagged oil tankers in the Strait of Hormuz, which killed one Indian national and injured several others. Hosseini was seen leaving the Ministry of External Affairs headquarters in New Delhi after meeting officials. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. military's Central Command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Shah Bahar, Jask and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage, while it responded with attacks targeting Bahrain, Jordan and two tankers associated with the United Arab Emirates traveling through the strait, killing one mariner and injuring 8 others. Earlier yesterday, President Donald Trump announced that the U.S. will reinstate a blockade on Iranian shipping in the Strait of Hormuz and impose a 20% charge on cargo transiting the strategic waterway to cover the cost of maritime security. On the other hand, Iran has asserted its authority over the Strait of Hormuz and rejected the U.S. move. India has reaffirmed continued support to a two-state solution as well as to Palestine's membership of the United Nations. Secretary in the Ministry of External Affairs, Sri Priya Ranganathan, has said India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She said this while addressing the second ministerial meeting of the Palestine Donor Group in Brussels yesterday. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. Ms. Ranganathan noted that India's projects are demand-driven and largely centered on healthcare, education, capacity building, and vocational training. She also announced several new projects focused on rehabilitation, health, education, and vocational training. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling trade to $100 billion by 2030. More from our correspondent.
4: The implementation of the India-UK trade agreement marks a major step in India's journey towards becoming a globally integrated, resilient and competitive economy. With the agreement coming into force, Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariffs on several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exports in the UK market, generate new opportunities for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. Indian service providers in IT and IT-enabled services, financial services, healthcare, education, engineering, telecommunications and consultancy services will benefit from enhanced market access and greater regulatory certainty. With Dipendra Kumar, Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
3: India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
5: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
3: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception. If elected, India will serve a 2-year term beginning in 2028. India has previously served 8 terms as a non-permanent member of the Security Council, most recently in 2021-22. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said Bharat Tex is the vision of the Prime Minister. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textile sector.
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं।
6: Buyers from around 130 countries are participating in the event. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India now has free trade agreements with 56 countries. We are competing in global markets with a large number of exhibitors taking part. We are delighted that nearly 90% of the participants are MSMEs. We hope this year's expo will witness a record-breaking turnout of buyers.
2: इस बार जो बायर आ रहे हैं, ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
3: The inauguration ceremony was attended by Minister of State for Textiles, Pavitra Margarita, and textile ministers from different states. The event is showcasing India's growing global leadership in textiles, fashion, sustainability, technology, innovation, investment, and international trade. It has brought together manufacturers, exporters, global buyers, investors, policymakers, international delegations, artisans, and startups, and technology providers. Union Railways Minister Ashwini Vaishnav today informed that Rail Bhumi Portal will be launched to manage the complete process of land acquisition. Briefing media in New Delhi on the reforms aimed at modernizing Indian railways, Mr. Vaishnav said his ministry has brought several reforms, including in the construction sector. He said fertilizers can now be transported in containers. Mr. Vaishnav said the fly ash generated in power plants will now be transported in containers so that its fine dust could not pollute the environment. He said in sectors like railways, cement and road construction, fly ash will be transported in containers. Mr. Vaishnav also announced a unified license system under container policy.
7: Fly ash is a major environmental hazard. How do we convert this environmental hazard into a usable thing, into a positive economic activity? Ye thought process ke saath is reform ko liya gaya. Agar hum fly ash ka ek achha transportation mechanism bana sakte hain, to then we can use fly ash in economic way, cement mein, production mein use kar sakte hain, ya fir road construction ya kisi dusre construction mein hum kaam mein le sakte hain.
3: In Jammu and Kashmir, a special NIA court in Jammu has issued a non-bailable warrant against Hafiz Saeed, the Pakistan-based chief of the proscribed terror outfit Lashkar-e-Taiba, in connection with a case pertaining to the ongoing probe into the Pahalgam terror attack. The order was passed by the special judge of the NIA court on July the 8th, 2 days after the NIA filed a supplementary charge sheet against Saeed in the Pahalgam terror attack case. The Bharatiya Janata Party, BJP, today accused the Aam Aadmi Party, AAP and Congress of backing those convicted in the killing of IB officer Ankit Sharma during the Northeast Delhi riots in 2020. Addressing the media in New Delhi, BJP National Spokesperson Gaurav Bhatia welcomed the Delhi court verdict, convicting AAP former councillor Tahir Hussain and four other people in the killing of the IB officer. Mr. Bhatia accused AAP National Convener Arvind Kejriwal of

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के

0: संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाज

0: हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धा

0: रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: सभी श्रोताओं को, किसान भाई बहनों को प्रतिमा शर्मा का नमस्कार। मेरे साथ हैं आज,
2: जी हाँ, किसान मित्र, आज मैं आपके साथ शशि कपूर।
1: तो शशि, आज हम एक खास फल की बात करने जा रहे हैं, और खास फल की बात का जब नाम आती है तो साथियों, आम को यूं ही फलों का राजा नहीं कहा जाता। इसका पीला, सुनहरा, सिंदूरी रंग, मनमोहक सुगंध और मिठास हर किसी का दिल जीत लेती है। आम केवल स्वाद का खजाना ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी एक बेहद लाभकारी फल है। और शशि, इसमें तो बहुत सारी ऐसे विटामिन्स पाई जाती हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, फाइबर और अनेक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो किस्म किस्म के हमारी बीमारियों को ठीक कर देते हैं, चाहे त्वचा की बात हो, आंखों की बात हो या हमारे पूरे स्वास्थ्य की बात हो। आम इसीलिए फलों का राजा कहा जाता है।
2: बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि जो आम है, हाँ, वो स्वास्थ्यवर्धक है। और देखिए, ये जो समय चल रहा है वो भी आमों का ही चल रहा है।
1: बिल्कुल चल रहा है।
2: तरह के आम बाजार में देखने को मिल रहे हैं, तो आज के कार्यक्रम का विषय भी ऐसा ही है।
1: ऐसा ही है, तो मैं ये कहूंगी कि फल वही है खास जो दे स्वाद भी और स्वास्थ्य का विश्वास भी। लेकिन किसान भाइयों के लिए आम की बम्पर कमाई हो और अगर बहुत ज्यादा पैदावार हो गई है तो वो किस तरीके से तमाम चरणों को अपनाते हुए अपनी आय को कई गुना बढ़ा लें, इसके लिए उन्हें कई बातों का ध्यान भी रखना होगा, जैसे कि आम की तुड़ाई के बाद सही देखभाल, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन, और इसके बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि गुणवत्ता को बनाए रखती हैं। लेकिन आज

0: हमारे साथ ऐसी ही खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम आचरे, प्रधान वैज्ञानिक फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार। और शशि, इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, आप हमारे सभी श्रोताओं को हमारा टेलीफोन नंबर बता दें, जिससे कि विषय से संबंधित कोई सवाल हो तो डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकें।
1: बिल्कुल किसान मित्रों, आज का जो विषय बड़ा ही दिलचस्प है, तो इस विषय से संबंधित कोई भी आपका सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो सीधे आप फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए नंबर है 2342-10-81 और जो दिल्ली का एसटीडी कोड है वो 011।
0: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि आम तो खूब आ रहे हैं बाजार में और कुछ जो आम है, जो वैरायटी है आम की, वो अब कम भी देखी जा रही है। जैसे सफेदा बहुत कम मार्केट में आ रहा है और दूसरे आम आने लगे हैं, तो आम की तुड़ाई का सही वक्त क्या होता है?
2: नमस्कार श्रोताओं, और जैसे कि प्रतिमा जी ने यहाँ पे एक सवाल किया है कि आम विभिन्न तरीके के होते हैं और जब एक ख़त्म होता है तो दूसरा आता है, दूसरा आता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। इसकी एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है। अगर हम आम का उत्तर भारत में देखें आगमन, तो हमारे मार्च महीने से शुरू होता है और करीब करीब अगस्त के अंत तक ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है, और इसकी जो है प्रजातियों में विभिन्नता की वजह से ही ये संभव है। जैसे कि आपने कहा कि सफेदा, जिसको हम बंगन पल्ली भी कहते हैं, ये हमारे आंध्र प्रदेश जो राज्य है या तेलंगाना दक्षिण भारत से आता है, ये आपका एक सफर करते करते आपकी दिल्ली की बाजार में या पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है, और ये बहुत पहले शुरुआत होता है और ये अपने इस समय बिल्कुल अंतिम पड़ाव में या यूं कहें कि बाजार से जा चुका है। लेकिन दूसरी प्रजातियां, खासकर आपका दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, इत्यादि इत्यादि, और खासकर हमारा यहाँ पे अगर हम नाम न लें केसर, जो हमारे गुजरात से आता है, तो ये आम का जो यहाँ पर चर्चा हो रही है अधूरी रह जाएगी। तो बहुत सी प्रजातियां, सैकड़ों प्रजातियां हैं, और इसी वजह से विभिन्न रंग स्वरूप स्वाद सुबास इत्यादि लिए हुए ये फलों का राजा आम कहलाता है।
0: बिल्कुल सर, स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा ये लाभप्रद होता है, इसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बड़ा पसंद करते हैं। तो आम में कौन से ऐसे खजाने भरे हुए हैं जो स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभप्रद होते हैं?
2: जैसे आपने जिस इस कार्यक्रम का आगाज किया था, आपने बताया कि इसके स्वास्थ्य के प्रति क्या महत्ता है, इसमें खासकर जो एक विटामिन ए जो कि नेत्र ज्योति के लिए ही बहुत ही जरूरी होता है, तो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए इस फल का सेवन बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपने यहाँ पे जो बात कही थी कि इसमें फाइबर भी होता है, रेशा आपके पाचन तंत्र और आपकी जो पाचन प्रणाली है उसको दुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अहम होता है। इसके अलावा ऐसे अनगिनत बहुत से अवयव हैं, तत्व हैं, जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं, द्वितीयक जो पोषक तत्व होते हैं, वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। यूं कहें कि एक हमारे जो स्वास्थ्य का एक समग्र चिंतन या ये एक देख रेख करता है हमारा फलों का राजा आम।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज का जो विषय बड़ा ही एक बार बताएंगे रोचक है, तो डॉक्टर साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे किसान भाई अपने अपने तरीके से आम की तुड़ाई करते हैं, तो सबसे अच्छा जो तरीका है आम की तुड़ाई का वो कौन सा और सही समय कौन सा है?
2: देखिए, आपने जो यहाँ पे प्रश्न किया है, जैसे कहते हैं आम की खेती जी, और एक आम की वैज्ञानिक खेती होती है, तो जो भी जिन किसान भाई बहनों ने ये वैज्ञानिक गुरुता का गुण ग्रहण कर लिया है, तो दूसरे जो आपके किसान भाई बहन होते हैं जो कि इसमें वैज्ञानिक पुट नहीं लाते हैं, उनकी तुलना में बहुत अधिक मुनाफा कमा जाते हैं। एक ही बगीचा, उतना ही क्षेत्रफल उनका, उनके भी आपके 100 पेड़ हैं, अगले के भी 100 पेड़ हैं, लेकिन एक 100 पेड़ से आपका 1 लाख कमाता है, दूसरा 2.5 लाख कमा ले जाता है। तो ये कुछ जो बदलाव आता है, जो आपका फर्क पैदा होता है उनकी आमदनी में, ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक प्रबंधन के ऊपर निर्भर करता है। अब हम एक एक करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन है क्या? जैसे आपने कहा कब तोड़ें, कैसे तोड़ें, तोड़ने के बाद उसको कहाँ रखें, कैसे रखें, उसका किस तरीके से हम परिवहन करें, कैसे ले जाएं, फिर उसका हम किस तरीके से विभिन्न वर्गों में बांटें, किस तरीके से उसको हम शीत भंडार में रखें, और शीत भंडार ले जाकर हम बाजार में जब अंतिम छोर

0: ले जाते हैं उपभोक्ता तक, तो कैसे पहुंचाएं? यही कुछ गुण होते हैं जो कि आपको फर्क पैदा करते हैं, विभिन्नता पैदा करते हैं कि किसानों की भी आमदनी में।
1: जी
0: तो सबसे पहले बात होती है कि उसको हम सही समय पे तोड़ें, और जैसे कि समय आपका जुलाई का आधा महीना बीत चुका है और हमारे सारे आम, खासकर लंगड़ा, चौसा, दशहरी, बिल्कुल इनकी एक फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी होती है जिसे दैहिक परिपक्वता कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है, अगर आप इसको आप ये हरी दशा में भी हैं पेड़ पे, वहाँ से अगर हम तोड़ लेंगे और इनको कहीं ना कहीं हम किसी अखबार या आप किसी भूसे इत्यादि में लपेट के रखेंगे, या यूं कहें कि इन भूसा इत्यादि का प्रचलन तो अब बहुत पुराना हो गया है, अब नए तरीके के हमारे जो पैकिंग बॉक्स CFV बॉक्सेस होते हैं जिसको करोगे फाइबर बॉक्स बोलते हैं, जो गत्ते के बने हुए आपके 5 किलो या 10 किलो की धारण क्षमता के बॉक्स होते हैं, उनमें भी अगर हम तुड़ाई करके रख दें तो ये 5 से 7 दिन में करीब पूरी तरीके से पक जाते हैं। उनमें से अच्छी खासी एक सुवास, महक आने लगती है, उनका रंग बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। अगर उसको हम खाएं तो आप में पूरा वो गुणवत्ता मिलती है जिससे एक वांछित होती है उपभोक्ता को फलों से, खासकर आम से। तो ये एक सही तुड़ाई की अवस्था होती है, इस समय कोई भी तोड़ ले। इसके अलावा एक और भी एक बहुत ही साधारण तरीका है कि हमारा आम का बगीचा तुड़ाई के लिए तैयार है कि नहीं, तो इसका एक तरीका होता है, जब कहते हैं गांव में एक टपका टपकने लगता है, एक पेड़ से एक दो आम गिरा और उसको देखें कि उसमें कहीं कहीं सुवास है, रंग है, स्वाद है, तो ये समझें कि आप इसकी अगर तुड़ाई कर लें आम की और इसको हम पेटी में लपेट के रखते हैं तो 5-7 दिन में स्वतः ही ये पक जाएगा। एक तरीका। दूसरा एक तरीका होता है कि अगर हम किसी भी पेड़ से, आपके मान लीजिए एक बगीचा है, तो 2-3 जगह से आप सैंपल के तौर पर 4-5 पेड़ों से आम तोड़ें और उसको पानी की बाल्टी, एक बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है, और उसको उसमें हम डाल दें। अगर ये आम हमारे जो पानी की सतह होती है उससे नीचे डूबेंगे नहीं, नीचे नहीं बैठेंगे, सतह के नीचे रहते हुए तैरते हैं, क्योंकि इनका 90% हिस्सा पानी में डूब जाएगा, ऊपर जरा सा आपको दिखेगा, तो ये समझें कि ये आप तुड़ाई के लिए तैयार है। हाँ, अगर आम अगर पूरी तरीके से ऊपर तैर रहा है, कुछ हिस्सा उसमें पानी से लगा हुआ है, तो समझिए अब ये कच्चा है, तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही साधारण तरीका है और बहुत किसान भाई बहन इसको अपनाते भी हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, तुड़ाई हो गई, तुड़ाई के बाद बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो किसान भाइयों को ध्यान रखनी है, जैसे कि आमों की सफाई करना, उनकी छटाई करना और ग्रेडिंग करना, उस वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: जैसे कि कहा, आपका तुड़ाई का सही कैसे पहचान की जाए वो अभी मैंने बताया, और तुड़ाई किस प्रकार की जाए काफी एक इसमें महत्व रखती है। तुड़ाई बहुत से हमारे किसान भाई बहन ऊपर पेड़ पे चढ़ने के बाद उस आम को हिला के या तो नीचे तोड़ के गिरा देते हैं, या फिर उसको तोड़ने के बाद जमीन पे गिरा देते हैं। ये बहुत ही एक गलत तरीका है तुड़ाई का, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं और अपने आप में।
1: जी डॉक्टर साहब, आगे हम और बात करेंगे, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो।
2: हाँ जी, हेलो।
1: हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में, आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें।
2: ओ मैडम जी, मैं बोल रहा हूँ फतेहपुर जिला UP।
1: अच्छा, UP फतेहपुर से बोल रहे हैं आप, अपना आपका नाम क्या है?
2: श्याम।
1: श्याम जी, श्याम जी पूछिए सवाल।
2: तो मैडम जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये राजमा है उसको कैसे उगाया जाता है?
1: लेकिन आज तो आम की बात चल रही है, राजमा कैसे उगाया जाता है? चलिए हम आपका सवाल अपने एक्सपर्ट तक पहुँचाते हैं और कुछ तो आपको मिलेगा उसका हल। जी डॉक्टर साहब।
0: श्याम जी, आपने एक जो हमारा एक विषय है इससे इतर सवाल किया है, और राजमा एक जो दलहनी फसल है और खासकर इसको हमारे उत्तर भारत में आजकल उगाया जाता है, और इसके लिए आप अपने निकटतम क्षेत्र के जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं या आपका कृषि विश्वविद्यालय, वहां से जाएं, और खासकर इसमें राजमा की कई प्रजातियां आती हैं, इसको कौन सी प्रजाति आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त है इसको ध्यान में रख के इसकी बुवाई करें। और जैसे आपकी उर्द और मूंग की जिस तरीके से हम खेती करते हैं, राजमा की भी खेती करीब करीब उसी तरीके से होती। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रजाति का चयन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ प्रजातियाँ राजमा की ऐसी होती हैं जो खरीफ में भी उत्पादन देती हैं, और अधिकतर अधिकांश हमारी प्रजातियाँ वो रबी के मौसम में उगाई जाती हैं। तो निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी प्रजाति हम लगाएं। इसके लिए आपको उचित जो विषय विशेषज्ञ है उससे सलाह लेनी होगी।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो,
3: मैं कश्मीर सोनमर्ग से।
1: कश्मीर से आप बोल रहे हैं? कश्मीर के सोनमर्ग से। आप अपना नाम बताएं।
3: लतीफ अहमद रैना।
1: लतीफ अहमद रैना जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछें।
3: मेरा सवाल तो ये है, जो आम यहाँ पे आम का पेड़ आ सकेगा यहाँ कश्मीर में, जैसा तो हर स्टेट में बनता है आम का पेड़, यहाँ पे अब कश्मीर में पेड़ नहीं लगाया वो।
1: अच्छा
0: रैना जी, आपका सवाल है कि जैसे कि आप कश्मीर में सेब उगाते हैं, जैसे कि हम उत्तर भारत में या दिल्ली में रह के या आप यहाँ उत्तर भारत की जितने भी जगह हैं, यहाँ पे सेब नहीं उगा सकते सफलतापूर्वक। ये कुछ कुदरती आपकी लिमिटेशंस हैं, और आप कश्मीर में सफलतापूर्वक आम की खेती नहीं कर सकते हैं। शौक के तौर पे गमले में भले ही आम का पेड़ उगा ले, लेकिन वो भी सर्दी में कहीं कहीं मर जाएगा। इसलिए आपके सोनमर्ग में खासकर और कश्मीर में आम की खेती नहीं की जा सकती। ये कुछ प्राकृतिक इसमें लिमिटेशंस हैं, बाधाएं हैं। प्रकृति ने हर जगह के लिए कुछ ना कुछ नया इनायत किया है, बक्सा है आपको सेब का जो है इनायत किया है, तो हम इधर उत्तर भारत के लिए आम को इनायत किया है।
1: सर, भारत की सुंदरता भी इसी में है कि हर जगह की अलग अलग जलवायु है, अलग अलग हमें फल मिलते हैं, सब्जियां तरह तरह की कलरफुल।
0: निश्चित तौर
1: यही सुंदरता है। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि तुड़ाई के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आमों की सफाई कैसे रखनी है, उनकी छटाई कैसे करनी है और ग्रेडिंग कैसे करनी है।
0: इसको एक हम बहुत ही एक सरल तरीके से विभिन्न चरणों में यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सही तरीके से तुड़ाई करें, आप उसको हला के डाल को हिला के या तोड़ के जमीन पे डालें। इसके लिए आज बहुत तरीके से उत्तम विधियां आ गई तुड़ाई की, खासकर जो अगर आपका बगीचा बड़ा हुआ है तो उसमें एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप देखते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बिजली के खम्भों में बल्ब लगाने के लिए किस तरीके से एलिवेटेड एक प्लेटफॉर्म होता है, नीचे से एक व्यक्ति हैंडल के माध्यम से उसको ऊंचाई तक पहुंचाता है और वहां पर आसानी से वो बिजली का बल्ब टांग देता है। उसी तरीके से आजकल जो बड़े बड़े फार्म हैं वहां पर एलिवेटेड मैकेनाइज्ड जो मशीनीकृत प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जिससे कि आपका जो भी फल की तुड़ाई करता है व्यक्ति उस बागान में, वहां पर उसको पेड़ के हर अंग हिस्से तक पहुंच के आम के फलों को आसानी से तोड़ के कैंची की मदद से डंठल सहित काट के उस प्लेटफॉर्म पर रखता है। और जब प्लेटफॉर्म में करीब करीब एक या दो क्विंटल आम हो जाता है तो उसको नीचे जमीन पे लाता है और उसको आसानी से क्रेट्स में रख के आपके जो ग्रेडिंग पैकिंग का आपका जगह होती वहां पर ले जाता है। जो हमारे मझोले किसान हैं, छोटे किसान हैं, जिनके पास काश्त बहुत छोटी है, छोटा बागान है, तो उनके लिए भी एक मैकेनाइज हार्वेस्टर छोटे छोटे बनाए गए हुए हैं। खासकर हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान के जो अभियांत्रिकी संबंधित संस्थान है, खासकर आपका भोपाल में संस्थान है, उन्होंने भी कई तरीके के मैंगो हार्वेस्टर डिजाइन किए हैं, जिसमें कि आप एक बार में पोल की मदद से उसमें एक रिंग लगी होती है और एक बांस या आपका एक स्टील का पोल होता है, उसके ऊपर एक फलों के इकट्ठा करने के लिए जगह बनी होती, जो कि आपका थैला होता है जिसको कपड़े का या खासकर जूट के धागों से बनाया जाता है, उसमें एक बार में आप 4 किलो 5 किलो आम तोड़ के नीचे ला सकते हैं बड़ी सावधानी से जमीन पे ही रह के उसको, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो हमारे आजकल संकर किस्में हैं, जो बौनी किस्में होती हैं, खासकर उस बागानों में हमारे किसान भाई ट्राईपॉल लैडर, तीन पैर की एक सीढ़ी होती है जिसको कि खड़ा कर लेते हैं, उस पर आसानी से चढ़ के किसान भाई बहन आप अपने जो एक डलिया होती है क्रेट्स में, उसमें आम तोड़ के जमीन पे आसानी से लाते हैं। तो ये तुड़ाई की बहुत सावधानी रखनी चाहिए, ये बहुत बहुत ही अहम होती है। दूसरा, जब उसको हम तुड़ाई कर लेते हैं तो आपको जैसे बताया कि आप क्रेट में रख के उसको ग्रेडिंग पैकिंग का जो जगह होती है वहाँ पे साफ सुथरी जगह पे इकट्ठा करके हम इसको वर्गीकृत करते हैं, जिसे कहते हैं ग्रेडिंग, श्रेणीकरण। आपके बड़े आम हैं ए श्रेणी के, उनको अलग कर लेते हैं। बी श्रेणी के आम या मध्यम आकार के आम होते हैं उनको अलग, और जो बहुत छोटे होते हों उनको अलग कर लेते हैं। तो तीन प्रकार के आपके यहाँ पे ग्रेड बन जाते हैं, और हर बाजार में आपकी ग्रेड्स की अलग अलग डिमांड होती है। जैसे कि हमारे उत्तर भारत के जो यहाँ पे पश्चिमी खासकर क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे ए ग्रेड के आम की बहुत बड़ी मांग होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे पूर्वोत्तर की तरह, वहाँ पूर्वोत्तर में खासकर बहुत मझोले या छोटे साइज के आम की ज़्यादा डिमांड होती है। तो जो हमारे व्यापारी हैं उनको सारा ये कुछ पता है, किस क्षेत्र में किस श्रेणी का आम पहुँचाना है, किस जगह पे इस श्रेणी के आम की उपभोक्ता की मांग ज़्यादा है, तो इसे श्रेणीकृत करते हैं। और श्रेणीकृत करने के बाद इसमें इसमें कई चरण होते हैं, जैसे कि इसको आपने कहा कि धुलाई भी करते हैं। तो कुछ लोग तो श्रेणीकरण करने के बाद इसकी धुलाई करते हैं, कुछ लोग एक बार में ही इसको धुलाई कर लेते हैं। धुलाई में खासकर इसमें कुछ चेप है, जब हम तोड़ते हैं इसमें एक स्राव होता है जो कि एक बदरंग धब्बा डाल देता है या लाइने डालता है, जला देता है, आपके कपड़ों में भी लग जाता है, आपके त्वचा पे भी लग जाता है, उससे भी जलन होती है, स्राव होता है जिसे स्राव दाह बोलते हैं, जिसे उससे जलने की प्रक्रिया को। तो इसको करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं डीसैपिंग, जिसके जो चेप है या सैप हो उसको कैसे हम अलग करें। तो इसके लिए कई तकनीकी हैं, उन सब में सबसे सरल और सस्ती तकनीकी है आपका जो कास्टिक सोडा होता है, तो उसका 0.1% का घोल बनाने, या आपका जो फिटकरी होती है जिसे कहते हैं एलम, उसका 0.1% का घोल बना लें। कहने का तात्पर्य है आप 1 लीटर पानी में करीब करीब 1 ग्राम फिटकरी अगर घोल देंगे तो 0.1% का घोल बन जाएगा। उसमें आप एक ये हौदी हो सकती है आपकी बड़ी, जिसमें कि आपका 100-200 लीटर पानी है, उसमें आप आम डाल लें और इसको डालने के 1 या 2 मिनट बाद उसको निकाल लें, तो ये डिसैपिंग का काम हो जाता है और वाशिंग का भी काम हो जाता है। खासकर जो हमारे ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये जो जैसे फिटकरी कहते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवियों को मारने की भी क्षमता होती है। जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, फफूंदी होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, यूं कहें कि आपका जब स्टोर करेंगे तो आम में आपकी बीमारियां कम से कम आएंगी, सड़न कम होगी और आपका आम चमकीला और काफी देर तक टिकने वाला आम होगा।
1: डॉक्टर साहब बहुत ही रोचक जानकारी दे रहे हैं आप, और देखिये इसी दौरान एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं उनका क्या सवाल। हेलो,
4: हेलो,
1: हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल पूछें।
4: नमस्ते मैडम जी, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर से।
1: जम्मू एंड कश्मीर से राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सवाल।
4: डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि ये अचार के बारे में पूछना था, अचार का जो डालते हैं कौन कौन सी वैरायटी का जो होना चाहिए आम, उसके बारे में जानकारी चाहिए।
1: जी ठीक है जी, बताए डॉक्टर साहब, ये अचार की बात कर रहे हैं कि किस तरीके के आम से अचार बनाया।
0: देखिए, आम के अचार बनाने के लिए एक प्रजाति है जिसको कहते हैं राम केला, ये बहुत ही उपयुक्त अचार बनाने के लिए प्रजाति है, और आप कहीं कहीं इसका प्रबंध करें अगर आपको बड़े स्तर पे अचार का व्यापार करना है या उच्च गुणवत्ता का अचार बनाना है तो राम केला प्रजाति के आमों का प्रयोग करें।
1: जी बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे सवाल हैं, हमारे कॉलर भी जुड़ेंगे, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं उसके बाद आपके पास आते हैं।
5: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
6: पुतला बोल रहे,
5: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
6: मतलब
5: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
6: पर हम तो सब यही डाले हैं।
5: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
6: सच है?
5: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
6: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
7: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान।

0: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
0: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: साथियों, आज आप सुन रहे हैं आम की तुड़ाई के बाद गुणवत्ता प्रबंधन और विपणन के अवसर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम आसरे, प्रधान वैज्ञानिक। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आगे, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में यह भी आ रहा है कि आम का जो भंडारण करना चाहते हैं हमारे किसान भाई बहन, आम सेफ तरीके से रख सकें, तो क्या भंडारण करते वक्त तापमान और नमी का कितना महत्व होता है? ये भी थोड़ा हमें प्रकाश डालिए सर इस पर।
3: थोड़ा नहीं, बहुत ही अहम बात है ये।
2: जी जी।
3: अगर भंडारण में एक त्रुटि हो गई तो खासकर आपका आम होता है उसमें चिलिंग इंजरी, शीतलता का जो एक कुप्रभाव होता है वो आ जाता है, और खासकर आम का जो ऊपर का रंग है बदरंग हो जाता है, उसमें छोटे छोटे पिन होल से हो जाते हैं, थोड़े थोड़े उसमें डिप्रेशन से आ जाते हैं, दबाव से आ जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए आपने जैसे कहा कि तापक्रम और नमी, नमी जिसे कहते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक आर्द्रता, जो भी हमारे भंडार गृह होते हैं उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, और तकरीबन नमी का प्रतिशत 85 से लेकर 90% तक होता है, क्योंकि हमारे ये जो भी खासकर फल सब्जियां होती हैं जीवित होती हैं, और उनका सही नमी में और सही तापक्रम पे भंडारण करना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर यहाँ पे अगर आम की बात करें तो जब हम आम, जब पका हुआ आम है उसको अगर हम भंडारित करते हैं तो हमारा तापक्रम करीब करीब 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। कभी कभी हम 12 से 13 डिग्री सेल्सियस पे भी भंडारित करते हैं, और नमी, खासकर आपने यहाँ पे बात कही, उसकी मात्रा या प्रतिशत करीब करीब 90 से लेकर 95% तक होना चाहिए। तो ये दो प्रमुख बिंदु, खासकर आपकी तापक्रम और आर्द्रता, ये बनाए रखें जब भी हम भंडारित करें शीतगृह में आपके आम फलों को, बहुत ही जरूरी होता है। आप अपने आम को अधिक समय तक गुणवत्ता युक्त दशा में लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं इस तापक्रम और आर्द्रता पर।
4: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात रही भंडारण की, अब बात आती है मार्केटिंग की। तो हमारे जो किसान मित्र हैं अपने जो आम के उत्पाद को बाजार ले जाएं तो किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
3: देखिए, वो सभी बातें जिनका मैंने प्रारंभ से यहाँ पे गणना की है या यहाँ पे चर्चा की है, उन सभी को एक एक कड़ी के रूप में, एक चेन रिएक्शन है इनका, एक ब्लॉक चेन होती जिसे कहते हैं, जैसे आपकी हमारी एक चेन में कई कड़ियाँ होती हैं, जुड़ती चली जाती हैं, अगर कहीं कहीं एक कड़ी टूट जाएगी तो फिर आगे का सफ़र गड़बड़ हो जाता है और आपका जो गुणवत्ता है वो आम की वो नहीं रह पाएगी। तो हम अगर एक एक हम यहाँ पे पुनः उनका पुनरावृत्ति करें तो सही समय पे तोड़ें, जब उसका मैच्योरिटी परिपक्वता आ जाए सही, तभी पे तोड़ें, और सही औजार या माध्यम से, खासकर आपकी तुड़ाई का औजार या माध्यम किस, कौन सा तरीका अपनाएं, और तोड़ने के बाद उसको आप किस तरीके से आपकी ग्रेडिंग पैकेजिंग के लिए ले जाएं, और आपका इसमें दाग धब्बे इत्यादि ना हो तो उसका आप डिसैपिंग कैसे करें, या यूं कहें कि आपकी वॉशिंग कैसे करें, धुलाई कैसे करें, इसका भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया। अब इसके बाद उसकी हम ग्रेडिंग, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तीन श्रेणियों में कैसे विभक्त करें, और श्रेणियों में विभक्तिकरण के बाद उनको सही तरीके से हम पैकेजिंग कैसे करें। अब पैकिंग करने के लिए आजकल खासकर हमारे एक लेयर के पैक, जिसके कि हम आम की एक ही परत लगाते हैं और पैकिंग हो जाती है, और इस पैकेजिंग की जो वजन होता है 3 किलो तक होता है करीब करीब, और खासकर इस पैक को हम गिफ्ट पैक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप 5 किलोग्राम का भी एक CFB बॉक्स आता है, इसके अलावा 10 किलोग्राम का भी CFB बॉक्स आता है, और खासकर पहले के समय में जब हम वुडन बॉक्स, जो आपकी लकड़ी की बॉक्स होते थे, उनका प्रयोग करते थे, लेकिन हमारे वनों पर इसका दुष्प्रभाव, कुप्रभाव पड़ रहा है तो इस पर प्रतिबंध है, और आपका CFB बॉक्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से उसमें हम इनको पैकिंग करें, और पैकिंग करते समय ये भी देखें कि आपकी CFB बॉक्स जो हम प्रयोग कर रहे हैं बॉक्स, वो अच्छी गुणवत्ता का हो, उस

0: में आप भार को सहन करने की क्षमता हो, उसमें आपका एरेशन, खासकर आपके होल्स होते हैं, आपके जो ऊपर हैं और नीचे हैं और आपके आजू बाजू में, तीन तरीके से इस पे जो आपके एरेशन, उसमें वायु का संचार अच्छा हो तो उसमें होल्स होने चाहिए। इन सब का कुछ ध्यान रखें। अगर इस तरीके से हम उनको पैकिंग करके भंडारित करेंगे 13 डिग्री सेल्सियस पे, निश्चित तौर पर ये सारी कड़ियाँ एक एक करके आपकी मूल या गुणवत्ता को अधिक बढ़ाएंगे और आपको प्रति एकड़ से या प्रति पौधे से अधिक लाभ मिल सके,
1: उत्पादन देंगे। और डॉक्टर साहब, चलते चलते संक्षिप्त रूप में बताएं कि जो हमारे आम उत्पादक किसान भाई बहन हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे।
0: संदीप से अगर आपको संक्षिप्त में कहें कि आप शुरू से ही आप सारी बातों का ध्यान रखें, यूं कहें कि हम बाजार में जाके ही आप उसकी गुणवत्ता सुधार लेंगे और पैसा अच्छा सा खासा ले पाएंगे, तो मैं यहाँ पुनः कहूँगा कि सारे यहाँ पे बिंदु हैं, उन पर समग्र विचार करते हुए आप अपना एक खुद का ब्रांड, आप अपनी एक ब्रांड बनाएं कि ये मलिहाबाद का आम है या रतौल का आम है या सहारनपुर का आम है या यूं कहीं इस फार्म का आम है। तो ये सारी आपकी जो कड़ियां हैं उन सबको ध्यान रखते हुए अगर आप आम की खेती करेंगे, बाजार तक पहुंचाएंगे, तो आप विपणन में एक सफल उद्यानिकी के व्यक्ति बनेंगे और आपका अधिक से अधिक लाभ होगा और इसका संदेश दूसरे किसानों तक भी जाएगा जो आम का उत्पादन करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे साथ थे डॉक्टर राम आश्रय जी, प्रधान वैज्ञानिक फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार।
1: तो शशि, अब वक्त है विदा लेने का। इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार, और आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा
2: और शशि कपूर।
1: आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते हुए दो जहाजों एमटीएल बहिया और एमटी मुंबासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उपमिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्यीय चालक दल में से 30 भारतीय नाविक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अल बहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। इससे पहले अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावों को खारिज किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का दोबारा समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस

0: ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्ध लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एल्बेस्टन मैदान पर खेला जा रहा है। ये अब से कुछ देर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India has expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Al-Bahya and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. The Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the External Affairs Ministry, and a strong protest against these attacks was lodged with him. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. The External Affairs Ministry said in a statement that of the 12 Indian nationals on board MT Al-Bahya, one has lost his life and another has been injured. Of the 18 Indian nationals on board MT Mombasa, 9 have sustained injuries, including 2 who are reported to be seriously injured. The ministry extended condolences to the family of the deceased Indian national and wished speedy recovery to those injured. The Indian mission and post in the UAE are closely monitoring the situation and are in touch with the UAE authorities to ensure all possible assistance to the affected Indian seafarers. New Delhi has strongly condemned these attacks and acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz. India has also reiterated deep concern on account of the resumption of attacks and escalation of hostilities in the West Asian region and called for immediate cessation of violence and a return to dialogue and diplomacy in the interest of peace, security and stability in the region. The United States launched strikes on Iran for the 3rd consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. Military Central Command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, Jask and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage, while it responded with attacks targeting Bahrain, Jordan and 2 tankers associated with the United Arab Emirates, traveling through the strait, killing 1 mariner and injuring 8 others. Union Railways Minister Ashwini Vaishnav today informed that Rail Bhumi Portal will be launched to manage the complete process of land acquisition. Briefing media in New Delhi on the reforms aimed at modernizing Indian railways, Mr. Vaishnav said his ministry has brought several reforms, including in the construction sector. He said fertilizers can now be transported in containers. Mr. Vaishnav said fly ash generated in power plants will now be transported in containers so that its fine dust could not pollute the environment. He said in sectors like railways, cement and road construction, fly ash will be transported in containers. Mr. Vaishnav also announced a unified license system under container policy.
3: Fly ash, major environmental hazard. How do we convert this environmental hazard into a usable thing, into a positive economic activity? Ye thought process ke saath is reform ko liya gaya. अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं.
2: India has reaffirmed continued support to a two-state solution as well as to Palestine's membership of the United Nations. Secretary in the Ministry of External Affairs, Sri Priya Ranganathan, has said India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She said this while addressing the second ministerial meeting of the Palestine donor group in Brussels yesterday. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030. The Indian men's cricket team will take on hosts England in the first one-day international of a three-match series at Edgbaston in Birmingham today. The match will begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.

0: कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां ये समय है मन भावन प्रोग्राम का। मन भावन वही प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी पसंद के गीत लेकर आते हैं, आपको सुनवाते हैं और आप ढेरों मैसेजेस से अपने रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाते हैं। तो इस शो में अपनी रिक्वेस्ट मुझ तक यानी कि एफएम गोल्ड के स्टूडियो तक भेजने के लिए आपको करनी है एक ईमेल, fmgoldairdelhi@gmail.com। ये है वो ईमेल आईडी जो आपकी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाएगा और फिर हम आपकी पसंद के गाने आपको सुनवाएंगे आज अब से लेकर 4 बजे तक 100.1 एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए

बिल्कुल, मुझे लग रहा है आप लोगों को चैन जरूर आ रहा है ईमेल करने के बाद। और कुछ हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बहुत सारी ईमेल्स कर देंगे तो ज्यादा चैन आएगा या ज्यादा आपकी पसंद के गाने बजाए जाएंगे। अब जवाब तो आप भी जानते हैं, लेकिन खैर, बहुत सारे एक ही लिसनर से ईमेल आते हैं तो एक पूरा ईमेल का पेज भर जाता है। अच्छा, आप लोगों को ये लगता होगा कि शायद ऐसा करने से हमारा नाम शामिल होगा, लेकिन ये भी एक गलत फहमी है। कोशिश की जाती है कि सबके नाम एक बार तो शामिल हो जाएं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा बार ईमेल भेजेंगे तो उतनी ही बार आपका नाम शामिल होगा। हाँ, कई बार ये हो जाता है कि हम जिस नाम को पढ़ चुके हैं हम उसे दोबारा पढ़ देते हैं, क्योंकि आप अलग अलग नामों से ईमेल भेजते हैं, उसमें सेंडर नेम चेंज हो जाता है, तो उस धोखे में ईमेल वो खुल जाती है। खैर, तो अब आपके ईमेल्स की बात करते हैं। तो पहला ईमेल गुरमीत सिंह का आया हमारे पास साउथ एक्सटेंशन से, और आप नमस्कार लिखकर भेजते हैं, आपने रिक्वेस्ट कोई नहीं लिखी है। तो भाई, बहुत बहुत आपको भी हमारी नमस्ते और शुभकामनाएं, आपका दिन अच्छा जाए आप सभी का। नीतू मल्होत्रा हमारे साथ हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और एक गाने की फरमाइश आपने लिख भेजी है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, और पानीपत से आप लक्ष्मी लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा के साथ इस गाने को सुनना चाहते हैं, और आपके साथ पीयूष सिक्का को

सिक्का और डुगू भाविक सिक्का ने भी इसी गाने की रिक्वेस्ट लिख भेजी है। हरजिंदर सिंह भाटिया प्रोग्राम सुन रहे हैं, सिंदूर फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं एंजल सोनू और पप्पी भाटिया के साथ जमशेदपुर से। और रविंद्र मोहन दास भी हैं प्रोग्राम सुनने वालों में, इसे पसंद करने वालों में। तो आप मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना, आप सबने भी इसी गाने की रिक्वेस्ट लिख भेजी है जो आपसे पहले एक लिसनर ने भेजी थी। आप तो ऐसे न थे इस फिल्म से, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो अगला गाना आप मनभावन में यही सुनेंगे। विजय सुरलकर ने भी हमें ईमेल किया है, याराना फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है रतनमाला सुरलकर और मोताला महाराष्ट्र से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। फैज अहमद खत्री का भी मैसेज हमें मिलता है, प्यार ही प्यार फिल्म से आपने एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। और आपके साथ हैं शाकिर मुलाजी, साबिर रफीक मुलाजी, और आप हुबली कर्नाटक से हमें ये ईमेल भेजते हैं। मैसेज मिलता है हमें रामेश्वर का, और आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, नमस्कार, सदा खुश रहिए, ऐसा लिखकर भेजते हैं। और धरती कहे पुकार के से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ हैं उमा कांति कठेरिया, कमलेश पुत्र बधु, निशा कठेरिया और प्रज्ञा प्रतिमा बेद बाबू, आप सब प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और इस गाने की रिक्वेस्ट आपने हमें लिख भेजी है। नईम खान विष्णु गार्डन से प्रोग्राम सुन रहे हैं। मुजस्सिम अकरम असलम निसार आपके साथ हैं। और अगला मैसेज हमें मिलता है ताज मोहम्मद का, आप हरिद्वार से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आपके साथ है गुलाम साबिर राही मेराज जहां, और आजाद नगर से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। सुंदर इमोजीज के साथ ईमेल सजाकर हम तक भेज रहे हैं आप। मोहम्मद यूनिस खत्री का भी ईमेल हमें मिलती है, और आप मोहम्मद सादिक खत्री, आयूब खत्री और यूसुफ खत्री के साथ खंडवा से प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं। अहमद फूल वाले भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। और आरजू फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल और इमरान अहमद, कापसेड़ा बॉर्डर से आमना नसरीन, आसमा राबिया, मंतशा, आशु अहमद और समस्त आपका परिवार।

देखते हैं अगली ईमेल किसकी आई है और कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं। तो अगली ईमेल बोधराज खोरवाल की हम तक पहुंचती है। पहचान फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। उत्तम नगर से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश के साथ। परमिंदर सिंह रंधावा, आपका भी मैसेज हमें मिला। पारसमणि फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं लता जी की आवाज में, और आपके साथ लखनपाल रंधावा भी है। सुमेरा परवीन प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं। नसीब फिल्म से आप जॉन जॉनी जनार्दन ये गाना सुनना चाहती हैं, और आपने हमें मैसेज भेजा है अपनी फरमाइश के साथ। प्रकाश वर्मा हैं प्रोग्राम सुनने वालों में। कुमकुम जी का भी मैसेज मिला है। कुमकुम जी के साथ आरती आराध्या, माला सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। सावन भादो फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट लिखकर भेजी है। साथ ही प्रकाश वर्मा का भी मैसेज हमें मिला है। पिघलता आसमान से आप गाना सुनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ से आपके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा भी। पीएस नवांकर हैं प्रोग्राम सुनने वालों में। असली नकली फिल्म से आपने एक रिक्वेस्ट की है हमसे गाने की। और नरवेल महाराष्ट्र से आपके साथ निर्मला नवांकर, विशाल नवांकर हैं। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आयुष मोहेकर, आप सब ने भी अपनी रिक्वेस्ट इनके साथ लिख भेजी है। सोहेल शेख प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आपके साथ हैं शेख

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: आप सुन रहे हैं मन भावन अपराजिता के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आप ही की रिक्वेस्ट के गाने हम सुनवा रहे हैं आपको, आपकी ईमेल्स जो हम तक पहुंच रही हैं। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो मैं बता दूं कि आप अपनी रिक्वेस्ट यानी कि जो गाना अब आप सुनना चाहते हैं उसे लिखकर भेजें fmgoldaiadelhi@gmail.com पर, जैसे हमारे लिसनर्स ने भेजा है। तो अगली रिक्वेस्ट पूरी होने वाली है होली चौक उत्तम नगर से राम खोरवाल, सचिन, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल की, जो महुआ फिल्म से एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं। लेकिन कुछ और साथियों के नाम मैं यहां शामिल कर रही हूं, उसके बाद आपकी पसंद का गाना बिल्कुल सुनवाऊंगी। गणेश सूतर प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं कोल्हापुर से, आपके साथ है चेतन, सारिका और राधिका। फूल और कांटे फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। केहर साहू हैं हमारे साथ, खामोशी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं भाटापारा से, आपके साथ हैं आकाश, कमलेश, गन्नू लाल, रजक, मुरली क्षत्रिय। और जाकिर साहब का भी मैसेज मिलता है।

है हमें मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। आपने नीला आकाश फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी। आपके साथ है निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी, मंसूरी जाकिर मंसूरी, कमरून, आप सब हैं इस गाने की रिक्वेस्ट भेजने में। और तुलसी मस्किन का भी मैसेज हमें मिलता है, वीना मस्किन, आशीष चैतन्य, मेघा मस्किन के साथ। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। धर्मेंद्र चींपा का मैसेज मिलता है हमें, दिल ही तो है से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से। और आपके साथ है कपिल, ईशान, पूजा परिहार, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है ऐसा आपका ईमेल हमें बताता है। अब्दुल गफार का मैसेज मिलता है हमें और खूबसूरत इमोजीज जिसमें माइक, रेडियो और फूल शामिल हैं। तो आप सोहन जोशी, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, अब्दुल गफार, ये सब हमें मैसेज करते हैं और सुनना चाहते हैं हमारी पसंद का कोई भी गाना। तो लीजिए अभी बस कुछ और नाम और हमारी पसंद का और आपकी पसंद का गाना आप तक पहुंचने वाला है। महेंद्र प्रसाद मोदी प्रोग्राम सुन रहे हैं रामगढ़ कैंट से। आपके साथ हैं डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर तस्मीन और जी। इसके बाद मैसेज मिलता है अनूप कौर का, अनूप कौर, सफर फिल्म से गाना सुनना चाहती हैं। आपके साथ सरोज बंसल भी हैं गुरुग्राम से। और दिग्दर्शन गौर का मैसेज मिलता है हमें, कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई आपके साथ हैं। मेरठ कैंट से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, मौसम फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट आपने हमें लिख भेजी है। और साथ ही मैसेज आता है संदीप मक्कड़ का, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत मक्कड़, कमल सहनी, पिंगा वाला चौक, गौरैया, जालंधर, पंजाब से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं।

0: फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर जानेंगे कि किसकी पसंद का होगा अगला गाना मन बहावन प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अगला मैसेज मिलता है हमें अशोक दले, सविता अनिकेत दले, ऋषिकेश और जीविका दले का। और पुनावले पुणे से आपके साथ हैं अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, विशाखा। और आप कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, ये बढ़िया बात कर दिया आपने। नवाब अहमद का मैसेज हमें मिलता है, कोई भी गीत आप भी सुनना चाहते हैं। अशरफ अली, सिराज मिथुन, सलीम अख्तर, बबलू कश्यप, आप सब दिल्ली से हमें ये ईमेल भेजते हैं। और उग्रसेन यादव प्रोग्राम सुन रहे हैं, और शकुंतला यादव गरिमा के साथ आप रेशम की डोरी कहां जइयो ये गाना सुनना चाहते हैं। और अनिल मोहन प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से, आपके साथ हैं उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। और बबलू ठेकेदार का भी मैसेज हमें मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है नाम पढ़ते ही कि मैं आपका मैसेज शामिल कर चुकी हूँ। सतीश अनेजा का भी मैसेज आया है हमारे पास, और आप वो कौन थी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, बिमला अनेजा के साथ मनाली से आप मैसेज भेज रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है। और मनाली से आपने ठंडी ठंडी हवा हम तक पहुंचा दी है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मैं पिछले मंगलवार आपसे मिलने आई थी, यानी कि ट्यूसडे को, तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और हालत कुछ ऐसी थी कि बाहर ठंडी थी, यानी कि बहुत ही ठंडा माहौल हो रखा था। ठंडा मतलब अच्छा, प्लेजेंट। और भीगने के बाद स्टूडियो के अंदर भी हालात कुछ ऐसे ही थे, और मैं हिदायत दे रही थी कि आप अदरक वाली चाय पिए अगर आप भीग चुके हैं तो। और आज देखिए कैसा माहौल है, बारिश को हम एक बार फिर से जो है बुलाना चाहते हैं। और ऐसे ही एक गाने की रिक्वेस्ट हमें एक भेजी है, गुरु फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं बरसोरे मेघा। माहिरा मलिक, हीबा, आयशा, जोया, जैनब और मरियम, आप नॉट प्लेस यानी कि बहुत ही पास से हमें मैसेज कर रहे हैं, तो आपकी पसंद का होगा अगला गाना। सतीश अनेजा प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। रविंद्र मोहन दास शहनाई फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, किशनगंज बिहार से। और आशा देवी भी आपके साथ हैं। अगला मैसेज आता है सुधाकर जाधव का, आपके साथ है प्रशांत राजे, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख और प्रणाली देशमुख, कुमार सरवर देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख भी आपके साथ हैं। और जगदीश कुमार का भी मैसेज हमें मिलता है, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, राहुल रितिका के साथ नांगलोई से। और नवी हसन अब्बासी का मैसेज हमें आता है एटा से, आपके साथ हैं शहनाज, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम यशफ, रसीद वारसी और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान, सबीहा, अंजुम खान, अंजुमन खान। और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं दो रास्ते फिल्म से अपने गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। स्वरूप आनंद सरजल का मैसेज हमें मिलता है, और साजन की बाहों में ये गाना आप सुनना चाहते हैं। आपके साथ छत्तीसगढ़ से हैं पीपल अंबिकापुर से। अच्छा, स्वरूप आनंद सरजल आपने मैसेज हमें भेजा है, और सिंगर्स के नाम भी आपने लिख भेजे हैं। राशिद हुसैन अंसारी प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आपके साथ आपके परिवार के लोग हैं आसना, नौसी, नौरीन, नसरीन, राशिद हुसैन अंसारी, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। और कुरावली से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं।

अब देखिए, अगर मैं बाहर देखूं स्टूडियो से तो अच्छी खासी धूप आज खिली हुई है और सब लोग चाहते हैं कि वर्षा जो है वो फिर से हो, बारिश फिर से हो जाए। तो गांधी चौक बाड़मेर से एक रिक्वेस्ट हमारे पास आई है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार की, और आपके साथ दिनेश चौहान भी हैं, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा हैं, और दिनेश चौहान रामदेवरा से प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आपने हरिश्चंद्र तारामती से गाना सुनने की रिक्वेस्ट लिख भेजी है लता जी की आवाज में, मेघवा गगन बीच झांके। तो इस गाने को हम आपको सुनवाएंगे, कुछ नाम और शामिल कर लेते हैं। अल्तमश खत्री प्रोग्राम सुन रहे हैं, फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये गाना आप सुनना चाहते हैं, समीना मुदस्सिर फिरदौस हसन लला के साथ खंडवा से। और साथ ही मैसेज ओम कुमार का आता है हमारे पास, आपके साथ विद्या गौरी वैष्णवी महाराष्ट्र से हैं, सावन भादो फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। मोहम्मद फारूक भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और ओ बेवफा फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। कंज डुंडवारा से आपने हमें ईमेल की है और साथ ही मैसेज आता है पंकज कुमार का, आप दिल्ली से प्रोग्राम सुन रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। बबलेश पवार भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। मोहम्मद फारूक का मैसेज हमें मिलता है और आपके साथ है शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। और अगला मैसेज हमारे पास अनिल मोहन का आया है, उषा मोहन, टिल्लू नायक आपके साथ है, रमेश चंद्र कांबड़े प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और शोर फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। साथ ही मैसेज आता है हमारे पास जॉन डिकोस्ट्रो का और आपके साथ हैं रोजी डिकोस्ट्रो, पर्ल और विलिस, जनकपुरी सहारनपुर से आपने हमको ये ईमेल लिख भेजी है। भारत भूषण भी हैं प्रोग्राम सुनने वालों में और खूबसूरत फूल की यानी कि गुलाब की इमोजी आपने हमें बना भेजी है। बेंगलुरु से द ट्रेन से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष। साथ ही शमशूल कमर राही का गंज डुंडवारा से मैसेज मिलता है, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान आपके साथ हैं और निगाहें फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। साथ ही मैसेज मिलता है हमें राजवीर सिंह का, आप के साथ हैं चौधरी अवियाना कंचव और आप आवारा फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। आरएल देवांगन का भी मैसेज हमें मिलता है, उजाला फिल्म से आप कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन के साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं।

मोहसिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ और मोहम्मद कलीम का संदेश हमें गंज डुंडवारा से मिलता है। सुधाकर जाधव, सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं सोनीपत से। साई गायकवाड़ का भी मैसेज मिलता है हमें, बरसात फिल्म से आप गाना सुनना चाहते हैं। नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ के साथ। और किशन वंजनी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आनंद फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि जाने से पहले आनंद फिल्म से ही हम अगला और इस प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको आज सुनवाएंगे। और ये सभी प्रोग्राम पसंद करने वालों के लिए है जिनका नाम ना चाहते हुए भी आज छूट गया है, आप सब के लिए ये गाना होगा। लेकिन जाने से पहले कुछ और नाम शामिल करती हूँ। ओम कुमार, उत्तम कुमार भगत, यूनिस खत्री, नवी हसन, हाजी मजहार, लालगिरी, भारत भूषण, इशाक मोहम्मद, फारूक अली खान, सुरेश नारंग और आपके साथ हैं सोनाली नारंग भी, उत्तम कुमार भगत, नवाब अहमद भारती, मुकेश कश्यप और आपके साथ हैं रामपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। आप सब प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। और लालगिरी के साथ हैं हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। और मैसेज मिलता है हमें हाजी मजहार का, आपके साथ है रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। प्रोग्राम आप सब पसंद कर रहे हैं, आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। मैसेज मिलता है हमें यूनिस खत्री का और सुधाकर जाधव भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, प्रशांत, राजे कुमार, संचित वायल, प्रथमेश देशमुख प्रणाली के साथ।

अनिल कुमार मिश्रा, परमिंदर सिंह, कुमकुम, गणेश सूतर, संजय ढींगिया, ताज मोहम्मद, बोधराज खोरवाल, प्रकाश वर्मा, आप सबने प्रोग्राम पसंद किया। इस गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ, मिलूंगी कुछ देर के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय दो जहाजों एमटी अल बहिया और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्यीय चालक दल में से 30 भारतीय नाविक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अल बहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हुआ है। एमटी मोम्बासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। इससे पहले अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के दावे का समर्थन किया है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का दोबारा समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: HR Corporate Communications, Executive Security, Executive Law, Executive Safety, Executive Finance and Executive Medical across different grades. Interested candidates can apply online through the career section. For detailed eligibility criteria, qualifications and experience requirements is available on the official website. Kindly look up www.neepco.co.in. I repeat the website, it is www.neepco.co.in. The High Court of Delhi has invited online applications from eligible candidates for the Delhi Higher Judicial Services Examination 2026 under the 25% recruitment quota. A total of 27 vacancies are available, comprising 17 general, 5 SC, 5 ST and 5 ST posts. Selected candidates will be appointed in the Delhi Higher Judicial Service in the J5 pay level. The online application process will close on 15th July 2026. Candidates are advised to refer to the detailed notification on the official website, that is at www.delhihighcourt.nic.in, for eligibility criteria, examination pattern and important instructions and updates. The Indian Ports Association, IPA, has invited applications for several positions across its organization. The vacancies include Director Cruise on fixed term employment contract, Deputy Director on deputation, various positions in the PHRD vertical on deputation, and the post of a Secretary and Assistant Manager on deputation. The last date for submission of applications is 15th July 2026. Interested candidates can check the detailed eligibility criteria, qualifications, experience requirements and application process on the official website. Do look up www.ipa.nic.in. I repeat, it is www.ipa.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन औषध अनुभाग आमंत्रित कर रहा है वैज्ञानिक अधिकारी के एक पद के लिए आवेदन। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट cdsco.gov.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट नेटवर्क और सिस्टम्स, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्ट, मैकेनिकल, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तथा केमिकल। इसके अतिरिक्त जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटैलिटी, जूनियर टेक्नीशियन सिविल मेंटेनेंस और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद की वेबसाइट। पता है www.iitism.ac.in। भारतीय स्टेट बैंक का केंद्रीय भर्ती एवं प्रोन्नति विभाग कॉरपोरेट केंद्र मुंबई आमंत्रित कर रहा है परिवीक्षा अधीन अधिकारियों यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए आवेदन। कुल 1500 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिनमें से 234 अनुसूचित जाति के लिए, 144 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 390, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 144 तथा सामान्य वर्ग के लिए 588 रिक्तियां उपलब्ध हैं। वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक की इस वेबसाइट से, जिसका पता है sbi.bank.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप करियर्स सेक्शन में करंट ओपनिंग्स को खोल सकते हैं। वहां आपको तमाम जानकारी

0: योग्यता तथा अन्य नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए आधिकारिक वेबसाइट www.nfr.indianrailways.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: जो तो माँ जाते एक बार, हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होंठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार, जो तो माँ जाते एक बार। जी हाँ, एक बार नहीं, हम हर रोज आते हैं ठीक इसी समय आपसे रूबरू होने। नमस्कार, महान कवयित्री महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों के साथ आपका अभिनंदन। कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
2: हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका। Priyanka, let me start with an incredible piece of hearty news today. We made history at Lord's. For the first time ever, women played at a test match at the iconic Lord's. And Team India turned that historic moment into an unforgettable triumph. It was a record-breaking performance of skill, grit and never-give-up spirit by the girls, defeating England by 270 runs in their home ground.

0: And from Yastika Bhatia's memorable century to Kranti Gaur being scripted on the Lord's coveted honours board for her stunning 5-wicket haul, every moment reflected the dreams of countless women who dared to think cricket beyond boundaries. While Indian men took 54 years to win test at Lord's, women did it at first shot. This was a headline in one of the most prominent newspapers today, and that was really very overwhelming. Cheers to Nari Shakti. History sometimes happens quietly. At a time when all of us were more focused on football, World Cup and Wimbledon, our girls made us proud in every way. A victory written by Indian women, remembered forever. What do you say, Priyanka?
1: बिल्कुल सही कहा आपने अनुजा. भारत की बेटियों ने क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में 142 साल के इतिहास में पहली बार खेला गया महिला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया. और 270 रन की जो इस रिकॉर्ड जीत के साथ हमारी बेटियों ने, जो कुछ दिन पहले इंग्लैंड के जो मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ पुरुष टीम का, और उसमें जो हमें हार मिली थी, तो के जख्म को भी भर दिया है.
0: Absolutely. So heartiest congratulations and best wishes for many more such achievements to them. Shall we start with the headlines now, Priyanka?
1: बिल्कुल. अब जानते हैं कि क्या ताजा तरीन खबरें हैं इस समय की. भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की. कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही को बाधित कर रही है.
0: India backs Palestine's bid for United Nations membership, reaffirms two-state solution to conflict between Palestine and Israel.
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा.
0: India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, begins in New Delhi to showcase country's growing leadership in textile sector.
1: बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना.
0: France to

0: अनुजा, ये जो पंक्तियां थी इतनी जानी पहचानी, क्योंकि सुबह सुबह जब एमसीडी की गाड़ियां आती हैं तो ये गाना आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये धुन सुनने के लिए आगे आ जाते हैं। और मेन जो इसका जो रहता है कि मकसद कि आपने घर का जो कचरा है उसे सही से निपटाया जाए।
1: Priyanka, yes. Today is 14th of July, a day that reminds us to express gratitude to the people who work tirelessly behind the scenes to keep our surroundings clean and healthy. And today we observe Namaste Day.
0: बिल्कुल सही। हम में से कई लोग अपने दिन की शुरुआत साफ सुथरी सड़कों पर चलकर, साफ सुथरी सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करके और अच्छी साफ सफाई की उम्मीद करके करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो ये सब मुमकिन बनाते हैं?
1: एग्जैक्टली। नमस्ते डे इज डेडिकेटेड टू ऑनरिंग आवर सैनिटेशन वर्कर्स, दोज हु क्लीन सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स, वेस्ट पिकर्स एंड फॉर्मर मैनुअल स्कैवेंजर्स। देयर वर्क इज एसेंशियल टू पब्लिक हेल्थ, येट इट ऑफन गोज अननोटिस्ड।
0: सही कहा। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी।
1: And the vision behind this initiative is simple but very powerful: to ensure that safety, dignity and well-being of every sanitation worker by replacing hazardous manual cleaning with safe mechanized methods.
0: सोचिए अनुजा, बिना सही उपकरणों के सीवर में उतरना पड़े, यह न सिर्फ मुश्किल है बल्कि बेहद खतरनाक भी। और ऐसे कई इंसिडेंट्स भी हमने सुने थे, लेकिन अब जब सही उपकरण मिलते हैं तो ये सुरक्षा की दृष्टि से कितनी अच्छी बात है।
1: Right, Priyanka. And that is why the Namaste scheme is working towards zero fatalities in sanitation work. It promotes mechanized cleaning, provides protective equipment, trains and certifies sanitation workers, and also strengthens emergency response sanitation units.
0: Emergency response sanitation units के जरिए personal active equipment और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराकर ये योजना काम करने की सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करती है और कर्मचारियों को उनके काम से जुड़े खतरों से बचाती है।
1: It also supports workers through self-help groups and entrepreneurship opportunities, helping them build a secure and a sustainable livelihood.
0: नमस्ते योजना कामगारों को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा देती है। स्वच्छता उद्यमी योजना जैसी पहलों के जरिए कौशल विकास और आजीविका में मदद देकर एक बड़ा बदलाव लाती है।
1: एब्सोल्युटली। द गोल इज नॉट ओनली टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस बट ऑल्सो टू एम्पावर सैनिटेशन वर्कर्स सोशली एंड इकोनॉमिकली। एंड दिस ईयर्स 2026 सेलिब्रेशन प्लेसेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन एलिमिनेटिंग हैजर्डस मैनुअल scavenging through modern technology.
0: और इस पहल को सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय मिलकर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के जरिए लागू करते हैं।
1: In fact, Priyanka, a major highlight this year is the main celebration at Rabindra Sadan in Kolkata alongside the Divya Kala Mela, while urban local bodies across the country are also organizing awareness programs and events.
0: और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बदलाव का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारी सोच बदलने के बारे में भी है।
1: वेरी ट्रू। रिस्पेक्ट बिगिंस विथ रिकॉग्निशन। सैनिटेशन वर्कर्स डिजर्व एप्रिसिएशन नॉट जस्ट ऑन वन डे बट एवरी सिंगल डे।
0: हम अपने सभी सुनने वालों को ये कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप अपने पड़ोस में किसी सफाई कर्मचारी को देखेंगे तो क्या आप उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देंगे? और देना भी चाहिए, नमस्ते जैसे इस योजना का नाम है, हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद करना चाहिए।
1: Right, you said, Priyanka, they are the unsung heroes of public health, protecting communities from disease outbreaks by managing our waste. A small gesture of respect can go a long way. After all, they work every day to ensure that our homes, streets, schools and cities remain clean and safe.
0: बिल्कुल, नागरिकों के तौर पर हम भी साफ सफाई बनाए रखकर, कचरे का जिम्मेदारी से निपटान करके और सुरक्षित साफ सफाई के तरीकों को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करके योगदान दे सकते हैं।
1: एंड बिफोर वी साइन ऑफ, लेट्स रिमेम्बर दैट अ क्लीन नेशन इज बिल्ट नॉट ओनली थ्रू पॉलिसीज एंड मशीन्स बट ऑल्सो थ्रू द डेडिकेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स हु सर्व serve with commitment every single day.
0: बिल्कुल, और एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे कि एक साफ सुथरा शहर सरकार से नहीं बल्कि हम में से हर एक व्यक्ति से शुरू होता है.
1: You said it right, Priyanka. We can all make a difference by avoiding littering, using dustbins, segregating wet and dry waste, reducing single-use plastic, and keeping our streets and parks and neighborhoods clean.
0: और अगर आपको कूड़ेदान भरे हुए या गंदगी दिखे तो उन्हें नजरअंदाज न करें. इस समस्या की जानकारी अपने स्थानीय नगर प्रशासन को दें. एक जिम्मेदार कदम कई और लोगों को प्रेरित कर सकता है.
1: And let's also remember to respect the hard work of our sanitation workers. The best way to thank them is by ensuring we don't create unnecessary waste or litter in public places.
0: और हम सब मिलकर रोजाना जो छोटी छोटी कोशिशें करते हैं उनसे सड़कें साफ सुथरी, समुदाय ज्यादा सेहतमंद और भविष्य ज्यादा हरा भरा हो सकता है.
1: Yeah, so we should keep our surroundings clean.
0: जी हाँ, साफ सुथरा हमें रखना चाहिए और सभी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं हमारे आसपास उनका धन्यवाद करना चाहिए. इस नमस्ते दिवस पर आइए हम इन गुमनाम नायकों को सलाम करें और एक ऐसे सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक स्वच्छता तंत्र को बनाने के अपने संकल्प को दोहराएं जहाँ हर कर्मचारी का सम्मान हो, उसे सुरक्षा मिले और वो सशक्त बने.
1: So stay informed, stay responsible. And always value those who make our communities healthier and cleaner.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जुड़ने का.
1: So let's begin with IndiHat. A celebration of India's rich handloom and handicraft heritage is being organized at the National Crafts Museum and Hastkala Academy in New Delhi. The festival features handcrafted and hand-woven products created by 48 artisans and weavers and 12 design-led handicraft and handloom brands from NIFT alumni. The carnival is being held till the 19th of this month. A report.
2: The special initiative has been thoughtfully curated by the National Institute of Fashion Technology to present India's finest craftsmanship in a contemporary and engaging manner. The crafts on display include gulabi meenakari, stone inlay, dokra metal craft, musical instruments, manuscript painting, bone inlay on wood, ustakala, pichwai art, sozni embroidery, malela clay craft, blue pottery of Jaipur, silver filigree and sherial painting. Visitors will also have the opportunity to witness live demonstrations of traditional craft techniques, offering an immersive experience of India's centuries-old craftsmanship. The event is interwoven with BharatText 2026, India's largest global textile event, which will be held at Bharat Mandapam from today till 17th of July. IndiHat is designed to showcase India's traditional artistry to an international audience. It aligns with the objectives of Atmanirbhar Bharat and Vocal for Local campaigns. With Aman Yadav, Soumya Sharan for Parikrama.
0: अनुजा, हमारे देश के जो कोने कोने की जो पारंपरिक विरासत है एक छत के नीचे जब मिलती है तो मन करता है जल्दी से जाया जाए और खूब सारी शॉपिंग करके उसको बटोरा जाए.
1: या दिस साउंड्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. यू मस्ट गो.
0: वी ऑल मस्ट गो. ठीक है, जाना चाहिए.
1: मूविंग ऑन प्रियंका, इंडियन स्टेट्स एंड देयर टेम्पल्स रिचुअल्स वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द रीजन, द लोकल ट्रेडिशंस एंड द प्रिजाइडिंग डेटी देयर. But every temple has its own unique flavor, and today's reports from different states and regions gives us different flavors of our culture and tradition through the puja and the
0: rituals or jo hum
1: the temples there.
0: Temples.
1: So where are we beginning with?
0: सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की, जो दो दिन बाद शुरू हो रही है. पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज है भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन हो रहा है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है. क्या खास हो रहा है अपने संवाददाता प्रकाश दास से जानते हैं.
3: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में

0: आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: And now from Orissa to a temple, a ritual of Meghalaya in the northeast area. Baidin Klam, the annual festival of the Panar, also called the Jantia community of Meghalaya, was celebrated earlier this month in Jowai town. We have a report on this.
2: Mainly celebrated by the followers of the Niyamtre, which is an indigenous faith, the 4 days of cultural celebrations offered prayers for health, prosperity and a bountiful harvest, while symbolically driving away disease and evil. According to the Niyamtre faith, the festival is also a symbolic reaffirmation of the community's resolve to overcome social evils and preserve harmony and righteousness. This year's celebrations witnessed thousands of devotees and visitors converging on Jowai to take part in the Baidin Klam festival. The most striking spectacle was the procession of the beautifully crafted rods, which are towering ceremonial structures made of bamboo and wood. The rods are carried through the town amid the rhythmic beats of traditional drums, and later they are immersed at the sacred pool, marking the culmination of the festivities. Another major attraction was the traditional wooden ball game played between teams representing different localities. The contest, which is deeply rooted in Jaintia tradition, is believed to herald prosperity and a good harvest for the winners. For Parikrama, Anumita Das, Akashvani, Shillong.
1: And now from Shillong to Andhra Pradesh, where the sacred cleansing ceremony Koil Alvar Tirumanjanam was performed with traditional Vedic rituals at the Tirumala Sri Venkateshwar temple today, which is also known as the Balaji temple there. And ahead of the annual Salakatla Anivara Asthanam festival, which is to be observed on the 17th of July.
3: अनुजा सलाकाटला अनिवारा स्थानम जो है प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में मनाया जाने वाला ये एक प्रमुख वार्षिक उत्सव है और ये त्योहार हर साल जुलाई के महीने में दक्षिणायन की शुरुआत पर विशेष रूप से संक्रांति के दिन मनाया जाता है।
1: जी,
3: तो आइए इस पर हमारी संवाददाता से जानते हैं क्या खास रिपोर्ट है।
4: In temple tradition, Koil means holy shrine, Alvar means devotee, and Tirumanjanam refers to cleansing with aromatic ingredients. The Koil Alvar Tirumanjanam ritual is conducted 4 times every year before the major festivals of Ugadi, Anivara Asthanam, Brahmotsavam, and Vaikuntha Ekadasi to purify the temple before these important occasions. As part of the ceremony, the entire temple premises were thoroughly washed and cleansed with water. The purification covered the temple from the Ananda Nilayam to the Bangaru Akili. Besides the subsidiary shrines, temple corridors, kitchen, walls, ceilings and all articles used for daily worship. During the ritual, the main idol of Lord Venkateshwara was completely covered with a cloth. After the cleansing, priests sprinkle a sacred fragrant mixture prepared with sandalwood powder, turmeric, kasturi, saffron, camphor and other aromatic ingredients throughout the temple. Later, special prayers and naivedyam were offered as per temple tradition. Darshan for devotees resumed after the ceremony. Allu Murli for Parikrama, Akashvani News, Vijayawada.
3: अब अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं अनुजा। इंडस्ट्रियल जो दुर्घटनाएं होती हैं और जो वैश्विक टकराव है उनकी वजह से तेल के रिसाव की जो घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है असर पड़ रहा है। ऐसे में नदियों, झीलों और समुद्री तंत्र की सुरक्षा करना पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक तेल से दूषित पानी को साफ करने के लिए शाश्वत और पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही पर्यावरण अनुकूल जो तकनीक है उसे विकसित किया है। अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपनी संवाददाता माधवी का।
5: पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT के वैज्ञानिकों ने तेल से प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए पर्यावरण अनुकूल शैवाल आधारित यानी कि अल्गी बेस्ड तकनीक विकसित की है। DIAT में प्रोफेसर बाल सुब्रमण्यन के नेतृत्व में यह प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के बारे में आकाशवाणी को अधिक जानकारी देते हुए प्रोफेसर बाल सुब्रमण्यन ने कहा,
6: इनिशियल एक्सपेरिमेंट में जब डीजल और ऑयल को मिक्स करके हमने अब्सॉर्प्शन स्टडी किया था, उसमें हमको 20 मिनट में 10-20% का अब्सॉर्प्शन ऑफ ऑयल मिला था। देन हमने दो तीन

0: ब्रिटिश काल के दौरान महान शिक्षाविद, समाज सुधारक, चिंतक गोपाल कृष्ण आगरकर का आज ही के दिन 1856 को महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। वे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, न्यू इंग्लिश स्कूल जैसे शिक्षा संस्थानों के सह संस्थापक रहे। लोकमान्य तिलक की केसरी पत्रिका के वे पहले संपादक भी बने। उसके बाद उन्होंने सुधारक नाम से अपनी अलग पत्रिका शुरू की। विधवा विवाह के समर्थक गोपाल कृष्ण आगरकर ने जातिवाद के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने का काम अपने लेखन और विचारों के माध्यम से किया। मात्र 39 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया था।
1: And we also pay tribute to B. Saroja Devi, the legendary Indian actress widely regarded as the first female superstar of South Indian cinema, passed away on 14th of July in the year 2025 at the age of 87. Over a prolific seven-decade career, she starred in over 200 films across Kannada, Tamil, Telugu and Hindi languages, earning the titles Abhinay Saraswati. And she worked in Telugu, Tamil, Kannada cinema, and she had many awards and accolades to her name. Her immense contribution to the arts were recognized at the highest levels by Padma Bhushan, Padma Shri and Kalaimamani Award from the state of Tamil Nadu, as well as the honorary doctorate from Bangalore University.

और गुजरे ज़माने की एक जानी मानी अदाकारा को याद करते हैं, लीला चिटनिस, जिन्होंने 2003 में इस दुनिया को अलविदा कहा था। हालांकि बड़ी दीदी, मझली दीदी, पुनर्मिलन, असली नकली जैसी अधिकतर फिल्मों में उन्होंने माँ के किरदार को या निभाया, लेकिन फिल्मी करियर में शुरुआत में उन्होंने कई फिल्मों में बतौर मुख्य नायिका का काम किया, खासकर अशोक कुमार के साथ, जैसे कंगन, बंधन, झूला, और उन्हीं पर फिल्माया गया ये खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं।

0: ढेले। And today we also pay tribute to the legendary Indian music composer Madan Mohan Kohli, widely revered as the Ghazal King of Hindi cinema. Known for his velvet-dipped, timeless melodies, he seamlessly blended Indian classical music with cinematic expression to create enduring classics alongside iconic playback singers like Lata Mangeshkar, Mohammed Rafi and Talat Mehmood. The maestro of melody, Madan Mohan's compositions are celebrated for their rich harmonies, deep emotional resonance and sophisticated use of semi-classical roots.
1: बिल्कुल, मदन मोहन ने फिल्मी जगत को संगीत के बेहतरीन उपहार दिए और काफी समय तक वे आकाशवाणी के साथ भी जुड़े रहे। बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म 1950 में आई आंखें थी, अंजाम, मेमसाब, भाई भाई, चिराग, अनपढ़, हीर रांझा जैसी फिल्मों के गीतों को उन्होंने अपनी धुनों से सजाया।
0: Yes, so we have made a medley of his iconic masterpieces.

फिल्म दस्तक के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया और बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि उन्होंने 1948 में आई फिल्म शहीद और उसके बाद मुनीम जी जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। और श्रोताओं, अब समय कह रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए, इन खूबसूरत गीतों के साथ आपको हमने मंत्रमुग्ध किया, ढेर सारी जानकारी दी। अब इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। प्रियंका अरोड़ा और अनुजा कुमार को दीजिए इजाजत, कार्यक्रम यही संपन्न करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय दो जहाजों एमटी अलबहिया और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्य चालक दल में 30 भारतीय नाविक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई और एक घायल है। एमटी मोम्बासा में सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह विश्वभर के लोगों की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हैं। इससे पहले अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले रखे, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावों को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने का साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब तक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर वर्ष इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विद्यार्थी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में मूसलाधार बारिश के दौरान एक मकान की छत गिरने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 12 अन्य लोग घायल हैं। यह घटना कल रात कोहाट जिले के बाहरी इलाके में स्थित मालिंगिन गांव में हुई। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 82 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
3: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry.
3: We had issued a statement post-summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter that these attacks which we condemn must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia.
2: In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. Railways Minister Ashwini Vaishnav has announced a major policy reform that allows fertilizers to be transported in specially designed containers instead of traditional covered box wagons. Briefing media in New Delhi today on the reforms aimed at modernizing Indian railways, Mr. Vaishnav also announced a major reform in fly ash transportation, shifting movement from open railway wagons to specially designed containers. The minister said the new container-based system will reduce dust pollution during loading, transport and storage. He also announced a unified license system under container policy. Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution Prahlad Joshi today chaired a review meeting to strengthen the country's food grain storage ecosystem in New Delhi. In a social media post, Mr. Joshi said the discussions focused on addressing emerging challenges in food grain management, including regional storage imbalances, surplus stock management, optimization of storage capacity, and the need to revise storage norms in line with current procurement trends. Union Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya, highlighted that artificial intelligence can effectively enhance the skills of youth. Speaking as the chief guest at the BRICS Trade Union Forum Summit in Hyderabad, he emphasized the government's numerous social security initiatives and discussed various programs conducted under the Skill India mission. Benchmark domestic equity indices ended around 0.7% lower today. The Sensex fell 561 points to close at 77,055. The Nifty declined 159 points to settle at 24,052. In cricket, England were 89 for 5 in 19 overs against India in the first of the three-match ODI series at Birmingham when reports last came in. Earlier, England won the toss and opted to bat first. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Texas in US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France will look to book their place in third consecutive FIFA World Cup final. Spain, on the other hand, will aim to advance into their first World Cup final since lifting the trophy in the year 2010. And that is the end of this news bulletin.

गाते गुनगुनाते में आज हम लाए हैं आपके लिए 80 के दशक के गीत। सिर्फ गीत नहीं, बेहतरीन गीतों के साथ उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी आप सभी के लिए सिर्फ आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां मैं आज आपका साथ देने आई हूं अपराजिता एक बार फिर। जी हां, हम मिल चुके हैं मनभावन में और एक बार फिर मिल रहे हैं गाते गुनगुनाते में। तो जैसा सफर हमारा मनभावन का रहा, उससे भी ज्यादा मजेदार सफर ये होने वाला है, क्योंकि इसमें आप हमें जवाब लिखकर भेजते हैं हमारे पूछे गए सवालों का। तो आप इससे पहले कि अपने आंसर हमें टाइप करके भेजें, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत कालिया फिल्म से।

0: तो भाई आपके लिए जो पहला सवाल आज हम लेके आए हैं वो है 1989 की फिल्म से, जिसकी कहानी लिखी जैनेन्द्र जैन ने। जी हाँ, ये जो फिल्म थी ये तमिल फिल्म वंडी चक्करम पर आधारित थी। फिल्म को अपने गीतों से सजाया इंदिवर ने और फिल्म में संगीत दिया बप्पी लहरी ने। अगर फिल्म की सक्सेस की बात करें तो फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही, बहुत पसंद की लोगों ने, और गाने बप्पी लहरी के हों तो फिर गाने भी हमेशा लोगों को याद रहते हैं। जैसे फिल्म के रिलीज के समय पर ये गाने जो थे वो लोगों ने पसंद किए, ऐसे ही ये गाने आज भी उतने ही जो है याद रहते हैं, जहन में रहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे अभी ये गाना सुना है। इतने बढ़िया लोगों को ये गाने लगे। तो अगर आपने पहचान लिया है फिल्म का नाम तो आपको लिखकर भेजना है ये नाम हमारे ईमेल आईडी पर fmgoldairdelhi@gmail.com। जी हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि पहले दूसरे तीसरे में, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लिसनर्स में आपका नाम आए जिन्होंने सबसे पहले हमें आंसर लिखकर भेजा है, तो उसके लिए सब्जेक्ट कॉलम में ही आप फिल्म का नाम लिख दें तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा। मैं आपको सुनवा रही हूं एक और बहुत ही खूबसूरत गाना गाते गुनगुनाते में। तब तक आप लिख भेजिए अपने जवाब मुझे।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
0: ऐसा क्या?
1: हाँ।

जी, तो आपके जवाब हम तक पहुंच गए हैं। देखते हैं किसने पहला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है। तो सवाल पूछा था हमने आपसे एक 80s की, लेट 80s कह सकते हैं, की फिल्म से, और पहला सही जवाब जो पहुंचता है वो ललित कुमार ने लिखकर भेजा है नोएडा से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा सही जवाब लिखने वाले हैं प्रेम प्रतिज्ञा, यह है फिल्म का नाम। वैशाली गिरीश बम ने वडोदरा से दूसरा सही जवाब लिखकर भेजा। और तीसरा जवाब देने वाले जो हैं वो हैं संतोष सक्सेना। और आपने बिल्कुल सही सही जवाब लिखकर भेजे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद सही जवाब लिखने वालों को। और वैसे बहुत से लोगों ने कालिया क्यों लिखकर भेजा, अब भाई गाना सुनाकर मैं कब फिल्म का नाम पूछती हूँ चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आपने लेट ट्यून इन किया हो। हम सवाल पूछते हैं आपसे, कुछ टिप्स देते हैं, कुछ क्लूज देते हैं, कुछ ट्रिविया बताते हैं एक फिल्म से जुड़ा, या उसके गानों से, या उसकी स्टोरी से जुड़ा, और फिर आपको जो है वो फिल्म का नाम पहचानना होता है, उसका आंसर हमें लिखकर भेजना होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कुछ लोगों ने कालिया फिल्म भी लिखकर भेजी, क्योंकि पहला गाना हमने कालिया फिल्म से सुनाया था तो अच्छा, मुझे लग रहा है कि सिर्फ यही तीन जवाब आए हैं भाई, ये तो कमाल की बात हो गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं और उसके बाद फोर्थ कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, अगला सवाल पूछते हैं। क्या पता अब आप फिल्म को ज्यादा पहचान पाएं, या फिर हो सकता है कि फिल्म आपने देखी हो। तो अभी जिस फिल्म का मैंने जिक्र किया वो है प्रेम प्रतिज्ञा, जिसे डायरेक्ट किया बापू ने, और इस फिल्म से आपको गाना भी जरूर सुनवाएंगे आशा जी और बप्पी लहरी की आवाज में। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि हमारा दस्तूर ये है कि हम अगला सवाल पूछेंगे ताकि एक चेन बनी रहे सवाल जवाब की, और जब तक आप इसका जो है आंसर ढूंढें तब तक मैं आपको पहले वाले जवाब का यानी कि फिल्म से गाना सुनवाऊं। तो एक और 80s की जो फिल्म है वो ढूंढ कर लाए हैं हम आपके लिए, जिसमें अभिनय किया फारूक शेख ने। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि फारूक अपने दो दोस्तों के साथ एक कमरा शेयर करते हैं। फारूक जो हैं तीनों में से सबसे पढ़ाकू हैं, जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, पर जो उनके दोस्त हैं उनकी दिलचस्पी कुछ और ही है। अगर आप ये फिल्म जो है इसे पहचान चुके हैं, जिसमें फारूक के साथ फीमेल लीड में वही हीरोइन है जिनके साथ दर्शकों को इनकी जोड़ी स्क्रीन पर बहुत पसंद आई, तो ये मैंने आपको नाम नहीं बताया है अदाकारा का, लीड एक्ट्रेस का, लेकिन आपको गेस करना है। तो इनके साथ वही हीरोइन है जिनके साथ फारूक शेख को देखना जो है व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया, इनकी जोड़ी बहुत पसंद आती थी बड़े पर्दे पर। तो अगर आपने फिल्म को पहचान लिया है और अगर अभी ट्यून इन किया है एफएम गोल्ड, तो मैं आपको एक बार फिर से अपना ईमेल आईडी बता देती हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। इसमें आपको जो है फिल्म का नाम टाइप करके जल्दी से सेंड कर देना है। तब तक हम प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म, जो पहला सवाल हमने पूछा उसका सही जवाब है, उस फिल्म से मैं आपको गाना सुनवा रही हूँ बप्पी दा और आशा जी की आवाज में। प्यार कभी कम नहीं करना।

0: वैसे आपके जवाब हम तक पहुंच गए हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, उसके बाद वापस आकर जानेंगे किस किसने सबसे पहले सही जवाब लिखकर भेजा है और फर्स्ट सेकंड थर्ड इस क्वेश्चन के लिए कौन कौन आए हैं। तो बस थोड़ा सा इंतजार, हम यूं गए और यूं वापस आए।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

मेल के जरिए, वो है अमित नरूला का। उसके बाद भारती ने भी बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। तीसरे नंबर पर नागेंद्र ठक्कर हैं। तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद भी इस सवाल में बहुत लोगों ने सही जवाब लिखकर भेजे हैं। तो रोहित ठाकुर हैं गुरुग्राम से, आपने बिल्कुल सही पहचाना। गुफरान है नोएडा से, और ललित कुमार ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, जवाब लिखकर भेज दिया है। पंकज मुहोड हैं, प्रफुल हैं आपके साथ, और आपने अमरावती से बिल्कुल सही सही पहचान लिया है। नवीन भाटिया साहब हैं नई दिल्ली से, अजीत भावसर हैं वीरमगाम गुजरात से, और प्रणव शिंदे, संतोष सक्सेना, गोविंद मेहरा, राजा आर, गिरीश बम, वैशाली बम वडोदरा से, जगदीश बजाज विकासपुरी दिल्ली से, इदरिस सैफी हैं मुल्ला हेड़ा गांव एनसीआर से, जहानवी सही जवाब नहीं है आपका, फारूक शेख पढ़कर मैंने आपका नाम शामिल किया, हालांकि आपने लिखा कथा फिल्म की बात नहीं की मैंने आज, और उग्रसेन यादव हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना है, और जयंती नाशिकर ने चश्मे बद्दूर, फारूक और दीप्ति नवल बिल्कुल सही लिखकर भेजा जवाब। आशीष मिश्रा हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना है, और सही जवाब देने वालों में नाम है बबलेश पवार और मोहम्मद सईद अब्बासी का भी। तो चश्मे बद्दूर है वो फिल्म जिसका मैंने जिक्र किया, फारूक शेख के साथ दीप्ति नवल ने इस फिल्म में एक्टिंग की, और जैसा मैंने कहा कि इन दोनों को एक साथ देखना दर्शकों को बहुत पसंद था, और ये कई फिल्मों में एक साथ दिखे भी। तो इन्होंने इस फिल्म के अलावा साथ साथ कथा, जो हमारे एक लिसनर ने लिखकर भी भेजा कथा, और रंग बिरंगी, ऐसी फिल्मों में भी एक साथ काम किया। इस जोड़ी को बहुत पसंद किया गया, जैसे कई बार हम फिल्में लेकर आते हैं कुछ ऐसी जोड़ियों की जिन्होंने एक साथ बहुत सारी फिल्में की होती हैं, और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छा, जो कह सकते हैं आपकी एक्टिंग के रूप में एक जो तोहफा है वो दिया है। फिलहाल हम चश्मे बद्दूर से आपको बिल्कुल जो है वो एक गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले अगला सवाल जो है वो आपसे पूछ लेते हैं। अगला सवाल जो है वो 1980 में आई एक मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म से है, जिसके निर्देशक रहे राज खोसला साहब। ये फिल्म दो दोस्तों की कहानी है, जिसमें एक दोस्त जो है वो पुलिस में काम करता है, या पुलिस वाला है आप कह सकते हैं, और दूसरा जो दोस्त है वो वकील है। दोनों को एक ही लड़की पसंद आती है, एक ही लड़की से वो प्यार करने लगते हैं, और बाद में ये कहानी कैसे घूमती है, क्या होता है, इसी के इर्द गिर्द ये फिल्म जो है ये बनी है। तो मैं आपको एक और हिंट देना चाहती हूं, वैसे मुझे लगता है हिंट जितने ज्यादा मैं देती हूं ना उतने ज्यादा सही जवाब आते हैं हमारे पास, तो इस फिल्म के लिए दे देते हैं। इसमें जो दो हीरो हैं उनके नाम हैं विजय और रवि। अगर आप फिल्म पहचान चुके हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको फिल्म का नाम जो है वो हमें लिखकर भेज देना है, कहां, fmgoldaiardelhi@gmail.com पर, और सब्जेक्ट कॉलम में अगर आप नाम लिखते हैं तो आपके जवाब हमारे पास आपके और दोस्तों से थोड़ा पहले पहुंच जाता है, यानी कि बॉडी ऑफ द कॉपी जो ईमेल की होती है उसे छोड़कर सीधा सब्जेक्ट में आप नाम लिख दें और इसे सेंड कर दें हमारे ईमेल आईडी पर। चश्मे बद्दूर से सुनवा रही हूं आपको एक खूबसूरत गाना, आइए मिलकर सुनते हैं।

बिल्कुल, ये सफर चल रहा है आपके जवाबों के साथ भी और हमारे सवालों के साथ भी। तो जानते हैं कि किसने पहले सही जवाब लिखकर भेजा है। सबसे पहला सही जवाब जो पहुंचता है

जी, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने सही सही पहचान लिया है, और पहला सही जवाब जो है वो हमारे पास पहुंचता है नवीन भाटिया साहब, मोतीनगर नई दिल्ली से, बिल्कुल सही बताते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं नागेंद्र ठक्कर और मोहम्मद सईद अब्बासी बुलंदशहर से, बिल्कुल सही सही जवाब लिखकर भेजते हैं। इसके बाद भी सही जवाब आए हैं। अमित नरूला हैं हमारे साथ, इदरिस सैफी हैं, राजेश मानकलाल शाह हैं आपके साथ, परिमल झा हैं, अजीत भावसर हैं विरमगाम से, तुषार हांडा हैं हमारे साथ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, और वैशाली गिरीश बम वडोदरा से बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं। संतोष सक्सेना मुंबई से सही जवाब लिखकर बताते हैं, सही जवाब है दोस्ताना। प्रणव शिंदे, जगदीश बजाज, बबलेश पवार गांधी चौक बाड़मेर से बताते हैं सही जवाब। डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से हमारे साथ हैं सही जवाब के साथ। दिनेश चोपड़ा, निरंजन भालेराव और ललित कुमार नोएडा से बिल्कुल सही सही बताते हैं। उग्रसेन यादव, रंजीत कुमार भी बिल्कुल सही बताते हैं, और आप अररिया बिहार से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं। वीरेंद्र शर्मा है हमारे साथ, आपने भी बिल्कुल सही बताया। राजकोट से जैमिन कुमार जैन का आंसर आता है बिल्कुल सही, और जयंती नाशिकार, आपने भी बिल्कुल सही पहचाना। दोस्ताना फिल्म जिसका हमने जिक्र किया, और अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा, इन दोनों ने इस फिल्म में एक्टिंग की। अमिताभ ने विजय वर्मा का रोल अदा किया, और शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो रवि कपूर के किरदार में नजर आए। इनके साथ जीनत अमान रही, शीतल साहनी उनका नाम रहा, और प्रेम चोपड़ा ने भी अपनी एक्टिंग से इस फिल्म को जो है चार चांद लगाए। डागा का किरदार निभाया उन्होंने इसमें। और आपको फिल्म से गाना सुनाने का समय आ गया है, लेकिन आप जानते हैं गाना ऐसे नहीं सुना सकते, है ना? अगला सवाल पूछना जरूरी है। तो अगला जो सवाल है आपके लिए, वो 80s में ही आई एक फिल्म जिसे डायरेक्ट किया मंसूर खान ने। इस फिल्म की खूबसूरती का अंदाजा आप इसे मिलने वाले अवार्ड से लगा सकते हैं। इस फिल्म को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इतना ही नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी इस फिल्म ने 8 पुरस्कार, जी हाँ 8 अवार्ड्स जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, ये सभी शामिल हैं। अगर आपने फिल्म का नाम पहचान लिया है तो आपको जल्दी से जवाब लिखकर भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। तब तक मैं आपको सुनवा रही हूं दोस्ताना फिल्म से एक गाना। वैसे इस फिल्म के सभी गाने बढ़िया हैं, ये वाला गाना मैं आप तक पहुंचा रही हूं, आप पहचान चुके होंगे, किशोरदा की आवाज में, दिल लगी ने दी हवा, और आशा जी की आवाज भी है इसमें।

0: सही जवाब आप लोगों के हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। पहला सही जवाब लिखकर भेजने वाले हैं नागेंद्र ठक्कर, दूसरे नंबर पर भेजते हैं नवीन भाटिया साहब और तीसरे पर आते हैं मुक्ता बरगोटा। तीनों को ही बहुत बहुत बधाई सही जवाब टाइम पर यानी कि सबसे पहले देने के लिए। प्रणव शिंदे भी सही जवाब बताते हैं, इद्रिस सैफी हैं, ललित कुमार भी सही जवाब लिखकर भेजते हैं, अजीत भावसर, जहानवी यडवाड़, संतोष सक्सेना, जगदीश बजाज और सही जवाब देने वालों में हैं जैमिन कुमार जैन, गिरीश बम, वैशाली बम वडोदरा से, राजेश माणकलाल शाह, मोहम्मद सईद अब्बासी, पवन के कसेरा और डीबी राणा, बबलेश पवार, उग्रसेन यादव, वीरेंद्र शर्मा, गिरीश बम, दिशा भटनागर, वीरेंद्र शर्मा, मुझे लगता है आपने दो बार मैसेज भेज दिया है, और रोहित ठाकुर गुरुग्राम से। आप सभी ने बिल्कुल सही सही पहचाना है और कयामत से कयामत तक इसमें आमिर खान और जूही चावला ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की और इस फिल्म से हम आपको गाना भी सुनवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक

भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ आप सबको छोड़े जा रही हूँ। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस गाने के बाद आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
1: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उस सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पे जो भी हमला हुआ है, वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers, among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry.
1: We had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter that these attacks must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia.
2: Responding to a question on protests in POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. He pointed out that rather than addressing the legitimate grievances of the local populace, the Pakistani state has responded with extreme police brutality and deploying lethal force against unarmed civilians that has resulted in tragic fatalities. He said New Delhi expects the international community to hold Pakistan fully accountable for these abuses and misdeeds. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The Supreme Court today agreed to hear the Bhojshala dispute in Dhar district of Madhya Pradesh on a day-to-day basis to resolve the issue. However, the bench comprising Chief Justice of India, Surya Kant, Justice Joy Mallya Bakshi and Justice V. Mohana declined the petitioner's request for an interim order restoring the status quo ante under which Muslims were permitted to offer namaz on Fridays alongside Hindu worship on designated days. The bench directed the state to make available a separate open space adjacent to the subject site to the Muslim site for offering namaz on Fridays between 1 p.m. and 3 p.m. The bench clarified that this arrangement is ad hoc in nature, subject to the final outcome of the matter. Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth level officers, BLOs, will now visit house to house in both the states till 24th of this month. In cricket, England were 162 for 6 in 33 overs against India in the first of the three-match ODI series at Birmingham when reports last came in. Earlier, England won the toss and opted to bat first. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. The

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज के कार्यक्रम का विषय है भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। भारत का वस्त्र और परिधान उद्योग लंबे समय से देश की विनिर्माण क्षमता का केंद्र रहा है। वस्त्र व्यापार में भी भारत ने अपनी एक सशक्त पहचान बनाई है, लेकिन बदलती वैश्विक प्राथमिकताओं के बीच अब केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन भी प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। इसी दिशा में ऑर्गेनिक फाइबर, सुरक्षित रसायनों के उपयोग, चक्रीय उत्पादन, वस्त्र अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, इको लेबलिंग और ट्रेसेबिलिटी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र आयोजन भारत टेक्स 2026 का शुभारंभ हुआ। आज केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2026 का शुभारंभ किया। 14 से 17 जुलाई तक होने वाला भारत टेक्स 2026 भारत की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक वैश्विक मंच पर एक साथ ला रहा है। आइए अब सुनते हैं कि इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा।
2: 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और 2025 में आकर के भारत टेक्स दुनिया का टेक्सटाइल का बड़ा इवेंट्स बन गया। इस बार 140 कंट्रीज के लोग आएंगे, ऐसी मेरी सूचना है। कई हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर मिले छोटे छोटे जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, उन्हें एक एक्सपोर्ट का अवसर मिला। यही कारण है कि आज एक्सपोर्ट में कई तरह के उछाल आए। भारत को वो झटका नहीं लगा, अन्य देशों में डाइवर्सिफाई किया और ये भारत टैक्स का कमाल था।
1: आज के विश्लेषण कार्यक्रम में जानेंगे कि वस्त्र क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, भारत की टेक्सटाइल वैल्यू चेन में ये किस तरह आकार ले रही है और भविष्य में ये बदलाव देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए कितने नए अवसर लेकर आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के वस्त्र उद्योग की और समझते हैं कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी इस क्षेत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण बनती जा रही है।
3: भारत का वस्त्र और परिधान उद्योग लंबे समय से देश की विनिर्माण क्षमता का एक प्रमुख आधार रहा है। यही नहीं, भारत आज दुनिया का छठा सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान निर्यातक है और वैश्विक निर्यात में उसकी हिस्सेदारी लगभग 4% है। ये क्षेत्र लगभग 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिक शामिल हैं। लेकिन दूसरी ओर वस्त्र उद्योग संसाधनों की खपत के लिहाज से भी एक बड़ा क्षेत्र है। उत्पादन प्रक्रिया में पानी, ऊर्जा और रसायनों का व्यापक उपयोग होता है। साथ ही उत्पादन और उपभोग के बाद बड़ी मात्रा में वस्त्र अपशिष्ट भी उत्पन्न होता है। यदि इस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन न किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। यहीं से चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका मूल उद्देश्य है उत्पादन और उपभोग की ऐसी व्यवस्था विकसित करना जिसमें वस्तुओं और संसाधनों का अधिकतम पुनः उपयोग हो, पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिले और अपशिष्ट को न्यूनतम किया जा सके। इससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होता है बल्कि ऊर्जा और पानी की बचत के साथ उत्पादन भी अधिक टिकाऊ बनता है। भारत की पारंपरिक वस्त्र संस्कृति में भी संसाधनों के पुनः उपयोग की सोच नई नहीं है। पुराने वस्त्रों का पुनः उपयोग, कतरनों से नए उत्पाद तैयार करना और स्थानीय स्तर पर पुनर्चक्रण जैसी परंपराएं लंबे समय से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। आज इन्हीं प्रयासों को आधुनिक तकनीक, नीतिगत समर्थन और वैश्विक गुणवत्ता मानकों के साथ

0: जोड़कर एक व्यापक चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी का स्वरूप दिया जा रहा है।
1: स्पष्ट है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में वस्त्र उद्योग के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था अब केवल एक पर्यावरणीय अवधारणा नहीं बल्कि आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता बनती जा रही है। लेकिन ये बदलाव जमीन पर किस तरह दिखाई दे रहा है? भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला में पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन का मॉडल किस प्रकार विकसित हो रहा है, आइए इस पर आधारित ये रिपोर्ट सुनते हैं।
2: भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला में सर्कुलर इकोनॉमी, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, संसाधनों की वापसी और आजीविका सृजन के रूप में तेजी से विकसित हो रही है। भारत की पहली नगर निगम आधारित वस्त्र रिकवरी सुविधा मुंबई के बेलापुर में स्थित है। यह सुविधा वस्त्र अपशिष्ट को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के अवसर के रूप में मान्यता देती है। पानीपत एक प्रमुख वस्त्र रिसाइकलिंग हब के रूप में भी उभरा है। एक विशिष्ट डाउनस्ट्रीम केंद्र के रूप में इसे अन्य क्लस्टरों से उपभोक्ता पूर्व वस्त्र अपशिष्ट का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। दिल्ली के मंगोलपुरी में स्थित कतरन बाजार दिखाता है कि कैसे अनौपचारिक नेटवर्क कपड़ा उद्योग में पुनर्चक्रण को बढ़ावा देते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े संग्रहकर्ता नोएडा, गुरुग्राम, मानेसर, जयपुर और दिल्ली से आने वाले ट्रकों से कतरन का कचरा इकट्ठा करते हैं।
1: इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी केवल एक अवधारणा नहीं रह गई है, लेकिन केवल स्थानीय पहल ही पर्याप्त नहीं है। आइए जानते हैं कि सरकार किस तरह विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से भारतीय वस्त्र उद्योग को हरित, आधुनिक तथा वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में काम कर रही है।
0: उद्योग में चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी केवल पुनर्चक्रण तक सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत उत्पादन के पहले चरण से होती है, यानी कपड़ा किन रेशों से बनेगा, उत्पादन में किन रसायनों का उपयोग होगा और पूरी प्रक्रिया पर्यावरण पर कितना प्रभाव डालेगी। इसी सोच के साथ सरकार जैविक और प्राकृतिक रेशों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यानी NPOP के माध्यम से प्रमाणित जैविक उत्पादों और जैविक कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं जूट आई केयर कार्यक्रम के जरिए किसानों को बेहतर बीज और वैज्ञानिक खेती की तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है। इसकी पहुंच अब 10 राज्यों के 289 ब्लॉकों तक हो चुकी है। इसके अलावा न्यू एज फाइबर मिशन और राष्ट्रीय फाइबर योजना के माध्यम से रेमी, सिसल और अलसी जैसे प्राकृतिक रेशों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्पादन प्रक्रिया को भी अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वस्त्र आपूर्ति श्रृंखला से खतरनाक रसायनों को हटाने की एक पायलट परियोजना देश के 8 औद्योगिक समूहों के 400 कारखानों और 4 फैशन हाउसों में लागू की जा रही है। इसी के साथ इको लेबलिंग, ट्रेसेबिलिटी और डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुरूप बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सतत विनिर्माण को गति देने के लिए पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्र पार्क विकसित किए जा रहे हैं। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन के 5F विजन पर आधारित ये पार्क आधुनिक टेक्सटाइल अवसंरचना के साथ साथ अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं से भी लैस होंगे। 7 पीएम मित्र पार्कों के विकास के लिए 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी गई है। वहीं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के माध्यम से उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुल मिलाकर इन पहलों का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि भारतीय वस्त्र उद्योग को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार, तकनीकी रूप से आधुनिक और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।
1: भारत का वस्त्र उद्योग केवल आर्थिक विकास का आधार नहीं बल्कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। सदियों से हमारे यहाँ वस्त्रों के पुनः उपयोग, मरम्मत और संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल की परंपरा रही है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया अलका सिंह ने। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनेंगे समाचार।

0: Welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं बाजार विशेष की खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह सिद्धार्थ कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: प्राची नमस्कार गुड इवनिंग अर्जुन
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स एट 24,052 Government releases the first index of services production for 19 subsectors and global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट सेंसेक्स 561 अंक लुढ़का निफ्टी 24,052 पर बंद हुआ केंद्र सरकार ने 19 सबसेक्टर के लिए सर्विस प्रोडक्शन का पहला सूचकांक जारी किया और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं अब आइए रुक करते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने यानी कि घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया देश के प्रमुख शेयर सूचकांक 0.7% की गिरावट के साथ बंद हुए सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 77,055 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 159 अंक लुढ़ककर 24,052 पर आ गया निफ्टी के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.5% की गिरावट आई और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 1% की गिरावट आई
0: Benchmark domestic equity indices ended around 0.7% lower today. Sensex fell by 561 points to close at 77,055, while Nifty declined 159 points to settle at 24,052. In the broader market on the National Stock Exchange, the Nifty Mid-Cap 100 Index slipped 0.44%, while the Nifty Small-Cap 100 Index fell nearly 1%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एचसीएल टेक लगभग 4.5%, इंडिगो 2.3% और बजाज फिनसर्व में 2.2% की गिरावट आई वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो भारती एयरटेल 1.5% से अधिक टीसीएस 0.8% और सनफार्मा में लगभग 0.5% की बढ़त हुई
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 25 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, mid-small private banks quality tilt dropped 1.92%, realty fell by 1.91% and PSU banks lost 1.79%. In contrast, utilities jumped 0.7%, metals rose by 0.63% and healthcare added 0.53%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 1,501 companies advanced, 2,737 companies declined and 195 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए पर बंद हुआ उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.10 पर कारोबार कर रहा था सिद्धार्थ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज का जलडमरू मध्य एक मछली के कांटे की तरह गले में फंसा हुआ है शायद इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि बाजार की प्रतिक्रिया इस तरह से है
2: नहीं प्राची आपने बिल्कुल ठीक कहा जब से मैं कहूंगा वेस्ट एशिया क्राइसिस जो शुरू हुई उसके बाद से जो बाजार में एक हम कह सकते हैं कि जो एक उथल पुथल या वॉलेटिलिटी बनी हुई है तो वो अभी भी कायम है और मुझे लगता है जो फिर से जो एक एग्रीमेंट हो गया था अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्रीमेंट हो गया 60 दिन का युद्ध विराम हुआ और ये हुआ कि उसके उस दौरान बातचीत करके एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा लेकिन शायद वो सब होता उससे पहले ही फिर से एक बार जो है स्थिति

0: खराब हो गई है और अमेरिका ने दोबारा जो है ईरान पे आक्रमण कर दिया है और ईरान भी डटा हुआ है और ईरान ने भी मतलब आज की डेट में अगर हम ये कहें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये कहा है कि अब उनकी तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिलहाल बंद है। ईरान ने तो अपनी तरफ से जो है रोक लगाई दी है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि संडे के बाद से जो आवाजाही है जो तेल के जो जहाज़ हैं या गैस या तेल के जो भी जहाज़ हैं तकरीबन हमने देखा है एक दो ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहां ईरान ने अटैक भी किया उसमें कुछ भारतीय भी हताहत हुए हैं और भारत ने इस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। तो मुझे लगता है और वही कारण है कि जो बाजार पे भी ये उसका इस अनिश्चितता इस इंस्टेबिलिटी का जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है।
1: जी सिद्धार्थ, पिछले कुछ हफ्तों में बाजार में हमने बढ़त देखने को मिली। अब क्योंकि माहौल थोड़ा सा अनिश्चित एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है तो उस हवाले से क्या आज और इन बीते कुछ सत्रों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, क्या आज भी हमें उसका प्रभाव मुनाफा वसूली का प्रभाव देखने को मिला है?
0: नहीं, देखिए जब ऐसा पीरियड होता है तो ऑब्वियसली लोग जिसको कहते हैं ना कि अपना पैक हंटिंग, मतलब अगर जो निवेशक है उसको ऐसे मौके आते हैं जब उसको लगता है कि मैं इस लेवल पे कुछ अपना जो है प्रॉफिट जो है बुक कर लूं और आगे शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा मैं बाजार में आऊंगा, तो शायद और बाजार में आप आते भी इसीलिए हैं क्योंकि हर व्यक्ति का जो निवेशक का एक एम होता है कि कहीं ना कहीं, तो वो एक कारण है। और मुझे लगता है ऐसी अनिश्चितता का जो माहौल है तो बाजार कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि रेंज बाउंड हो गया। और जब से वेस्ट एशिया, चूंकि अब तकरीबन जुलाई का मिड जुलाई में है तो कहीं ना कहीं ये बात भी तय है, आप चाहे रिजर्व बैंक की तरफ से जो उनके एस्टिमेट्स हो इस साल की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसमें भी उन्होंने भी उसको घटाया है और इन्फ्लेशन को लेकर सारी दुनिया में चिंता है, तो कहीं ना कहीं वो बाजार में भी कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। शायद इसलिए निवेशक इस स्टेज पे उनको लगता है कि शायद इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आगे दिखे, क्योंकि आप अमेरिका में भी देखेंगे तो ये एक डर बना हुआ है कि शायद वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स, वहाँ की फेड रिजर्व जब अभी इस महीने के अंत में वो बैठेगा तो शायद हो सकता है, तो इस सब का कहीं ना कहीं एक मार्केट पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है और शायद इस वजह से निवेशक शायद थोड़ा इस समय अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं।
2: Siddharth, clearly the inflationary impact was seen in the CPI figures for the month of May. Now you have the figures for the month of June. The wholesale price index figures have also been released and manufactured products are also seeing a hit in terms of a price increase. And that's clearly affecting consumers because of what's happening in the West Asia crisis. What is the strategy of the FIIs, FPIs? They've been the net sellers in the market today also to the tune of 3,062 crore rupees. DIIs once again, as it's always been the case, are holding fort, short covering 2,172 crore rupees. What would you advise a small investor in this market? Should they exit their position? Should they hold on? Because a lot of valuations which went up has suddenly come down by 20-25%, especially after Trump has reinstated the blockade on Iran and its ports, claiming that there should be a reimbursement of 20% of all cargo that is going through the Strait of Hormuz now for guarding it.
0: See, Arjun, answering your first question, what is the kind of strategy or what is the game plan by the FIIs or the FPIs? I would say if you look FIIs and or FPIs, we may call them, they had been exiting Indian market for a long time. And as of now also, as we talk, I think they continue to be net sellers, except in recent days, we can say we've seen FIIs returning in a big way in the Indian debt market. And also, if we were to look at the data for last week, I would say even in the equity market, we've seen FIIs returning on some days. So what I'm... But yes, and why this FII is returning in the Indian debt market in a big way? The surge in investments in the Indian debt market, basically, if you would recall, the government took certain steps to ward off the impact of the West Asia crisis, and we had brought down the withholding tax as well as the capital gains tax on the debt market. Mm-hmm. Plus, also you would see to ward off the impact on the rupee, we had also announced FCNR bonds, foreign currency bonds, by the NRIs, people based, Indians based outside. So I think all those has, all that has had a positive impact in last 15 days, last fortnight. Plus, coming to your question on the what should a small investor do, because as you said, some of the valuations which had gone up have also moderated, have come down. See, I think for a small investor, always the advice would be that even whenever you are investing, invest with for a medium to long term. But yes, and always these kind of situations where we have so much of uncertainty, and post West Asia, and I would not only restrict it to West Asia, I would say since Mr. Trump assumed office, I think there he's been unleashing uncertainty in the entire universe, in the entire world. So in these times of uncertainty, it is also an opportunity for any investor, be it a small investor or a long investor. So I would say pick your stocks and always have this mindset of investing for at least medium to long term, and by medium term to long term I would say 3 years to 5 years. So if that is, until unless you have that kind of outlook, I don't think you should be venturing into this market when things are so volatile.
2: What's the mindset in the metal space right now? In fact, Nifty Metal went up by 0.63%. There is a lot of rejig happening as far as the substitution is concerned, one metal for the other when it comes to using in manufactured products. For instance, aluminium in place of copper because of the valuation and the prices at which copper is sold vis-a-vis aluminium. So what would you say when you look at metal, and the other being pharmaceuticals and healthcare, which are seen as defensive stocks, they always tend to do well despite the market falling?
0: See, I think pharmaceutical and healthcare, I think as you rightly said, Arjun, are stocks which do not get impacted with these kind of situations or these kind of events unfolding. So I think that is one area which is always, I would say, something investors can always bank on. So, and coming to your answer, especially post West Asia, we have seen this trend of aluminium being replacing copper, as you rightly said. Plus also, if you look at the conventional rules are also being challenged in these times. If you look at gold or silver also, usually in times of crisis we have seen gold prices usually go up, but this is a peculiar situation we are seeing where gold prices are actually coming down. But yes, I think if these kind of the world is also kind of coming to terms with these kind of situations, so I think we need to for some time we need to keep a watch before taking a final call on these things.
1: Siddharth, hum agar auto sector ki baat kare, agar hum kshetra vishesh baat karte hain, to auto sector mein bhi aaj humne dekha ki giravat aayi hai. Kis tarike se ye jo vaishvik star par jo ek paridrishy abhi bana hua hai uska jo ek ripple effect hum domestic market mein dekhte hain aur phir hum ek sector specific mein dekhte hain, to ise aap kaise dekhte hain ki क्या इसके कारण रहे होंगे, क्या सेंटिमेंट होगा इसके पीछे?
0: नहीं प्राची, जहां तक ऑटो सेक्टर की बात है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से ऑटो सेक्टर पे वेस्ट एशिया क्राइसिस हो. ठीक है, मैं ये मानूंगा कि जहां तक तेल की कीमतें हैं उनमें बहुत इजाफा हुआ है और ऑटो सेक्टर का उससे एकदम एक सीधा जुड़ाव है. लेकिन उसके बावजूद अगर आप जो लास्ट फिगर्स रिलीज हुए थे ऑटोमोबाइल सेल्स के, वो उनमें जो तेजी है वो बरकरार है, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो चाहे वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, जो भी डोमेस्टिक मार्केट में जो बिक्री होती है गाड़ियों की, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, चाहे फोर व्हीलर्स हो, इवन कमर्शियल व्हीकल्स का जो डेटा है वो बहुत ही रोबस्ट है. तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन की गिरावट को हमको किसी तरह के ट्रेंड को मान के चलना चाहिए. और मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हिंदुस्तान बहुत अग्रणी देशों में से है और मुझे लगता है इसमें हमारी अभी भी जो मजबूती है वो पूरी तरह से जो है बरकरार है.
2: Aviation stocks have also taken a hit today because international travel might be impacted by what's happening in West Asia. Clearly, looking at travel and tourism and all the sectors connected to it have been affected. Why has realty fallen by 2%? Is it something to do with disposable income and investment income of IT professionals in the US?
0: Arjun, I would say as far as your answer to aviation stocks, obviously the answer is very straight. If whenever crude prices go up, obviously it has an impact on the ATF prices, aviation turbine. So there also, in at least for our domestic flyers, the government has taken a, has set a base price for ATF, and beyond that there is a subsidization by the government for the airline companies. But yes, obviously once the ATF prices goes up, obviously across the world, and also there is pressure on our own currency, obviously, so this will have an impact on the tour and travel companies. But coming to your other question, was on, you asked another question on besides aviation, you had a question.
2: Well, I said about realty, because it's realty. Also taken a hit, and it's all dependent upon incomes of those who are looking to buy, get into housing.
0: So, coming to realty, yes, what you said is that is one of the reasons. Plus, also there is a fear of interest rates going up. So if there is a fear of interest rates, as if you look at though RBI for our own central bank, yes, they have still maintained that they still maintain a, they haven't changed the stance, so they haven't given any indication of interest rate going up. And as of now, what the inflation for us remains within the band 2 to 4%, whatever the band 2 plus 4 plus minus 1 plus minus 2. So I think that is not an issue. Yes, for obviously if you look at the realty stocks on a bigger scale, yes, there is an impact because of that.
1: श्रोताओं, आइए अब रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. प्रमुख एशियाई शेयर बाजार आज मिले जुले रुख के साथ बंद हुए. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 1.3%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.7%, जापान का निकेई और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.5% से अधिक, तथा सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ. वहीं ताइवान का ताइएक्स लगभग 1.5% फिसला. यूरोपीय शेयर सूचकांक भी मिश्रित रुझान के साथ कारोबार करते नजर आए. अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 0.8% और लंदन का फुटसी लगभग 0.5% नीचे आया, जबकि फ्रांस का कैक 0.1% ऊपर कारोबार करता नजर आया. सिद्धार्थ, चीन के शेयर बाजार ने अपने साथी जो शेयर बाजार है उन्हें पछाड़ दिया है, 1.3% का उछाल आया है, क्या कारण है इसके?
0: नहीं प्राची, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा. चीन में आज जो डेटा आया है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डेटा है, उसमें बहुत बड़ा सर्ज है. तकरीबन 27% उनके एक्सपोर्ट्स अप हैं, और उतना ही और इंपोर्ट्स भी तकरीबन उसी के आसपास, तकरीबन 26%. तो जो कि इंडिकेट कर रहा है कि उनके यहाँ जो डिमांड पुश है, जो खासकर जो डिमांड फॉर गुड्स आउटसाइड, और इसीलिए जो हम देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट्स हैं उनमें भी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी दिख रही है, और साथ साथ उस और वो उसका इफेक्ट दिख रहा है एक्सपोर्ट पे, जो उनका एक्सपोर्ट इस साल के लिए. तो शायद वही कारण है, जो इमीडिएट रीज़न है, जो उनकी मार्केट में आज हमने जो तेज़ी देखी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इस साल चीन 5% के आसपास से ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं होगी, और एक ये भी धारणा थी कि कहीं ना कहीं उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे जो है पीक कर रही है, और डिमांड जो है कहीं ना कहीं उतनी उसमें तेज़ी नहीं है. लेकिन ये जो डेटा है, उस बात से कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे एक डिमांड जो है दोबारा बन रही है चीन में.
1: जी,
2: लेट्स मूव ऑन टू द यूएस स्टॉक मार्केट. मेजर यूएस स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंडेड लोअर यस्टरडे आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट ही वुड रीइंस्टेट अ ब्लॉकेड ऑन इरानियन पोर्ट्स इन द लेटेस्ट एस्केलेशन ऑफ यूएस ईरान हॉस्टिलिटीज. The Nasdaq Composite fell more than 1.5%. S&P 500 was down by approximately 0.8%. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average lost nearly 0.3% to close at 52,499. Now, do you see a reversal of this policy by Donald Trump when their own stock market indices are hit in terms of valuation? Because their tech shares have been going up. You have the SpaceX IPO as well. Those valuations have also plummeted. How do you see the stock market moving forward as far as the US is concerned?
0: See, Arjun, I think as far as Mr. Trump is concerned, I think things are also not the way he wants them to be. Probably, I think this the way Iran episode has unfolded, I think this is what the least he was expecting, because he's also under pressure there is a fear of inflation going up in US because of the spike in energy prices. And there are, as we all know, there are elections due in US in November. So I think he would also like things to cool down as soon as possible, but what actually will unfold is very difficult to say.
2: Move on to the next story now. Government today released the country's first trial index of services production, ISP, for 19 subsectors, providing for the first time a monthly measure of short-term activity in the formal services sector. The inaugural index for 2024-25 as a base year covers April 2026 and accounts for nearly 60% of India's services sector. The Ministry of Statistics and Programme Implementation described the subsector

0: MSMEs, labor and environment. Our import duty is going to be zero. How do you see this impacting our exporters?
1: Very heartening for us. Again, a very welcome step, I would say, because it is opening almost 99.5% of UK market for our exports. And we have also been able to safeguard our agriculture sector, as well as we are also getting opportunity, we are getting access to UK marine industry plus marine sector, I would say. And also, it is also going to help our labor-intensive sectors like leather, textiles. So I think all in all, a very positive, especially in these times.
0: Let's have a look at the crude oil market now. Global crude oil prices rose today after the U.S. reimposed a naval blockade on Iran, while renewed hostilities between the two countries heightened concerns over energy supplies through the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 4.07% up at $86.69 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.5% up at $80.10 per barrel when reports last came in. Last time there was a rollback of hostilities was when oil prices crossed $100. What is going to be the US reaction to this rise in international crude prices?
1: See, I don't think this increase in prices is happening only because of US reaction. The announcement by Donald Trump shutting down the Strait of Hormuz, and he's talking about a 20% tax. And on the other side, Iran saying we will not allow any movement or would not allow this kind of, tax to be imposed. And if at all anything, it has to be a tax, it has to be a very minimal amount. So I think till there is an agreement between the two sides, I think we should see these kind of levels, and which is not a good news for India.
0: And what is our imports like right now? Do we have the strategic petroleum reserves to counter this? We're already taking steps in the form of blending of petrol so that, prices are affordable and it is accessible to the market.
1: Arjun, we have already taken steps, but yes, and especially the government had taken, as you talked about ethanol, plus we've also diversified our sources from where we import our energy needs. But even then, the price going up is not a good news for us, and anything below 80 is good for us. But still, government of the day has tried to shield the consumer from these high level, and we haven't seen much increase in retail prices except one or two times when the prices were increased.
0: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 2.05% higher at 1,43,460 rupees per 10 grams, while silver was trading 3.37% up at 2,25,080 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.7% बढ़कर 1,42,748 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 3.2% बढ़कर 2,24,757 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. क्योंकि समय की नजाकत है, मगर एक संक्षिप्त में मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी.
1: नहीं, देखिए, गोल्ड एक मैं जो बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी, कि जो कन्वेंशनल रूल्स थे वो इस आज टाइम में उनको उनमें जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं चैलेंज हो रहा है. जब भी कोई क्राइसिस आती थी, पहले देखा जाता था गोल्ड के दाम ऊपर जाते थे, लेकिन आज आप देखेंगे गोल्ड के दाम नीचे आ रहे हैं, जबकि दुनिया में पूरी तरफ अनिश्चितता है. शायद उसका एक कारण है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, साथ साथ शायद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है गोल्ड में. तो मुझे लगता है ऐसे टाइम पे अभी फिलहाल जो ट्रेंड है, मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस इसी लेवल्स पे रहेंगे अगर ये हॉस्टिलिटी बनी रहती है. बिकॉज अमेरिका में एक ये भी फियर है कि जो जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर ही रहने वाले हैं, तो लोग जो है गोल्ड से सिक्योरिटीज में मूव कर रहे हैं.
2: जी, धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए.
1: धन्यवाद.
0: एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,052, गवर्नमेंट रिलीजेस द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन फॉर 19 सब सेक्टर्स, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज. एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा. फॉर नाउ, गुड बाय.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही तथा व्यापार जारी रखने का आह्वान किया।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसको तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य के कृषि मंत्री दूत कुमार मंडल, पंचायत मंत्री दिलीप घोष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 47वें ओवर में 8 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia, following renewed escalation of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for a safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz. India also expressed deep concern at the attacks on the two vessels, MT Al-Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry.
1: We had issued a statement post-summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter that these attacks must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia.
2: Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, Mr. Jaiswal said, New Delhi expects the international community to hold Islamabad fully accountable for these abuses and misdeeds.
1: The ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. Rather than addressing the legitimate grievances of the local population, the Pakistani state has responded with excessive police brutality, blocking essential supplies, enforcing internet blackouts and deploying lethal force against unarmed civilians that has led to tragic fatalities. We expect and hope that the international community will hold Pakistan fully accountable to these egregious abuses and misdeeds.
2: In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement FTA concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of the tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK CETA as a defining milestone in India's trade journey, saying it establishes a future-oriented economic partnership between two major economies. The government today released the country's first trial index of services production, ISP, for 19 subsectors, providing for the first time a monthly measure of short-term activity in the formal services sector. The inaugural index, with 2024-25 as the base year, covers April 2026 and accounts for nearly 60% of India's services sector. ISP will be released on the 29th of every month. The Income Tax Department has collected over 7,73,000 crore rupees as direct tax for the financial year 2026-27 so far. It is 16.11% higher growth as compared to financial year 2025-26 during the same period. The Election Commission has extended the schedule of the ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth-level officers will now visit house to house in both the states till 24th of this month, which was earlier scheduled till 14th of July. In cricket, England were 257 for 8 in 47 overs against India in the first of the three-match ODI series at Birmingham when reports last came in. Earlier, England won the toss and opted to bat first. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन की यात्रा पर हैं। वो स्पेन के साथ साथ फिनलैंड और बेल्जियम की भी यात्रा करेंगे और भारत और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। हमारे साथ शरद कोहली जी मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। शरद जी, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत और यूरोप के संबंधों में काफी बदलाव आया है। अगर हम 10 सालों की बात करें, दोनों के बीच जो व्यापार है वो 80% से ज्यादा बढ़ा है। अब आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? क्या आपको लगता है कि यह रिश्ता पारंपरिक व्यापार से भी आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीतिक और प्रौद्योगिकी साझेदार का रूप ले रहा है?
2: नमस्कार हर्ष, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। पहले तो मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत और EU के बीच जो संबंध है उन्होंने एक नई शक्ल ली है, क्योंकि हम यूरोप को देखें तो 27 नेशंस को मिला के EU बनता है। और पिछले कुछ वर्षों में आप पन्ने पलट कर देखें तो उसमें EU की जो आर्थिक रफ्तार रही है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं रही। वहां पर उनकी अपनी समस्याएं थी, आर्थिक उनका एजिंग पॉपुलेशन थी, लोग बुजुर्ग हो रहे थे, वर्कफोर्स की दिक्कत थी, मार्केट उतनी ग्रो नहीं कर रही थी। चाइना ने वहां पर अपना एक तरह से वर्चस्व जमाया हुआ था। चाइना से जो सामान आता है यूरोप में वो काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आता है, इसलिए यूरोप में ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं लग रही थी। यूरोप में बहुत सारे देशों में ऐसा देखा जा रहा था कि भाई अब जब चाइना से सामान आ जाता है तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है। तो वहां भारतीय सामान, हालांकि भारत का काफी विस्तार हुआ है अगर हम द्विपक्षीय व्यापार को देखें या भारत के सामान को वहां देखें, पर अभी वो जो कटिंग एज थी भारत के सामान पे वो आनी बाकी थी। तो मुझे लग रहा है ये जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के डेलिब्रेशन चल रही है, TTC जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हमारे माननीय कॉमर्स मिनिस्टर वहां पर गए हुए हैं, इसको अब एक नया, और 27 जनवरी को ये हमारा साइन हुआ था जो यूरोप के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी। और हम सब जानते हैं कि 27 देश मिलके यूरोपियन यूनियन बनता है, हर एक की अपनी पार्लियामेंट है, हर एक का अपना एक प्रोसीजर है। 27 में से 20 तो यूरो मानते हैं करेंसी को, बाकी के जो 7 देश हैं उन्होंने अपनी अपनी करेंसी रखी हुई है। ये भी स्वतंत्रता यूरोपियन यूनियन का जो चार्टर है वो देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो देता है। तो हर एक देश की अपनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा। तो मुझे लग रहा है इस साल के अंत तक या 2027 के शुरू तक ये सारे क्लियरेंसेस हो जाएंगे और इसकी पूरी पुख्ता शक्ल निकल के आएगी। और बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता है हर्ष होने वाला है, क्योंकि आप अगर आबादी के लिहाज से देखें तो लगभग 450 मिलियन की, 45 करोड़ के आसपास की यूरोप की आबादी है। अगर मैं GDP को देखता हूँ, सारे देशों को जोड़ दूं, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जो लोग शायद जानते नहीं होंगे, लैटविया है, लिथुआनिया है, लक्समबर्ग है, माल्टा है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, बाकी आप जर्मनी, फ्रांस वगैरह तो सब जानते हैं, इटली, इनको जानते हैं, पर उस 27 में बहुत सारे देश आ जाते हैं। $20 ट्रिलियन की हर्ष वहां पर टोटल GDP अगर हम ऐड करें तो बन जाती है। तो बहुत बड़ी मार्केट भारतीय सामान के लिए है। इधर यूरोप से जो भारत सामान आता है उसमें भी यूरोप भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट देख रहा है। आज भारत की जो मिडिल क्लास है वो अमेरिका की पॉपुलेशन से दुगनी है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी विश्व में इतनी बड़ी मार्केट एक ब्लॉक को मिलेगी एक साथ। तो दोनों देशों के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों देश इसके पूरक एक तरह से देखे जाने चाहिए।
1: बिल्कुल, अगर हम कुछ डेटा की बात करें शरद जी, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो व्यापार था 2025 में, पिछले साल, वो तकरीबन 118.4 अरब यूरो का रहा था और EU ने भारत से लगभग 69.5 अरब यूरो का पूरा आयात किया था, लेकिन भारत को लगभग 48.9, आप 50 अरब यूरो कह सकते हैं कि भारत ने निर्यात किया था, यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस में था, हम इसे कह सकते हैं। और हमने अभी एक आंकड़े का और जिक्र किया था कि पिछले एक दशक की अगर बात करें तो दोनों पक्षों के बीच, यानी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच, 80% से ज्यादा वस्तु व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इस संदर्भ में शरद अगर देखें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, इनकी स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड यात्रा को कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए भारत और यूरोप आर्थिक संबंधों के संदर्भ में?
2: बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि ये 27 देश हैं, हर देश का स्वचालित है, हर देश की अपनी पार्लियामेंट है, हर देश के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से उनको क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। तो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो, एक तो देखिए आप यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक बात करते हैं, पर हर देशों की अपने अपने कंसर्न्स हैं। तो वो फिनलैंड जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, तो वहां जो कंसर्न्स हैं उनको वो दूर कर रहे हैं और हर देश से भी नेगोशिएशन

0: बनती है और पूरे ब्लॉक के साथ भी नेगोशिएशन बनती है। तो ब्लॉक के साथ इन प्रिंसिपल नेगोशिएशन हो चुकी है, वो फाइनल हो चुका है। अब जहां जहां थोड़े से अंग्रेजी में एक शब्द होता है ट्विक्स, जहां जहां थोड़े थोड़ी लूज एंड्स है उसको बांधना है, कहीं उनको कोई स्पष्टीकरण चाहिए किसी विशेष वस्तु पर, अगर उनको उनको सफाई चाहिए कि भाई आपको किस तरीके से आप उसको भेजेंगे, किस रेट पे बनता है, क्या क्वालिटी होती है, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्योंकि अगर आप आइटम्स देखें, हर्ष आपने अभी बात करी और मैं आपको ये बता दूं जो आपने आंकड़े बताए कि यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक भारत का इस समय सबसे बड़ा गुड्स के मामले में ट्रेड पार्टनर है, वरना हम चाइना अमेरिका से भी काफी व्यापार करते हैं, पर अगर गुड्स के मामले में आप देखें, खाली मर्चेंडाइज जिसको हम कहते हैं, तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अभी से है और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की पूरी के पूरा कयास है, ये सारा एफर्ट हो रहा है। तो मैं आपको आइटम्स की बात कर रहा था, मुझे लग रहा है बहुत जरूरी हो जाता है जिक्र करना, क्योंकि हमारे जो श्रोता एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट लाइन में है या जो एक्सपोर्ट की लाइन में आना चाहते हैं, ये जान के 93% बल्कि हमारा सामान वहां पर अब टैरिफ फ्री हो जाएगा, वो ये जानना चाहेंगे कि कौन से क्षेत्र के वो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं कुछ सेक्टर्स का नाम यहां पर लेना चाहूंगा हर्ष, उसमें टेक्सटाइल्स है, अपैरल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मरीन प्रोडक्ट जिसमें भारत की बहुत महारत हाथिर है, भारत का बहुत बड़ा एक कोस्टल एरिया है, लेदर गुड्स है, और इसमें एग्रीकल्चर प्रोसेस गुड्स भी हैं जो कि सिलेक्टेड कैटेगरीज में वहां जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जब हमारा ये ट्रेड अग्रीमेंट होने जा रहा है तो क्या भारतीय किसानों को इसमें कोई नुकसान होगा, क्योंकि यूरोप तो कृषि के लिए भी बहुत सारे यूरोप के ऐसे हिस्से हैं जहां कृषि में प्रोड्यूस होता है। इस एग्रीमेंट में भी पूरा ध्यान रखा गया है कि हमारे किसानों का हित कहीं पर भी प्रभावित नहीं होगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और यही जब एग्रीमेंट की फाइनल रूपरेखा निकल के आएगी, हालांकि एग्रीमेंट साइन हो चुका है, पर इंडिविजुअल देशों के साथ, जो देशों के साथ होगा, उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी कृषि क्षेत्र को कोई आंच नहीं आने वाली है। हर्ष,
1: और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए ये भी बता दें कि भारत वहां से क्या क्या आयात करता है यूरोप से। आपने बहुत सारी वो चीजें बताई जो कि भारत के निर्यातक वहां निर्यात कर सकते हैं, और भारत जो आयात करता है उसमें भी मशीनरी कुछ है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, मेडिकल खासतौर पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ केमिकल्स वहां से आते हैं, हम आयात करते हैं। शरद, आपने अभी बात की FTAs की, FTA के बाद और आराम हो जाएगा हमारे निर्यातकों को, जो टैरिफ है एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं क्या, कुछ बाधाएं भी मौजूद हैं क्या? थोड़ा विस्तार से इसको बताएं कि अगर कुछ बाधाएं हैं तो क्या है और कैसे उनसे निपटा जा सकता है।
0: या देखिए, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, और यही चैलेंजेस की वजह से आपको जो हमारे मंत्री वहां जा रहे हैं, उन चैलेंजेस को वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक उस पर समन्वय बन पाए उस पर बनाया जाए। और दो तीन चीजें मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल उठाया है। देखिए, अभी तक चाइना का जो वर्चस्व था यूरोपियन यूनियन में, वो कीमत के मामले में हम उनको हर चीज में कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, ये हमें स्वीकार करना होगा। वहां से सामान सस्ता बन के आता था, और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी खराब होती थी, चाइना में हर तरीके का सामान बनता है। तो दो मानक पहले मैं लूंगा यहां पर, एक मैं लूंगा क्वालिटी का, दूसरा मैं लूंगा प्राइसिंग का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में, मुझे लग रहा है अब हमारे एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ये दो चीजों पर ध्यान देना होगा। एक तो क्वालिटी, क्योंकि यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, जैसा मैंने कहा, हर देश में नियम अलग हैं, हर देश में जो पैमाने हैं सामान को एक्सेप्ट करने के, इस्तेमाल करने के, वो अलग अलग हैं। तो एक्सपोर्टर्स जिस भी इन 27 नेशंस के ब्लॉक में भेजेंगे, उनको उस देश के जो जो ये पैमाने हैं उनको दिमाग में रख के चलना होगा। और सबसे ज्यादा ध्यान, जो मैंने शुरू में दो बात कही, कि क्वालिटी और प्राइस पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाइना से कॉम्पीट कर रहे होंगे। अब इस टैरिफ के हटने के बाद, 93% सामान पे टैरिफ हटने के बाद, हमारा जो सामान है वहां प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कीमतों के मामले में हम चाइना से कुछ कुछ आइटम तो ऐसे होंगे हम बेहतर हो जाएंगे। तो अगर यहां पर अगर हम क्वालिटी को भी हम अप टू द मार्क रखते हैं, क्वालिटी को हम बिल्कुल उच्चतम रखते हैं, और दूसरी तरफ हम कीमत कम रखते हैं, तो मुझे लग रहा है वो जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है, मुझे लगता है वो जगह हम धीरे धीरे ले पाएंगे। आज हम कुल अगर निर्यात देखें अपने देश का हर्ष, तो $850 billion से ऊपर हम पहुंच चुके हैं, इसको इस साल तक 2027 तक $1 trillion ले जाने का हमारे माननीय जो मंत्री है उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो मुझे लग रहा है ये जो FTA हैं ये उस ओर कदम हमारे ले जाएंगे, क्योंकि यहां से आपका निर्यात बढ़ेगा और यहां से जो टैरिफ लगने की वजह से जो सामान महंगा हो जाता था वो अब वो महंगाई उस सामान में से हट जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट जाएगा और हमें जो एक्सपोर्टर सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम को, वो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि उस देश की क्वालिटी के हिसाब से वो सामान को बनाएंगे। बाकी जो एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं वो तो ध्यान में रखना ही होगा, उसके बिना तो वो सामान को वहां आने ही नहीं देंगे। तो देखिए, सरकार का काम होता है हर्ष एनेबलर का, यानी कि सरकार आपको एक माहौल बना के दे दीजिए। अब इसका जो लाभ उठाना है, वो लाभ उठाना तो लोगों के हाथ में, लाभ उठाना तो बिजनेस कम्युनिटी के हाथ में, लाभ उठाना एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी के हाथ में। दूसरी एक जरूरी बात मैं हर्ष इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि हम इसको कोऑपरेशन को खाली हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चश्मे से हमें नहीं देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट है, जैसे एक देश से दूसरे देश में जो निवेश आएगा वो भी इस एफटीए के बाद आसान हो जाएगा। अच्छा, प्रोफेशनल सर्विसेज जो देनी होती है, भारत तो सर्विसेज के लिए जाना जाता है, आपको पता है भारत का तो बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी का सर्विसेज से बनता है और हमारा लोहा दुनिया मानती है, खासकर आईटी सर्विसेज में, वहां पर भी उसका भी इसमें जिक्र होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बहुत सारी होती है दोनों देशों से, वो भी इस एफटीए में शामिल की जाएगी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है, उसका भी जिक्र आएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत ने जो महारत हासिल करी है वो डिजिटलाइजेशन में हासिल करी है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जब फाइनल रूपरेखा इसकी निकल के आएगी, जब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें भारत के जो डिजिटल स्ट्रेंथ है उसका जरूर जिक्र आएगा। और पीपल टू पीपल रिलेशंस हो गए, भारत के जो प्रोफेशनल्स है वहां जाके काम करते हैं, उनके वीजा की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, यूरोप से लोग यहाँ आके जब जरूरी होगा काम कर पाएंगे, भारत के लोग वहां जाके काम कर पाएंगे। एफटीए का जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है हर्ष, बहुत बड़ा होता है, इसका जो पूरा घेराव होता है बहुत बड़ा होता है, जो बहुत सारी चीजें आ जाती है। जी
1: बिल्कुल शरद, आपने चीन की बात की और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, यूरोप लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम हो और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं जिसकी आपने बात की, इसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए। यानी कि अब यूरोप की जो कोशिशें थी इसमें भारत की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है।
0: बिल्कुल, भारत की बहुत बहुत बड़ी भूमिका होगी और यूरोप का भारत के साथ इस प्रकार आके पूरे के पूरे ब्लॉक का, मुझे लगता है इतने सारे देश एक साथ आके भारत के साथ, इसको आप दूसरे नजरिए से देखें तो, अब यूरोपियन यूनियन अगर मैं इसको ना बोलूं तो 27 देश एक साथ आके भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? उनको भारत की मार्केट दिख रही है और वो चाइना के अलावा एक और चेन खड़ी करना चाहते हैं। हमारे साथ और देश हैं, इसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबलाइजेशन का और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत तरक्की करी है। भारत की, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है, सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल देश भी भारत है, यानी कि जहां यूथ जो है बड़ा कुछ करके दिखाना चाहता है, तो मुझे लग रहा है अब वो समय आ गया है, एक एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां से भारत के एक्सपोर्टर्स अब विश्व की तरफ देखने लगेंगे। जो मैं तो आह्वान करना चाहूंगा हर्ष आज शो के माध्यम से
1: जी,
0: उन बिजनेसमैन का जिन्होंने आज तक कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, मैं समझता हूं ये एफटीए को और आज आपकी हमारी इस बातचीत के जरिए उनको समझ में आएगा कि ये एफटीए मात्र एक डिस्कशन की चीज नहीं है, एक श्रोताओं को बताने की चीज नहीं है, एक समझने की चीज है कि आप किस प्रकार उस मार्केट की ओर देख सकते हैं, अपने सामान को वहां ले जा सकते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा। आज आप यूरोप के साथ व्यापार कर सकते हैं, यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध बना सकते हैं और उसमें कमाई कर सकते हैं, लोगों को नौकरियां, देखिए दोनों तरफ इसके होने के बाद दोनों तरफ नौकरियों में इजाफा दिखाई देगा, क्योंकि जो नए यूनिट्स लगेंगे, जिस सामान की यूरोप को जरूरत है उसकी यहां फैक्ट्रियां लगेंगी, उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो कुल मिला के जो आर्थिक विकास है उसमें बहुत बड़ा ये इंजन का काम करेगा।
1: कुल मिलाकर एक बहुत बड़े इंजन का काम करेगा आर्थिक विकास की दिशा में। शरद कोहली जी, आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: शुक्रिया, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:26:29। आप हैं इस वक्त सांझ ढले कार्यक्रम में अपनी ही दोस्त रूपा धवन के साथ। बहुत बहुत प्यार भरा मेरा नमस्कार। सूरज डूबा फैली लाली, मध्यम सी एक रात हुई, ठंडी ठंडी चलती हवाएं, मौसम की कुछ बात हुई, पत्ते साथ में झूमे हैं, डाल डाल मुस्काई है, सांझ ढले इस मस्त पवन ने अपनी धुन बिखराई है, अपनी धुन बिखराई है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: जी हाँ, बारिश की एक एक बूंद जिसका हम कई महीनों तक इंतज़ार करते हैं, और सावन के महीने की जो बारिश की बूंदें हैं ना, उसमें तो नहाने का कुछ अलग ही आनंद आता है। हम ही नहीं, पेड़ों की पत्तियाँ डालियाँ लहक लहक कर चहक चहक कर इन बारिश की बूंदों का बहुत ज़ोरदार स्वागत करती हैं। तो हंसते हुए, खुश होते हुए, मुस्कुराते हुए इन लम्हों को थामने के लिए तैयार हैं ना आप हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। फिलहाल वक्त हुआ है 7:33 और 50 सेकंड, आप है रूपा के साथ सांझ ढले में।

साथियों, पुनर्जन्म और रोमांच पर आधारित विषयों पर फिल्म जगत में कई फिल्मों का निर्माण हुआ। ऐसी फिल्में जिसने दर्शकों को बेहद लुभाया। फिल्मी कलाकारों ने अपनी बेमिसाल अदाकारी का जलवा जुड़वा भूमिका या समानांतर भूमिका निभाकर बिखेरा। तो अभी आपने जो गीत सुना वो थी शर्मीली फिल्म से, और अब जो हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही नायाब फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए, गोरा और काला फिल्म से किशोर साहब और लता जी के स्वर में, माफ कीजिएगा, रफी साहब और लता जी के स्वर में।

साथियों, जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है ना, तो उसके बारे में हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब चिंता करते हैं तो चिंता करने से तो वो चीजें आपके नियंत्रण में आनी जाएंगी। लेकिन हाँ, अपनी ऊर्जा को हम बचाकर उन चीजों पर हम लगाएं जिन्हें हम बना सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत खास बात हो जाएगी। तो सोचते रहिए इसी तरह के कुछ ऊर्जावान तरीकों के बारे में। खुश रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि आप हंसते हैं तो हम खुश होते हैं। फिलहाल सांझ ढले का सफर यहीं तक रूपा विदा लेती है। अब से कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू।

0: नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया और दिल्ली पुलिस ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने ताहिर हुसैन को दंगा फैलाने, मारपीट, आपराधिक बल का इस्तेमाल और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। फरवरी 2020 में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया जाना पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। श्री मिश्रा ने पिछली सरकार पर राहत और चिकित्सा सहायता में पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर भी आलोचना की। उन्होंने आम आदमी पार्टी नेताओं से जवाबदेही की मांग की और हिंसा, सड़क जाम तथा हमलों के खिलाफ कार्रवाई न करने की उनकी कथित नाकामी पर भी सवाल उठाए।
1: अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला अंकित शर्मा जी की हत्या के खिलाफ, एक बयान नहीं दिया उन्होंने। पूरी केजरीवाल सरकार का कोई मंत्री किसी भी हिंदू पीड़ित के घर में मिलने के लिए नहीं गया, उनको न्याय देने के लिए नहीं गया। ये सवाल है जो आज दिल्ली और देश की जनता पूछ रही है कि जो हिंदुओं के बच्चे मारे गए, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनको गोली लगी, जिनको पत्थर लगे, जिनके रिक्शे जले, जिनका व्यापार नष्ट हुआ, बच्चों को स्कूल आने जाने से रोका गया, जिनको बीमारों को अस्पताल जाने से रोका गया, जिनकी सड़कें बंद कर दी गई, उनके समर्थन में केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी क्यों नहीं आया सड़क खुलवाने के लिए।
0: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा की वित्तीय समितियों और विभाग संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्षों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का आयोजन वित्तीय समितियों और विभाग संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्षों को इनके संवैधानिक, प्रक्रियात्मक और कार्यात्मक पहलुओं से परिचित कराने के उद्देश्य से किया गया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज शिक्षा विभाग के पोर्टल एड्यूलाइफ 2.0 लॉन्च किया। महापौर ने दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर आधारित अचीवमेंट क्रॉनिकल नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा प्रदान करने की दिशा में नगर निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दिल्ली सरकार 25 जुलाई को पहला अभिभावक शिक्षक संवाद आयोजित करेगी। ये पहल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों और विद्यालयों की साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये संवाद पूरी तरह बाल सुरक्षा और संरक्षण विषय को समर्पित होगा। साथ ही जुलाई में पूरे दिल्ली में मनाए जा रहे बाल सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम भी होगा। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अवसर पर अभिभावकों के साथ बाल सुरक्षा, पॉस्को अधिनियम 2012, बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य तथा डिजिटल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत संवाद आयोजित करें। संवाद कार्यक्रम के बारे में बताते हुए शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा किसी भी रिपोर्ट कार्ड से अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा तभी सार्थक है जब बच्चे भय मुक्त वातावरण में सीख सकें। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा केवल विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने तक सीमित नहीं रह सकती। प्रत्येक बच्चे के लिए सबसे पहला सुरक्षा कवच उसके अभिभावक होते हैं, इसलिए शिक्षकों और अभिभावकों के बीच नियमित एवं सार्थक संवाद एक सुरक्षित एवं संवेदनशील वातावरण तैयार करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्री सूद ने कहा कि सुरक्षित विद्यालयों का निर्माण केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये विद्यालय, अभिभावकों और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। इस वर्ष का कार्यक्रम में 130 देशों के 60,000 से अधिक खरीदार और प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों, कारीगरों, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक साथ लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से प्रेरित होकर भारत टेक्स 2026 कपड़ा मूल्य श्रृंखला में व्यवसाय, निवेश, नवाचार, नीति संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ है। इस आयोजन में 20 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, राष्ट्रीय उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और विचारक सहित 350 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
0: नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। यह भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प विरासत का उत्सव है। इस महोत्सव में 48 कारीगरों और बुनकरों के साथ साथ राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के पूर्व विद्यार्थियों के 12 डिजाइन आधारित हस्तशिल्प और हथकरघा ब्रांड द्वारा बनाए गए हाथ से बने और हाथ से बुने उत्पाद शामिल है। ये महोत्सव इस महीने की 19 तारीख तक चलेगा।
4: इस विशेष पहल को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा भारत की उत्कृष्ट शिल्पकला को समकालीन और आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रदर्शित शिल्पों में गुलाबी मीनाकारी, स्टोन इनले, डोकरा मेटल क्राफ्ट, संगीत वाद्यंत्र, पांडुलिपि पेंटिंग, लकड़ी पर बोन इनले, उस्ता कला, पिछवाई कला, सोजनी कढ़ाई, मोलेला क्ले क्राफ्ट, जयपुर की ब्लू पॉटरी, सिल्वर फिलीग्री और चिरियाल पेंटिंग शामिल है। आगंतुकों को पारंपरिक शिल्प तकनीकों के लाइव प्रदर्शन देखने का मौका भी मिलेगा, जिससे उन्हें भारत की सदियों पुरानी कारीगरी का एक शानदार अनुभव मिलेगा। यह कार्यक्रम भारत के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 से जुड़ा हुआ है, जो आज से 17 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
0: भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से दिल्ली मंडल के शामली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य संपर्क और पहुंच में सुधार के इरादे से देश भर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। इस योजना में संपर्क और पहुंच में सुधार के लिए सड़कों, फुटपाथों और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। दिल्ली में दशकों पुराने कूड़े के पहाड़ों के वैज्ञानिक निस्तारण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही मौजूद रहे। एक रिपोर्ट।
5: बैठक के दौरान गाजीपुर डंप साइट समेत भलसवा और ओखला लैंडफिल साइटों की प्रगति का जायजा लिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गाजीपुर डंप साइट पर बायो माइनिंग और रेमेडिएशन के कार्यों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, ताकि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिल सके और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हो। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अर्जुन शर्मा।
0: रोहिणी और आसपास के इलाकों के निवासियों के हित के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने मुख्य अंडरग्राउंड ट्रंक आउटफॉल ड्रेन की सफाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इसमें 10,000 मीट्रिक टन से अधिक जमा हुई गाद और कचरे को हटाया गया। इस ये अभियान उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु के निर्देश के बाद चलाया गया। इस पहल का उद्देश्य मानसून के दौरान बारिश के पानी की आसान निकासी सुनिश्चित करना और इलाके में जल भराव के जोखिम को कम करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि कुरियर डिलीवरी के बहाने आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ 2,47,000 की धोखाधड़ी की। गिरोह के अन्य संपर्कों की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने नंदनगरी इलाके में एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 9 किलो से अधिक का मादक पदार्थ और 353 क्वार्टर अवैध देसी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नंदन

0: नगरी थाने में आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार खेल के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने, कोचिंग सुविधाओं में सुधार करने और खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, प्राइज मनी की बात हो, फैसिलिटीज की बात हो, कोचेस की बात हो, हम हर एक विषय जो उनसे छूता हुआ है उस पे काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि दिल्ली के हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को वो मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जिससे कि वो ना केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सके।
0: इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए हर स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
2: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम खेलों के इकोसिस्टम को तैयार करें, हर स्टेडियम में नेशनल और इंटरनेशनल की तैयारी करने वाले, स्टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए हमने साधनों की व्यवस्था की है, उनको खेलने के लिए अवसर देने के लिए उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। साथ ही साथ दिल्ली में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले लोगों को सबसे ज्यादा इनाम राशि घोषित की है। हम दिल्ली को खेलों की राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते हैं।
0: चैंपियनशिप इस महीने की 27 तारीख से अगले महीने की 2 तारीख तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के अंतर्गत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज वेव्स के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सृजकों की पहचान करना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनके कौशल को बेहतर बनाना है। संगीत नाटक अकादमी कल देशव्यापी राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव 2026 का आयोजन करेगा। महाकवि कालिदास जयंती के अवसर पर आयोजित ये महोत्सव राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष को समर्पित है। ये महोत्सव कल शाम 6 बजे से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ नाटकों के मंचन के साथ शुरू होगा। इस महोत्सव का विषय वंदे मातरम भारतीय रंगमंच के माध्यम से देशभक्ति की भावना है। दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया और दिल्ली पुलिस ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। श्री चौहान ने बताया कि पश्चिम बंगाल में चिंसोरा और मालदा सहित चार स्थानों पर आलू और जूट के बीजों के प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर वर्ष इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में देश की खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में प्रस्तावित भंडारण नीति और निजी उद्यमी गारंटी पीईजी योजना की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में क्षेत्रवार भंडारण असंतुलन, अतिरिक्त खाद्यान्न के भंडारण, भंडारण क्षमता के बेहतर उपयोग और मौजूदा खरीद व्यवस्था के अनुरूप भंडारण मानकों में बदलाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज हैदराबाद के संतन नगर ईएसआईसी अस्पताल में 211 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक बाह्य रोगी विभाग ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्य मंत्री जी विवेक वेंकट स्वामी भी मौजूद रहे। श्री मांडविया ने देश के विभिन्न हिस्सों में 650 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 6 अन्य ईएसआई परियोजनाओं का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalation of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.

स्वागत है आप सभी का शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों से सजे मधुरिमा कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने ही चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस अनोखे संगम में आइए, सुरों के समंदर में गोते लगाइए हमारे साथ, जिसमें आपके साथ हूं मैं, आप ही की अपनी, आप ही की दोस्त रूपा धवन। नमस्कार। आइए सुनते हैं राग पहाड़ी पर आधारित ये गीत। फिल्म है कोहिनूर, संगीत नौशाद साहब का और गीतकार शकील बदायूनी, स्वर मोहम्मद रफी साहब और लता जी का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों

और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है 8:16 और 44 सेकंड। आप हैं रूपा के साथ कार्यक्रम मधुरिमा में, जिसमें आज हम सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित वो हसीन लम्हों को साबित करते वो नायाब गीत जो हमारे दिलों दिमाग में आज भी शामिल हैं। चलिए अगला गीत हम शामिल करते हैं, राग शिवरंजनी पर आधारित गीत, और इसमें ताल का प्रयोग किया गया, ताल कहरवा। आर डी बर्मन के संगीत में ढला ये गीत, और गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी साहब ने और स्वर दिया किशोर कुमार साहब ने।

अभी आपने सुना राग शिवरंजनी पर आधारित ये गीत महबूबा फिल्म से किशोर साहब के आवाजों में, और अब सुनते हैं राग बिहाग पर आधारित ये गीत, बेहद ही खूबसूरत सा नगमा, ताल दादरा जिसमें प्रयोग किया गया है इस गीत में, और संगीत का जादू बिखेरा है शंकर जयकिशन ने, गीत के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और स्वर दिया मोहम्मद रफ़ी साहब ने और लता जी ने, फिल्म असली नकली से।

मन के विभिन्न भागों को, अलग अलग विभागों को, अलग अलग रागों में इन भावों को व्यक्त करते ये गीत दिल को छू लेते हैं। वास्तव में संगीत बिना सब सुना है। राग आसावरी पर आधारित ये गीत आप सभी के लिए संगीत से सजाया सवारा रवि साहब ने, साहिर साहब ने गीत के बोल लिखे और लता जी की आवाज़ में ये गीत आप सभी के लिए आज के मधुरिमा की आखिरी प्रस्तुति।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंगम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल

0: तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं इंग्लैंड में चल रही भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला से, जहां पहला मुकाबला आज बर्मिंगम में खेला जा रहा है श्रृंखला का, और मेजबान इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 259 रन का लक्ष्य दिया है, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने तय समाचार मिलने तक 10 ओवर में 2 विकेट खो करके 56 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इंग्लैंड की पूरी टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बना करके ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने सर्वाधिक 76 रन की नाबाद पारी खेली, उनके अलावा लियम डॉसन ने 68 रन बनाए और बेन डेकेट ने महत्वपूर्ण 43 रन का योगदान दिया था सलामी बल्लेबाजी करते हुए। और भारत की तरफ से गेंदबाजी की बात की जाए तो अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरान ने 2-2 विकेट लिए। लंबे समय बाद वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे के हाथ एक एक सफलता लगी और इस एक सफलता के साथ ही जसप्रीत बुमराह भारत के लिए 150 विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बन गए हैं। और गेंदबाजी के अलावा भारतीय टीम ने फील्डिंग में भी आज काफी शानदार प्रदर्शन किया, और अगर अभी की बात कर ली जाए तो भारतीय टीम ने 57 रन बना लिए हैं। 11वां ओवर का खेल जारी है, इस समय रोहित शर्मा 11 रन और विराट कोहली 5 रन बना करके पवेलियन लौट चुके हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल 29 रन और श्रेयस अय्यर 5 रन बना करके क्रीज पर डटे हुए हैं। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में और अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना है। और अब बात करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा फुटबॉल विश्व कप की, जहां पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज रात 12:30 बजे से फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाना है। ये मैच टेक्सस के डलास स्टेडियम में होना है। दोनों टीमें अब तक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं। फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में मोराको को और स्पेन ने बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: आज रात से फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल का दौर शुरू हो जाएगा, जहां से हर टीम फीफा विश्व कप की ट्रॉफी से मात्र 2 कदम दूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस 2 कदम की छोटी मगर बेहद रोमांचक दूरी को कौन सी टीम सफलतापूर्वक पूरा कर पाती है। आज पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। विश्व कप की ये दोनों फेवरेट टीमों में से किसी एक का सफर आज रात समाप्त हो जाएगा, जबकि कोई एक टीम खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर लेगी। ये मैच विश्व कप के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक होने की उम्मीद है। दोनों टीमों के विश्व कप में अब तक के सफर पर नजर डाली जाए तो फ्रांस फीफा विश्व कप 2026 में कोई भी मुकाबला नहीं हारा है। फ्रांस ने खेले गए 6 मैच में से 5 मैच जीते हैं, जबकि एक ड्रॉ रहा है। इस दौरान फ्रांस ने कुल 16 गोल दागे हैं और केवल 2 गोल खाए हैं। टीम की मुख्य ताकत उसका आक्रामक खेल है, वहीं टीम की दूसरी मुख्य ताकत 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में टॉप पर बने हुए किलियन एम्बाप्पे हैं। उस्माने डेम्बेले भी 5 गोल कर चुके हैं और लोगों की नजर सबसे अधिक असिस्ट करने वाले माइकल ओलिसे पर भी है, जबकि दूसरी तरफ स्पेन की टीम है जिसको अपने डिफेंस पर भरपूर भरोसा है। पूरे विश्व कप के दौरान अब तक स्पेन ने मात्र 1 गोल खाया है। स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से, प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से और राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया था। डिफेंस शानदार होने के साथ साथ टीम के पास मिडफील्ड में रोड्री, पेड्री और ओल्मो जैसे खिलाड़ी हैं। अटैक लाइन पर मिकेल ओयारजाबल 4 गोल के साथ टीम में लीड कर रहे हैं। अगर दोनों टीमों के आमने सामने के मुकाबले की बात की जाए तो हाल के समय में दोनों के बीच हुए 38 मैच में 18 स्पेन के और 13 फ्रांस के नाम रहे हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे। आंकड़ों में दोनों टीमें बेहद मजबूत हैं, लेकिन फ्रांस का अटैक उसको स्पेन के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रभावी बनाता नजर आता है। ऐसे में देखना होगा कि आज सेमीफाइनल मुकाबले में कौन सी टीम फाइनल की ओर अगला कदम बढ़ा पाती है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: जून 2026 को जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई तो 48 टीमें थी और 104 मुकाबले खेले जाने थे। आज 4 टीमें बची हैं, 4 मुकाबले बचे हैं जो तय करेंगे कि विश्व कप का विजेता कौन होगा, उपविजेता कौन होगा, तीसरे स्थान पर कौन होगा और कौन सी टीम चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाएगी। और अब बात करते हैं मुक्केबाजी की, जहां भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जकार्ता में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया है और सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद अंडर 19 वर्ग में भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है, जबकि 6 ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: अंडर 19 महिला कैटेगरी में

0: सभी 8 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। चाहत ने 60 किलोग्राम में चीनी ताइपे की पे चुनतसाई पर 5-0 की शानदार जीत हासिल की। वहीं 75 किलो वर्ग में अंशिका ने पहले राउंड में चीनी ताइपे की एन चीत सिंह के खिलाफ रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट से जीत दर्ज की। वियतनाम की अपनी प्रतिद्वंदी के मुकाबले जारी न रख पाने के कारण मेघा श्योकंद 80 किलो वर्ग में आगे बढ़ गई हैं। वहीं प्राची टोकस ने 81 किलोग्राम से अधिक के वर्ग में चीनी ताइपे की शू शियन वांग के खिलाफ पहले राउंड में आरएससी जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई। पहले से जीते हुए बॉक्सर्स के साथ भारत ने अंडर 19 महिला कैटेगरी में सभी 8 फाइनलिस्ट पक्के कर लिए। वहीं अंडर 19 पुरुष कैटेगरी में 2 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। 55 किलोग्राम वर्ग में आदित्य ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कोरिया के ह्योन मिन ली को दूसरे राउंड में आरएससी से हराया, जबकि शुभम राजपूत ने 90 किलोग्राम में किर्गिस्तान के एकबेग बर्दी मुरातोव के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल की। सेमीफाइनल में हार के बाद 6 भारतीय मुक्केबाजों ने कांस्य पदक भी अपने नाम किए। इससे पहले अंडर 23 वर्ग में भारत के 8 मुक्केबाज फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, जिनमें 5 महिला और 3 पुरुष शामिल है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैंप।
1: तो अंडर 19 और अंडर 23 दोनों वर्गों के फाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे और कुल 18 भारतीय खिलाड़ी इन दोनों वर्गों के महिला और पुरुष कैटेगरी में गोल्ड मेडल्स के लिए, अपने अपने स्वर्ण पदक के लिए दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। और अब बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज जारी की गई ताज़ा ITTF विश्व रैंकिंग में भारत की 3 डबल्स जोड़ियों ने शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। भारतीय डबल्स जोड़ियों की अगुवाई मानव ठक्कर और मानुष शाह कर रहे हैं, जो पुरुष डबल्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं, और ये किसी भी भारतीय डबल्स जोड़ी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभांकर मयूर का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कोचिंग सुविधाओं में सुधार करने और खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
2: दिल्ली के स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए विशेष रूप से हमारी सरकार ने आने के बाद जिस तरीके से काम किया, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, प्राइज मनी की बात हो, फैसिलिटीज की बात हो, कोचेस की बात हो, हम हर एक विषय जो उनसे छूता हुआ है उस पे काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि दिल्ली के हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को वो मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जिससे कि वो ना केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सके।
1: मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि कई राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी चैंपियनशिप में भाग लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार इस आयोजन के लिए सभी आवश्यक मदद और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगी।
2: ऊर्जा उत्साह को बताने वाला, हर वक्त अपनी मुस्कुराहट के साथ, अपनी आवाज के साथ चहकाने वाले मयूर के साथ जोड़ा गया है इस कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस इवेंट को। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ सभी साथियों को जिन्होंने इस इवेंट को सफल बनाने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
1: और इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली को देश के खेलों की राजधानी के रूप में विकसित कर रही है।
3: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम खेलों के इकोसिस्टम को तैयार करें, हर स्टेडियम में नेशनल और इंटरनेशनल की तैयारी करने वाले, स्टेट की तैयारी करने वाले लोगों, विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए हमने साधनों की व्यवस्था की है, उनको खेलने के लिए अवसर देने के लिए उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। दिल्ली में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले लोगों को देश में सबसे ज्यादा इनाम राशि घोषित की है। हम दिल्ली को खेलों की राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते हैं।
1: तो कह सकते हैं कि दिल्ली एक बहुत बड़े आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जहां 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप यानी कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में होगी, और इसके बाद दिल्ली एक और बहुत बड़ी प्रतियोगिता की मेजबानी करता हुआ नजर आएगा, जो कि होगी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन की, जो कि 17 अगस्त से शुरू होगी और 23 अगस्त तक इंदिरा गांधी अरीना में नई दिल्ली के चलेगी। तो कह सकते हैं कि एकाएक एक के बाद एक कई बड़ी प्रतियोगिताओं की मेजबानी दिल्ली को मिलती हुई नजर आ रही है।

0: और अब बात करते हैं कुश्ती की, जहां हरियाणा ने अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में तीनों टीम खिताब जीत लिए हैं। हरियाणा की टीम ने पुरुषों की फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिलाओं की कुश्ती में पहला स्थान हासिल किया।
1: हरियाणा ने पुरुषों की फ्री स्टाइल श्रेणी में 200 अंक के साथ खिताब जीता। इसके बाद ग्रीको रोमन में 195 अंक हासिल किए और तीन दिन तक चली इस प्रतियोगिता के आखिर में महिलाओं की कुश्ती में 183 अंक के साथ क्लीन स्वीप किया। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पुरुषों की दोनों कैटेगरी में उप विजेता रही। वहीं महिलाओं की प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 160 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पुरुषों की फ्री स्टाइल में पंजाब, ग्रीको रोमन में उत्तर प्रदेश और महिलाओं की कुश्ती में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहे। पदक के अलावा इस चैंपियनशिप का चयन के नजरिए से भी काफी महत्व था। इस प्रतियोगिता के विजेताओं के आगामी अंडर 23 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की उम्मीद है, जबकि 18 से 20 वर्ष की उम्र के बेहतरीन पहलवानों को आगामी सिलेक्शन ट्रायल के नतीजों के आधार पर अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेलने का अवसर मिल सकता है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कुश्ती की बात तो हरियाणा कोई खिताब ना उठाए ये बिल्कुल असंभव सा लगता है, जिस प्रकार का बुनियादी ढांचा कुश्ती को लेकर के इस राज्य ने विकसित किया है और देश को लगातार समय समय पर एक से दिग्गज एक पहलवान दिए हैं। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। आज खेले गए मुकाबलों में पीवी सिंधु तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
2: जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता भारत के लिए आज का दिन मिलाजुला साबित हुआ। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने मलेशिया की वोंग लिंग शिंग को 21-14 और 21-11 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी ने स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डून और जूली मैकफर्सन को 21-16 तथा 21-14 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं रोहन कपूर और ऋत्विका गद्दे को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी को एक सेट के बाद ही मुकाबला बीच में छोड़ना पड़ा, जबकि हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी भी पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गई। प्रतियोगिता में कल कई अहम मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पुरुष सिंगल्स में शानदार फॉर्म में चल रहे आयुष शेट्टी को अपने पहले मुकाबले में थाईलैंड के कुलावत विटिडसरन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना होगा, जबकि लक्ष्य सेन जापान के कोकी वितानबे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा अपने पहले मैच में चीनी ताइपे की हुआंग यू हसुन का सामना करेंगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब कार्यक्रम में चलते चलते एक बार वापस बर्मिंघम में खेले जा रहे एक दिवसीय मैच के स्कोर बोर्ड की तरफ नजर घुमा लेते हैं। भारत ने 13 ओवर खत्म होने पर 2 विकेट खोकर के 70 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 34 और श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर के क्रीज पर डटे हुए हैं और दोनों खिलाड़ियों ने 22 रन की पार्टनरशिप कर ली है। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों यानी लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
4: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
5: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष

0: 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
1: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham.

0: मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरुणेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: अरुणेंद्र जी। सबसे पहले तो हम इस पर आते हैं कि रेलवे में लगातार सुधार जारी हैं, कई बड़े बड़े सुधार किए जा रहे हैं और अब जो इन नए सुधारों की घोषणा हुई है, इनका उद्देश्य रेलवे को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और लोगों के अनुकूल बनाना है। तो आपके हिसाब से ये सुधार भारतीय रेलवे की कार्यशैली और देश की जो लॉजिस्टिक व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से बदलाव लेकर आएंगे?
2: देखिए, जो सुधार तो रेलवे में एक लगातार प्रक्रिया है, लेकिन जो अभी सुधार देखे जा रहे हैं वो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। मतलब जो बिल्कुल आधारभूत ढांचा है उसको बदलाव कर रहे हैं, जिससे कि प्रगति में जो बाधाएं अभी तक महसूस हुई हैं उनको बदला जा सके। और एक एक सेक्टर को लेकर आगे बात चल रही है, चाहे फ्लाई ऐश ले लें, सीमेंट ले लें, या कॉन्ट्रैक्टर्स की क्वालिफिकेशन ले लें, उनके जो स्टाफ है उनके स्किलिंग को लेके देखें, तो ये सब चीजों पे ध्यान देके एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और पुराने कदम जो लिए गए उनको परखा गया है कि उसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जाए। तो ये एक नीतिगत ढांचा परिवर्तन है जो कि मूलभूत रेलवे की मानसिकता को दिखाता है कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो फिर बाकी बाधाएं जो अभी तक बाधाएं बनी हुई थी उनको हटा दिया जाए।
1: अरुणेंद्र जी, भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है और रेल भूमि वेब पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिससे कि मुआवजा बांटने की बात हो, कानूनी समय सीमा या फिर

0: दस्तावेजों की रियल टाइम निगरानी संभव करने की बात हो, तो ये पोर्टल पारदर्शिता और विवादों में कमी और परियोजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने में किस प्रकार प्रभावी सिद्ध होगा?
1: देखिए, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक तो स्टेशन मॉडर्नाइजेशन की बात उठती थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को बताया गया कि ये स्टेशन है, इसमें ये मॉडर्नाइजेशन होगा, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो पहला सवाल ये उठा कि भाई आपके पास रेलवे के पास जमीन कौन सी है, क्योंकि कई जगह अतिक्रमण हो रहा है, कई जगह और चीजें बन गई हैं। अब जब तक कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना मिले तो वह जाके देख ना सके कि भाई रेलवे की जमीन है या रेलवे पर जमीन नहीं है,
0: बिल्कुल
1: तो आगे बात बने। अभी तक पेपर में ही कंफ्यूजन रहता था, इसके बाद किसकी जमीन है, किसको पैसा मिलना है। अगर ये सब डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएंगे तो ये सब जो तकलीफें हैं जो हर प्रोजेक्ट को डिले करती है, बिकॉज भूमि अधिग्रहण ही सबसे बड़ी समस्या है शुरुआत होने में। एक बार प्रोजेक्ट चालू हो जाता है फिर आगे गति पकड़ लेती है। ये अगर रेल भूमि पोर्टल पे सबके लिए हो जाएगा, जिसकी जमीन है, जिसको काम करना है, जिसको पैसा मिलना है, जिसको पैसा देना है और कब पैसा दिया, सब चीज वहां पे लिखी हुई है, क्यों देरी हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, फंड की कमी है या ओनरशिप रिकॉर्ड की कमी है, तो ये सब चीजें आपको रेल भूमि पोर्टल से साफ साफ दिखेंगी। जैसे टिकट रिजर्वेशन में आपको पीनार बर्थ नंबर सब दिखता है, ऐसे ऐसे भी दिखेगा।
0: अरुणेंद्र जी, फ्लाई ऐश की अगर हम बात करें तो हर वर्ष लगभग 96 मिलियन टन फ्लाई ऐश का उपयोग निर्माण कार्यों में होता है और इसके खुले पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या रहती है, तो अब विशेष कंटेनरों में इन्हें भेजने का निर्णय लिया गया है, तो ये जो नई व्यवस्था है इससे पर्यावरण संरक्षण और रेलवे की माल ढुलाई क्षमता और औद्योगिक जगत को किस प्रकार लाभ होगा, खासतौर पर जब हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि रेलवे की आमदनी जो है वो भी बढ़ानी है।
1: लेकिन सबसे बड़ा जरूरी बात यह है कि इस चीज का जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो इंडस्ट्री है, उनसे तालमेल करके ये डिसीजन लिया गया है कि इसको कंटेनराइज किया जाए, और जहां से शुरू होती है कहानी, वो खुले वैगन्स में हो या किसी और तरीके से हो, उसको हटा के कंटेनर में डाल के और नियत स्थान तक भेजा जाए, और जहां उतरे वहां भी ये समस्या पैदा ना करे। पहले तो रेलवे अपना वैगन लेके चली जाती थी और वहां पड़ा रहता था खुले में, तो वहां तकलीफ पैदा होती थी। अब जहां उतरेगा वहां तभी खुलेगा जब उसको इस्तेमाल करना हो, जरूरत हो, और फिर खुलने के तरीके, वैगन के डिजाइन, सब कुछ जो है उसी तरीके से बनाए गए हैं, तो ये पर्यावरण में बहुत फर्क पड़ेगा। रेलवे की माल अगर आपको 95 मिलियन टन सीमेंट में भेजना है फ्लाई ऐश, तो बहुत बड़ा मटेरियल है जो कि लोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ साथ पर्यावरण की तो बहुत बड़ी समस्या है। जब फ्लाई ऐश के जहाज बनती है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही तकलीफ है, जो खत्म होने की आसार दिखते हैं।
0: जहां तक विशेष कंटेनरों की हम बात कर रहे हैं, और तो लॉजिस्टिक्स एक बड़ा मुद्दा आता है कंटेनर के संदर्भ में, और रेल मंत्रालय फ्लाई ऐश के साथ साथ उर्वरक भी भेजता है, अनाज भी है, अन्य वस्तुओं का परिवहन भी किया जाता है, तो इन कंटेनरों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये जो बदलाव है ये भारत की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नीति और माल परिवहन प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगा, साथ ही जो हम आधुनिक रेलवे को बनाने की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा?
1: देखिए, कंटेनराइजेशन जहाँ जहाँ आया है वहां पे सफलता मिली है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है रेलवे की। रेलवे ने अपनी सोच को थोड़ा बदला है, और इसमें फर्टिलाइजर, फ्लाई ऐश, सीमेंट या सब ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं जो कंटेनर में जाके जाए और आगे बढ़ के जिसको जरूरत हो, किसी को पूरी जरूरत होती है, किसी को कम रेक की जरूरत होती है, तो कंटेनर तो एक बहुत ही छोटा एक रेक 140 x 45 का होता है, तो उसके लिए आसानी रहेगी, उसके लिए अनलोडिंग जब चाहे तब कर सकता है, मूविंग वेयर हाउस ऑल्सो। तो जब भी आप देखेंगे कंटेनर आया है तो कंटेनर मूवमेंट आसान है, लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी में तकलीफ नहीं है। कंटेनर आप जो यार्ड जाके देखेंगे वो बहुत रोड अप्रोचेबिलिटी उसमें बड़ी अच्छी होती है। ये जो नीति परिवर्तन हुआ है कि कंटेनराइजेशन को लेके आएंगे, कंटेनराइजेशन और एफिशिएंट और अच्छा बनाएंगे, इससे पर्यावरण, जिससे ग्रीन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट, सब में आपको फायदा दिखेगा।
0: इसी से जुड़ा एक और मेरा सवाल आपसे है कि रेलवे कंटेनर संचालन के लिए यूनिफाइड लाइसेंस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जिसमें इसे 20 वर्षों तक स्थिर रखने की बात कही है, तो ये जो नई नीति इस तरह से आ रही है इसमें निजी निवेश बढ़ने की संभावना आपको नजर आती है, और लॉजिस्टिक का जो काम है उसमें नए प्लेयर्स को भी काफी मौका मिलेगा?
1: सबसे पहले देखिए 2007-08 में शुरू हुआ था जब CTO आए थे, इंटरनल प्लेयर्स, अभी दूसरा जबरदस्त तरीका अपनाया गया है लोगों को लाने का, जिसमें कि प्रोसीजर तकलीफ है, जो सरकार से जो भी डील करता है उसको लगता है बहुत ज्यादा नियम है और एक नियम खत्म होते ही दूसरा नियम शुरू हो जाता है, ये सब चीज उन्होंने हटा दी है और कहा है कि आप एक बार एक मुश्त राशि दीजिए, रिन्यूअल में कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ना चाहे 20 साल के लिए है, तो वो सब चीजें आपको एक बार वंस यू आर इन आप हमेशा ही अंदर ही रहने वाले हैं, तो आप कंटेनर प्लेयर जो सीरियस प्लेयर है, तो आप वाकई आना चाहते हैं, वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा माध्यम खुल गया।
0: अरुणेंद्र जी, जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो किसानों और उर्वरक कंपनियों या फिर रेलवे की जो माल परिवहन व्यवस्था, इसमें इनका बड़ा रोल होता है। अब 50 अलग अलग माल भाड़ा स्लैब समाप्त कर प्रति टन प्रति किलोमीटर की पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है। ये जो बदलाव है, इसका कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि जब ये हो

0: होगा तो इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा, कंपनियों को भी लाभ मिलेगा और रेलवे भी इससे मुनाफे में होगा।
1: रेलवे मुनाफा तो एक चीज है, बट जो इस्तेमाल करता है, अगर उसे कहा जाए कि आपके पास 50 फेयर है, यदि आप चेयर कार में जाए तो आप चेयर कार 50 तरह की है, तो आपका
0: जी
1: बिल्कुल दिमाग जो है खत्म हो जाएगा। इस तरफ ध्यान नहीं गया था कि भाई जो इस्तेमाल करते हैं उनको कितने तरह के फेयर देने पड़ेंगे। तो 50 तो एक ऐसी जबरदस्त फिगर है कि आने के पहले ही लोग भाग जाएंगे, और जब तक आप उसको अच्छी तरह बिल्कुल तो जानते ना हो। लेकिन अब जब बात हटा दी गई तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने ट्रक से इतने में लगता है पैसा, टेम्पो से इतना लगता है, रेल इतना लेती है, इतने समय पहुंचाती है, तो एक बहुत बड़ी पारदर्शिता आ जाएगी और ये रेट समझ में आ जाएंगे कि भाई कितना खर्चा आएगा मेरे को, और तुरंत पता चल जाएगा। और ज्यादा आपको इसमें तकनीकी और या प्रोसीजर जानकारी की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेन रिजर्वेशन के माध्यम से 3 AC का किराया कितना है आप
0: जी
1: देख लीजिए, एक टैक्सी का किराया कितना है आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, कोई
0: जी
1: तकलीफ की बात नहीं है।
0: जी
1: इसमें ये प्रोसीजरल चेंजेस हो रहे हैं, अगर फेयर स्ट्रक्चर में फेयर स्लैब्स को खत्म करके एक स्लैब बनाने की योजना, ये तो एक क्रांतिकारी कदम है रेलवे की प्रगति के लिए, और सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो इसको इस्तेमाल करेंगे।
0: अरुणेंद्र जी, जब हम अनाज की ढुलाई की बात करते हैं तो पारंपरिक परिवहन के दौरान लगभग 4 से 5% अनाज या फिर दालों या फिर जो भी इस तरह की चीजें होती हैं उनके नुकसान की बात कही जाती है। अब इन्हें भी कंटेनरों में ले जाने की मंजूरी दे दी गई है, तो ये जो व्यवस्था की जा रही है खाद्य सुरक्षा, भंडारण दक्षता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भी महत्वपूर्ण, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस बदलाव को आप एक आम जनमानस के लाभ के हिसाब से कैसे देखते हैं?
1: देखिए, अगर आप नुकसान की भरपाई की बात करें तो नुकसान तो होता ही, भरपाई बाद में होती, लेकिन नुकसान हो ही ना, ये चीज कंटेनर की एक देन है। क्योंकि कंटेनर सील करे जा सकते हैं, लॉक तो बहुत ही आम बात है, कंटेनर का डिजाइन ऐसे किया जा सकता है कि कोई उसको बाहर से तोड़ा ना सके, वैगन में दवा सेंध लगा लेते हैं और फिर कंटेनर का ध्यान दिया जाएगा कितने कंटेनर है, कहाँ उतरे, फिर उसको वापस लाना है। तो इस तरह से आपको जो रास्ते में जो चोरी की बात उठती है वो कंटेनर से तो बहुत ही कम हो गई है, जो कि हम कंटेनर ट्रैफिक में अभी भी देखते हैं कि जो कंटेनर से सामान जाता है उसके चांसेस लीकेज के, थेफ्ट के बहुत ही कम है, और ऑनलाइन उसको देखा भी जा सकता है
0: जी
1: कंटेनर कहाँ है आपका। एक वैगन देखना इतना आसान है नहीं है जितना एक कंटेनर देखना आसान है अभी ट्रेन के पोर्टल पे।
0: यानी कि ये बहुत ही आसान बनाया जा रहा ताकि सारी जो सूचना है पूरी तरह से पारदर्शी होकर पहुंचे।
1: जी हाँ बिल्कुल, मतलब जो रेलवे का आगे बढ़ना है तो कस्टमर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल
1: और कस्टमर ओरिएंटेशन में प्रोसीजर की कमी हो, पारदर्शिता की हो, और साथ साथ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, और फिर दोनों लोग को सहूलियत हो।
0: जी
1: और सहूलियत सब चीजें तभी होती हो जबकि आपको जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे जो लागत है उसकी कमी हो, और साथ साथ रेलवे को नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सोच, जो पावन रिफॉर्म की बात हो रही है और आज जो 11 नंबर 17 नंबर पर रिफॉर्म जारी किए गए हैं,
0: जी
1: ये
0: जी
1: आप देखेंगे धीरे धीरे करके इतना दबाव हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या रेलवे को साल भर करते।
0: जी अरुणेंद्र जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार रेलवे को आधुनिक बनाने की बात करते हैं। अभी उन्होंने स्किल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात कही है, तो रेल परियोजनाओं में जो काम करते हैं खासतौर पर प्लम्बर है, वेल्डर है, फिटर है, राजमिस्त्री या अन्य जो कर्मचारी हैं, इनके लिए कौशल प्रमाणन व्यवस्था लागू की जा रही है, तो इस पहल से आपको लगता है कि निर्माण की गुणवत्ता बेहतर होगी, सुरक्षा मानक जो है हमारे उनमें काम बेहतर होगा और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जो बात है उसमें काफी सुधार आएगा?
1: ये कदम ऐसा है जो उसको अगर आप मापदंड के रूप में देखें, अब आपको पहले ट्रेन करना पड़ेगा वेल्डर कैसा है, ठीक है नहीं है, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। जैसे आप समझते हैं कार के ड्राइवर का लाइसेंस होता है, उसको मालूम
0: जी
1: है लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हैं, अगर आप वेल्डर लाइसेंस है, प्लम्बिंग लाइसेंस है, लाइसेंस में किस किस तरह के आप काम कर सकते हैं, आपका स्वागत है। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं आप देख रही हैं लोगों को जिनको भर्ती करना चाहती हैं, उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होने को दिखता है। जो कंपनियां हैं उनके लिए अच्छा है, और मेरे पास अगर सर्टिफिकेट है तो मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं जाके काम कर सकूं, उनके पास मेरे पास लाइसेंस है, और एक ऑथराइज्ड जो संस्था ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है जिसमें उन्होंने काफी ट्रेनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जो रिकॉग्नाइज करने की व्यवस्था है उसको एक ढांचा नीतिगत दे दिया गया है, और ये मजबूर किया गया है कि अपने को ऐसे ही लोग इस्तेमाल करें जैसे कि काम आगे बढ़ने में गति हो, कभी काम खराबी ना हो, गलत काम ना हो, और सीधी दिशा में सही तरीके से काम हो।
0: वैसे रेल मंत्रालय का लक्ष्य है कि अगले 24 महीने में इन प्रणालियों को, इन सभी परियोजनाओं को लागू किया जाए, तो आपको लगता है कि भविष्य में ये मॉडल अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना और सरकारी निर्माण कार्यों में भी काफी मददगार साबित हो सकता है?
1: अभी देखिए शुरुआत हुई है, और आप सुना होगा आपने स्पीच में कि 3 महीने में काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। रिफॉर्म तो बात कही जा रही है, रिफॉर्म तो जैसे आगे बढ़ेंगे जो रिफॉर्म्स को भी आगे रिफॉर्म करना पड़ेगा, तो इसलिए ये रेलवे की सोच की बहुत बड़ी चीज है। ये चीज जो है

0: रेल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि नीति का सोच को बदली करना एक बहुत तकलीफ है, और ऐसी संस्था जो इतनी पुरानी संस्था है, एक
1: जी
0: बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे सामने खुलता हुआ नजर आ रहा है।
1: बिल्कुल अरुणेंद्र जी, बिल्कुल अंत में कार्यक्रम के पहुंच चुके हैं। विजन 2047 की बात करें तो रेल मंत्रालय आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण, निजी भागीदारी, हरित परिवहन और तकनीकी नवाचार पर लगातार जोर दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-20 वर्षों में भारतीय रेलवे को विश्व की जो अग्रणी रेल प्रणालियां हैं उनमें शामिल करने के लिए किस तरह की प्राथमिकताएं ली जा रही हैं, किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं?
0: देखिए, 2047 से पहले रेलवे काफी कुछ कर लेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है ये ग्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, इन दो में रेलवे की महान प्रगति आपको देखने को मिलेगी।
1: जी
0: भारतीय वर्जन बुलेट ट्रेन का आपको देखने को मिलेगा, और ये जो कंटेनराइजेशन में पहल है इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट रेलवे कम करेगी, और रिजर्वेशन ऑन रिक्वेस्ट, जिस दिन आप चाहें रिजर्वेशन आपको मिले, ये दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं और रेलवे इस दिशा में आगे काम कर रही है। तो
1: जी
0: ये कोई नहीं चाहता कि टिकट इस टिकट बैठ लेके और आप आगे ट्रेवल करें टूरिज्म के बारे में माध्यम से, कंफर्मेशन हर एक को चाहिए होता है, और रेलवे इसी दिशा में नई ट्रेनें, नई लाइनें और लाइनों में ज्यादा कैपेसिटी करना, सिग्नलिंग सुधार करना, इसमें बहुत
1: जी
0: जबरदस्त काम हो रहा है और काफी पैसा भी खर्च हो रहा है। तो ये दो तीन चीजें सामने आती हैं जो कि आप देखेंगे कि जल्दी ही जल्दी इसमें लोगों को राहत और मिलती जाएगी। धन्यवाद।
1: अरुणेंद्र जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रेल परिवहन व्यवस्था को अत्याधुनिक, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल में हो रहे सुधारों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।

0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाताओं के सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित किया गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 28 ओवर में 4 विकेट पर 160 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने सर्वाधिक 76 रन बनाए। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
3: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albaya and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमरीका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। फ्रांस ने यूरोपीय एकता का सशक्त प्रदर्शन करते हुए बेस्टिल दिवस मनाया। और टेक्सास में फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की

0: गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने किसानों और घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत देशभर में 27 लाख कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन किया जा चुका है, वहीं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से 47 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्ध लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत

0: ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सीईटीए को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि ये दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई आर्थिक साझेदारी है। नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत के सबसे व्यापक व्यापार समझौतों में से एक है।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: फ्रांस में आज बैस्टिल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पेरिस में आयोजित वार्षिक सैन्य परेड में पूरे यूरोप की एकजुटता दिखाई दी, जिसमें कई यूरोपीय देशों के सैनिकों और विमानों ने हिस्सा लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने कार्यकाल के अंतिम बैस्टिल दिवस समारोह की मेजबानी की। समारोह में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सहित करीब 30 देशों के नेता शामिल हुए। इस दौरान यूरोप की सामूहिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 31 ओवर में 4 विकेट पर 166 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमरीका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। फ्रांस ने यूरोपीय एकता का सशक्त प्रदर्शन करते हुए बैस्टिल दिवस मनाया और टेक्सस में फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Reshma Tiwari with the World News. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. France celebrates Bastille Day with strong display of European unity. And France took clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
3: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahia and MT Mombosa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew.

हमें पता है कि आप भी हमें बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम हर श्रृंगार। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ रितिका। उन्नीस सौ 91 में आई फिल्म साजन का आपने ये गीत सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में, और नदीम श्रवण का संगीत और इस गीत को लिखा समीर ने। कहते हैं कि जब किसी के लिए दिल में सच्ची मोहब्बत हो जाए तो हर धड़कन उसी का नाम लेने लगता है। ये तो कहीं ना कहीं हम सभी ने किसी न किसी मोड़ पर महसूस किया होगा। कुछ रिश्तों को इजहार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आंखें ही दिल का हाल कह देती हैं।

आपको मजा आ रहा है? भाई मुझे तो बहुत आ रहा है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत अपने श्रोताओं के लिए मैं लेकर आई हूँ और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये गीत आपने सुना 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक का। संगीत से सजाया इस गीत को आनंद मिलिंद ने और इस गीत को आवाज दी अलका याग्निक और उदित नारायण ने और इस गीत को कलमबद्ध किया मजरू सुल्तानपुरी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

सलमान खान और चांदनी पर फिल्माया ये गीत आपने सुना फिल्म सनम बेवफा से। लता मंगेशकर की आवाज में लता मंगेशकर और विपिन सचदेव की आवाज में महेश किशोर का संगीत और इस गीत को लिखा सावन कुमार ने।

तो दोस्तों, हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 11:10 पर समय रहेगा मार्केट मंत्रा का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता

0: कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantial

0: Welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, बाजार विशेष की खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: प्राची नमस्कार, गुड इवनिंग अर्जुन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 24,052. Government releases the first index of services production for 19 subsectors and global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 561 अंक लुढ़का. निफ्टी 24,052 पर बंद हुआ. केंद्र सरकार ने 19 सबसेक्टर के लिए सर्विस प्रोडक्शन का पहला सूचकांक जारी किया और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब आइए रुक करते हैं और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने, यानी कि घरेलू शेयर बाजार ने, कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक 0.7% की गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक लुढ़ककर 24,052 पर आ गया. निफ्टी के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.5% की गिरावट आई और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 1% की गिरावट आई.
0: Benchmark domestic equity indices ended around 0.7% lower today. Sensex fell by 561 points to close at 77,055, while Nifty declined 159 points to settle at 24,052. In the broader market on the National Stock Exchange, the Nifty Mid-Cap 100 index slipped 0.44%, while the Nifty Small-Cap 100 index fell nearly 1%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एचसीएल टेक लगभग 4.5%, इंडिगो 2.3% और बजाज फिनसर्व में 2.2% की गिरावट आई. वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो भारती एयरटेल 1.5% से अधिक, TCS 0.8% और सन फार्मा में लगभग 0.5% की बढ़त हुई.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 25 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, mid-small private banks Quality Tilt dropped 1.92%, Realty fell by 1.91% and PSU banks lost 1.79%. In contrast, utilities jumped 0.7%, metals rose by 0.63% and healthcare added 0.53%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 1,501 companies advanced, 2,737 companies declined and 195 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.10 पर कारोबार कर रहा था. सिद्धार्थ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज का जलडमरू मध्य एक मछली के कांटे की तरह गले में फंसा हुआ है. शायद इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि बाजार की प्रतिक्रिया इस तरह से है.
2: नहीं प्राची, आपने बिल्कुल ठीक कहा. जब से मैं कहूंगा वेस्ट एशिया क्राइसिस जो शुरू हुई, उसके बाद से जो बाजार में एक हम कह सकते हैं कि जो एक उथल पुथल या वॉलेटिलिटी बनी हुई है, तो वो अभी भी कायम है. और मुझे लगता है जो फिर से जो एक एग्रीमेंट हो गया था अमेरिका और ईरान के बीच, जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्रीमेंट हो गया. 60 दिन का युद्ध विराम हुआ और ये हुआ कि उसके उस दौरान बातचीत करके एक डिटेल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा. लेकिन शायद वो सब होता उससे पहले ही फिर से एक बार जो है स्थिति खराब हो गई है और अमेरिका ने दोबारा जो है ईरान पे आक्रमण कर दिया है. और ईरान भी डटा हुआ है और ईरान ने भी, मतलब आज की डेट में अगर हम ये कहें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये कहा है कि अब उनकी तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिलहाल बंद है. ईरान ने तो अपनी तरफ से जो है रोक लगाई दी है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि संडे के बाद से जो आवाजाही है, जो तेल लेके, तेल के जो जहाज हैं या गैस या तेल के जो भी जहाज हैं, तकरीबन हमने देखा है एक दो ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहां ईरान ने अटैक भी किया, उसमें कुछ भारतीय भी हताहत हुए हैं और भारत ने इस पे बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। तो मुझे लगता है और वही कारण है कि जो बाजार पे भी है उसका इस अनिश्चितता, इस इंस्टेबिलिटी का जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है।
1: जी सिद्धार्थ, पिछले कुछ हफ्तों में बाजार में हमने बढ़त देखने को मिली, अब क्योंकि माहौल थोड़ा सा अनिश्चित एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है, तो उस हवाले से क्या आज और इन बीते कुछ सत्रों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, क्या आज भी हमें उसका प्रभाव मुनाफा वसूली का प्रभाव देखने को मिला है?
2: नहीं, देखिए जब ऐसा पीरियड होता है तो ऑब्वियसली लोग जिसको कहते हैं ना कि अपना पैक हंटिंग, मतलब अगर जो निवेशक है उसको ऐसे मौके आते हैं जब उसको लगता है कि मैं इस लेवल पे कुछ अपना जो है प्रॉफिट जो है बुक कर लूं और आगे शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोबारा मैं बाजार में आऊंगा, तो शायद और बाजार में आप आते भी इसीलिए हैं क्योंकि हर व्यक्ति का जो निवेशक का एक एम होता है कि कहीं ना कहीं, तो वो एक कारण है। और मुझे लगता है ऐसी अनिश्चितता का जो माहौल है तो बाजार कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि रेंज बाउंड हो गया। और जब से वेस्ट एशिया, चूंकि अब तकरीबन जुलाई का मिड जुलाई में है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी तय है, आप चाहे रिजर्व बैंक की तरफ से जो उनके एस्टिमेट्स हो इस साल की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसमें भी उन्होंने भी उसको घटाया है, और इन्फ्लेशन को लेके सारी दुनिया में चिंता है, तो कहीं ना कहीं वो बाजार में भी कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। शायद इसलिए निवेशक इस स्टेज पे उनको लगता है कि शायद इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आगे दिखे, क्योंकि आप अमेरिका में भी देखेंगे तो ये एक डर बना हुआ है कि शायद वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स, वहाँ की फेड रिजर्व जब अभी इस महीने के अंत में

0: concerns over energy supplies through the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 4.07% up at $86.69 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.5% up at $80.10 per barrel when reports last came in. Last time there was a rollback of hostilities was when oil prices crossed $100. What is going to be the U.S. reaction to this rise in international crude prices?
1: See, I don't think this increase in prices is happening only because of U.S. reaction. The announcement by Donald Trump shutting down the Strait of Hormuz, and he's talking about a 20% tax. And on the other side, Iran saying we will not allow any movement or would not allow this kind of, you know, tax to be imposed. And if at all anything, it has to be a tax, it has to be a very minimal amount. So I think till there is an agreement between the two sides, I think we should see this these kind of levels, and which is not a good news for India.
0: And what is our imports like right now? Do we have the strategic petroleum reserves to counter this? We're already taking steps in the form of blending of petrol so that, you know, prices are affordable and it is accessible to the market.
1: Arjun, we have already taken steps, but yes, and especially the government had taken, as you talked about, ethanol. Plus, we've also diversified our sources from where we import our energy needs. But even then, the price going up is not a good news for us, and anything below 80 is good for us. But still, government of the day has tried to shield the consumer from these high level, and we haven't seen much increase in retail prices except one or two times when the prices were increased.
0: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 2.05% higher at 1,43,460 rupees per 10 grams, while silver was trading 3.37% up at 2,25,080 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.7% बढ़कर 1,42,748 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 3.2% बढ़कर 2,24,757 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। क्योंकि समय की नजाकत है, मगर एक संक्षिप्त में मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी।
1: नहीं, देखिए, गोल्ड एक मैं जो बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी कि जो कन्वेंशनल रूल्स थे वो इस आज के टाइम में उनको उनमें जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं चैलेंज हो रहा है। जब भी कोई क्राइसिस आती थी पहले देखा जाता था गोल्ड के दाम ऊपर जाते थे, लेकिन आज आप देखेंगे गोल्ड के दाम नीचे आ रहे हैं, जबकि दुनिया में पूरी तरफ अनिश्चितता है। शायद उसका एक कारण है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, साथ साथ शायद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है गोल्ड में। तो मुझे लगता है मतलब ऐसे टाइम पे अभी फिलहाल जो ट्रेंड है, मुझे लगता है गोल्ड प्राइसेस इसी लेवल्स पे रहेंगे अगर ये हॉस्टिलिटी बनी रहती है। बिकॉज अमेरिका में एक ये भी फियर है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर ही रहने वाले हैं, तो लोग जो है गोल्ड से सिक्योरिटीज में मूव कर रहे हैं।
2: जी धन्यवाद सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए
1: धन्यवाद।
0: एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंड ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,052, गवर्नमेंट रिलीजेस द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन फॉर 19 सबसेक्टर्स, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फॉर नाउ। Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा है दुश्मन, क्या
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी, ओह टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना अगर ड्राइवर का ड्राइवर ही, तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है?

0: क्यों फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही
1: रहने दो काका, रहने दो,
2: मैं बोलता फूलवती। काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत और जो गीत अभी आपने सुना वो था फिल्म दुश्मन से लता मंगेशकर की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में बस आज बस इतना ही। सुर भी आ चुकी है स्टूडियो में निशिगंधा लेकर, तो छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ और अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा। गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, गम की गर्मी से दिल पिघलते रहे, तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे। एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, उम्र भर दिल को हम मसलते रहे। तजर्बे आंसुओं में ढलते रहे, जिंदगी सरखुशी जुनू वहशत, सब उन्हीं रास्तों पर चलते रहे। उम्र भर हम दिल को मसलते रहे, एक लम्हे को तुम मिले थे मगर, उम्र भर हम दिल को मसलते रहे।

ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं है जहां के लिए। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं, मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म है एक बार मुस्कुरा दो।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जब किसी का सपना आपकी आंखों में बस जाए तो हर रास्ता खूबसूरत लगने लगता है। सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को अपना बनाने का नाम है। क्योंकि सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जहां दो दिल एक ही ख्वाब साथ देखते हैं।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। दोस्तों, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि भरोसा है जो हर मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है। और जब किसी का साथ दिल से मिल जाए तो हर सफर आसान और हर खुशी दुगनी लगने लगती है। सच्चा प्यार वही है जो हर हाल में एक दूसरे का सहारा बनकर साथ निभाता है। तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है, तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है, इसमें चेहरे का अपनापन अच्छा लगता है। तुंद हवाओं तूफानों से जी घबराता है, हल्की बारिश का भीगापन अच्छा लगता है, तेरी आंखों का ये दर्पण अच्छा लगता है।

कुछ रिश्ते वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। यकीनन सच्चा प्यार यादों में नहीं, निभाए गए वादों और हर पल साथ खड़े रहने में बसता है। और जब रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ हो तो दूरियां भी उस प्यार को कभी कम नहीं कर सकती।

प्रादेशिक गंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कुछ पल शब्दों से नहीं सिर्फ एहसास से जिए जाते हैं। जब दो दिल एक दूसरे के करीब होते हैं तो दुनिया की हर आवाज फीकी लगने लगती है। सच्चा प्यार वही है जहां सुकून भी हो, अपनापन भी हो, और हर धड़कन में बस

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं आते हैं कि उनकी मौजूदगी ही सबसे खूबसूरत तोहफा बन जाती है। सच्चा प्यार किसी एहसास का नाम नहीं, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाले उस रिश्ते का नाम है जहां हर पल सिर्फ और सिर्फ अपनापन और सम्मान महसूस होता है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे, मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे, मेरे कातिब मेरी तकदीर में रहमत लिख दे। वो जो मेरा है वही रूठ गया है मुझसे, वो जो मेरा है वही रूठ गया है मुझसे, उसके दिल में तू मेरे वास्ते उल्फत लिख दे। वो अदावत की किताबों को लिए बैठे हैं, वो अदावत की किताबों को लिए बैठे हैं, उन किताबों में बस एक लफ्ज़ से मोहब्बत लिख दे। मेरे कातिब मेरी तकदीर में रहमत लिख दे, मेरे हाथों की लकीरों में मोहब्बत लिख दे।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी गीत सुहाने में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडबरूबद्ध से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने किसानों और घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। पंचायती राज मंत्रालय के आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के तहत आयोजित 2 दिवसीय वर्चुअल आउटरीच कार्यशाला कल संपन्न हो गई। कार्यशाला में पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर जानकारी दी गई। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की यह पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका यह मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सस में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 1-0 से मैच में बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz.
1: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
2: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned yesterday by the ministry. Responding to the question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, Mr. Jaiswal said that the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to the media, Mr. Singh said Bharat Tex is the vision of Prime Minister. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textile sector. Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi yesterday chaired a meeting with the delegation of the National Energy Council of Indonesia. In a social media post, Mr. Joshi said that during the meeting, he shared India's steadfast progress in taking clean energy directly to our farmers and households. The minister also noted that under the PM Kusum scheme, 2.7 million agricultural pumps have been solarized across the country. He also highlighted the success of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, which has benefited 4.7 million households. Mr. Joshi urged the delegation to visit the projects and witness this transformation on the ground. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested proclaimed offender Shivu Kumar Singh, one of the accused in the Sukanta Ghosh murder case. He was arrested yesterday from his hideout at Rai Ganj Road in Gorakhpur, where he was allegedly living under the assumed

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। जब ये दिल किसी को सच्चे मन से चाहने लगता है तो हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है। और मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि वो बिना कहे भी सब कुछ बयां कर जाती है।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं आते हैं, उनकी मौजूदगी एक खूबसूरत तोहफा बन जाती है और सच्चा प्यार एहसान का नाम नहीं होता बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाले रिश्ते का नाम है, जहां अपनापन, सम्मान, सच्ची मोहब्बत सब कुछ साथ होता है। उसके साथ रहने से हर रात चांदनी और हर पल खास लगने लगता है। प्यार वही है जो साधारण लम्हों को भी यादगार बना दे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जब दिल को उसकी अपनी धड़कन मिल जाती है तो जिंदगी की हर राह खूबसूरत लगने लगती है। सच्चा प्यार किसी वजह का मोहताज नहीं होता, बस वो दिल से दिल तक पहुंच ही जाता है। और जब मोहब्बत सच्ची हो तो हर दिन एक नई मुस्कान और हर पल एक नई खुशी लेकर आता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ, कुछ रिश्ते किस्मत नहीं दिल चुनता है। जब किसी की मुस्कान आपकी खुशी बन जाए और उसकी मौजूदगी आपका सुकून, तभी मोहब्बत अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में होती है। सच्चा प्यार वही है जहां दो दिल बिना किसी शर्त के एक दूसरे को अपना लेते हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने कि गम गुजारों की बात करते हो, किन सहारों की बात करते हो, हम सभी मौसमों से गुजरे हैं, क्यों बहारों की बात करते हो। हम सभी मौसमों से गुजरे हैं, किन सहारों की बात करते हो।

कुछ मुलाकातें यूं ही नहीं होती, वे दिलों को करीब लाने का एक खूबसूरत जरिया बन जाती हैं, बहाना बन जाती हैं। जब नजरें मिलती हैं तो कई अनकहे एहसास अपने आप दिल तक पहुंच जाते हैं। शायद प्यार की शुरुआत भी एक ऐसी ही प्यारी मुलाकात से होती है।

छुप के आता है कोई ख्वाब चुराने मेरे, फूल हर रात महकते हैं सिरहाने मेरे, बंद आंखों में मेरी झांकते रहना उनका, शब बनाती है यूं ही लम्हे सुहाने मेरे, जब भी तन्हाई में मैं उनको भुलाने बैठूं, याद आते हैं मुझे गुजरे जमाने मेरे। दोस्तों, मोहब्बत की खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं बल्कि खास लम्हों में होती है जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात भी उम्र भर की सबसे प्यारी याद बन जाती है, क्योंकि सच्चा प्यार वक्त से नहीं एहसास से मापा जाता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने ईरान के सामने हाल की घटनाओं को लेकर अपनी कड़ी चिंता और विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और कई भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 4 अहम मुद्दों, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, श्रम बाजार को औपचारिक बनाना और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और समावेश को बढ़ाने पर चर्चा होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्षयान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सस में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 2-0 से मैच में बढ़त बना ली है। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है रात सुरमई। मैं हूं एक बार फिर आपके साथ सुरभि। बहुत खूब कहा है किसी ने कि गुजरी है अपनी जिंदगी तन्हाइयों के साथ, गुजरी है अपनी जिंदगी तन्हाइयों के साथ, जिंदा है सर पे मौत की परछाइयों के साथ। हमसे बिछड़ के भटकेगा हमदम तू देखना, दिल में बसाया है तुझे गहराइयों के साथ। जब दिल किसी के लिए धड़कने लगता है तो हर एहसास अपनी कहानी खुद लिखने लगता है। सच्ची मोहब्बत को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आंखें और मुस्कान ही दिल की हर बात कह जाती हैं। प्यार वही है जो हर धड़कन में सुकून बनकर बस जाए।

इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, पर किसी को ये नसीहत नहीं की जा सकती। कुछ तो मुश्किल है बहुत कार्य मोहब्बत और कुछ तो मुश्किल है बहुत कार्य मोहब्बत और कुछ यार लोगों से मशक्कत नहीं की जा सकती, इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, पर ये नसीहत हर किसी को नहीं की जा सकती।

वाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में साथ निभाने का नहीं होता, बल्कि आंसुओं को मुस्कान में बदल देने का नाम है। जब कोई दिल से आपका अपना बन जाता है, तो उसकी एक मुस्कान ही हर दर्द को हल्का कर देती है। यही तो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत पहचान है।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। हर मोहब्बत का मुकम्मल होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सच्चा प्यार पाने में नहीं बल्कि सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने में होता है। जो प्यार दिल से किया जाए वो हमेशा इज्जत, दुआ और खूबसूरत याद बनकर दिल में रहता है।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। सच्ची खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि मासूमियत, मुस्कान और दिल की सादगी में होती है। जब किसी की भोली सी मुस्कान दिल को छू जाए तो हर पल अपने आप में खास हो जाता है। प्यार वही है जो सादगी में भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ढूंढ ले।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। नमस्कार दोस्तों, रात की इस खूबसूरत शांत और सुकून भरी बेला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम को इस बेहतरीन से नगमे के साथ।
1: ये रातें, ये मौसम।

दोस्तों, पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इन्हें जितनी बार सुनिए, हर बार ये दिल को नई ताजगी दे जाते हैं। और अब पेश है एक और अनमोल धुन, जिसमें प्यार की मासूमियत और संगीत की मिठास दोनों साथ चलते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमराही। दोस्तों, रात धीरे धीरे और भी हसीन होती जा रही है और इसी खूबसूरती को संगीत के रंगों से सजाने का सिलसिला हम और आप मिलकर कर रहे हैं। आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसके बोल और धुन आज भी हर उम्र के श्रोताओं को पसंद आते हैं।

का बहाना। कितना सुकून मिलता है ना जब ये पुराने गीत कानों में घुलते हैं और यादों की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक ऐसे ही शानदार गीत की तरफ।

दोस्तों, रात अब अपनी पूरी रौनक पर है और हम भी इस सफर में आपके साथ हैं। दोस्तों, पुराने गीत केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि जिंदगी के कई खूबसूरत एहसासों को भी अपने साथ लेकर आते हैं। और अब पेश है एक ऐसा गीत जो मोहब्बत की सादगी को बहुत खूबसूरती से बयां करता है।

दोस्तों, संगीत कभी पुराना नहीं होता, बस वक्त बदलता है। लेकिन अच्छी धुनें हमेशा नई सी लगती हैं। और इसी एहसास के साथ चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत।

दोस्तों, पुराने गीतों की ये खास बात होती है कि ये कभी शोर नहीं मचाते, बल्कि धीरे धीरे हमारे दिल में उतर जाते हैं, उन यादों की तरह जो हमारे दिल के किसी कोने में छुपी हुई हैं। दोस्तों, चलिए अब पेश है कार्यक्रम का अगला खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, यादें अक्सर किसी धुन का सहारा लेकर ही लौटती हैं और यही वजह है कि पुराने गीत हमेशा हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, हमारे लिए बहुत खास होते हैं। तो आप सुनिए कार्यक्रम की अगली शानदार प्रस्तुति।

दोस्तों, रात का ये सफर अब आगे बढ़ रहा है और संगीत की मिठास भी। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, अगला और आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को इस कार्यक्रम हमराही से विदा दीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगले कार्यक्रम अरुणिमा में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित

0: और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ईरान के उपमिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि यह पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एस्बेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। New Delhi has said it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम अरुणिमा में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसने बरसों से संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। आइए उस गीत को सुनते हैं।

वाह क्या मधुर गीत था दोस्तों। पुराने गीतों की यही तो खासियत है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन इन गीतों की मधुरता कभी नहीं बदलती। हर शब्द, हर धुन, हर एहसास सीधे दिल तक पहुंचता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। ये गीत अपनापन, जीवन की सरल भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत करता है। आइए बढ़ते हैं उस गीत की तरफ।

दोस्तों, पुराने दौर के संगीतकारों ने जिन धुनों को रचा, गीतकारों ने जिन शब्दों को गढ़ा, वे आज भी उतने ही ताजा महसूस होते हैं जितने उस वक्त थे। यही वजह है कि पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन इन गीतों का जादू कभी भी कम नहीं होता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम अरुणिमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, आप सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही बीते दिनों की मीठी यादें ताजा हो जाती हैं।

दोस्तों सचमुच संगीत भावनाओं की ऐसी भाषा है जिसे हर दिल समझता है। पुराने दौर के संगीतकारों ने धुनों में जो जादू भरा, वही जादू आज भी हर पीढ़ी को अपनी तरफ खींच लेता है। लीजिए, अब पेश है कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत।

दोस्तों, संगीत की यही खूबसूरती है कि ये बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। हर धुन एक नई कहानी सुनाती है और हर गीत किसी ना किसी एहसास से जुड़ जाता है। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा।

दोस्तों, रात की इस पहर में जब कोई मधुर धुन कानों में उतरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। और इसी एहसास को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम के अगले गीत के साथ।

दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं, लेकिन दिन का या रात का कोई भी पल हो, अगर कुछ वक्त के लिए अच्छे संगीत के साथ बिता लिया जाए तो मन फिर से तरोताजा होता है। आइए इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम अरुणिमा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, कहीं प्रेम की, कहीं बिछड़ने की, कहीं उम्मीद की, तो कहीं जीवन को मुस्कुराकर जीने की। और कहते हैं कि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता। यही कारण है कि वर्षों पहले बनी धुनें आज भी उतनी ही ताजा लगती हैं और हर बार सुनने पर एक नया एहसास दे जाती हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, पुराने दौर का संगीत सादगी, मधुरता और भावनाओं का सुंदर संगम था। हर धुन में अपनापन था, हर बोल में जीवन की कोई ना कोई सच्चाई थी। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो अपने शब्दों और संगीत से दिल को छू लेता है।

दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को दीजिए अलविदा। मुलाकात होती है आपसे अगले घंटे अगले कार्यक्रम भोर सुहानी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है।

0: उन्होंने बताया कि ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत ने हाल की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की जान गई है और कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले विधायी गौरव यात्रा पूर्व और वर्तमान सदस्यों का सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ये समापन सत्र राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्षगांठ समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस वर्ष बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित जिला उत्तर लखीमपुर है, जहां 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगम के एस्बेस्टेन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and United Kingdom comes into force today. Simultaneously, the agreement on social security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of the tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK CETA as a defining milestone in India's trade journey. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम भोर सुहानी, जहां बातें होती हैं दिल की, मुस्कुराहट की और जिंदगी।

को थोड़ा सा आसान बनाने की। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शमीम खान। आज हम साथ रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस कुछ प्यारी बातें, कुछ खूबसूरत गीत और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज दौड़ती है कि हम खुद से बात करना भूल जाते हैं, लेकिन आज का ये सफर उसी भूली हुई बातचीत के नाम है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाइए और शुरू करते हैं एक खूबसूरत सोच के साथ। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। कल कैसा था उससे ज्यादा जरूरी है कि आज आप क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खूबसूरत गीत के साथ, जो जिंदगी से पूरी तरीके से भरा हुआ है।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी और शमीम है अभी आपके साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है या ध्यान दिया है कि छोटे बच्चे कितनी जल्दी मुस्कुरा देते हैं? उन्हें महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं होती, बारिश की एक बूंद, तितली या फिर मिट्टी में खेलना, उन्हें बस इतनी सी बात खुश कर देती है। शायद हम बड़े होते होते खुश रहने की वजह बहुत बड़ी बना लेते हैं। आज कोशिश कीजिए एक छोटी सी खुशी ढूंढने की। किसी अपने को कैसे हो पूछ लीजिए, या थोड़ा सा आराम करिए, या फिर आईने में खुद को देखकर कहिए, मैं ठीक हूं, मैं बहुत आनंद में हूं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हर इंसान अपनी जिंदगी की किसी ना किसी लड़ाई से गुजर रहा होता है। इसलिए जब भी मौका मिले थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ी इज्जत दीजिए और सबसे जरूरी थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि कई बार हमारी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है, है ना? ठीक इस खूबसूरत गीत की तरह जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, अगर जिंदगी में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होने लगे तो शायद हम सीखना ही बंद कर देंगे। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, इंतजार हमें धैर्य सिखाता है और असफलता हमें बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए अगर इस वक्त या इस समय आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है तो खुद से सिर्फ इतना कहिए, ये समय या ये वक्त भी गुजर जाएगा।